FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1940 की आषाढ़ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 4 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के ठीक 5:58 और 22 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
2: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड

0: इंग्लैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक

0: मानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। विचार बिंदु में आइए आज सुनते हैं स्वामी विवेकानंद के विचार।
3: एक महान विचारक होने के नाते स्वामी जी सांप्रदायिक सद्भाव के पूर्ण समर्थक थे। उनका मत था कि शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की संपत्ति नहीं है। प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है, इसलिए सभी धर्म अच्छे हैं। केवल उपासना की विधियां अलग अलग हैं। हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना करता है, मुसलमान मस्जिद में इबादत करता है, ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना करता है और सिख गुरुद्वारे में वाहेगुरु से शांति प्राप्त करता है। अतः जितने धर्म पंथ हैं उतने ही मार्ग हैं, जो अंत में एक ही केंद्र पर केंद्रीभूत होते हैं और एक ही परम सत्य की अनुभूति कराते हैं। शिव महिमा स्तोत्र में लिखा है, जिस प्रकार विभिन्न नदियां विभिन्न पर्वतों से निकलकर टेढ़ी मेढ़ी सीधी बहती हुई अंत में एक ही समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार विभिन्न दृष्टिकोणों वाले धर्म पंथ अंत में परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं। अर्थात सब धर्म एक ही चिरंतन धर्म के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इतिहास साक्षी है, सांप्रदायिक संकीर्णता और इनसे उत्पन्न भयंकर धर्म विषयक उन्माद इस धरती पर दीर्घ काल तक अपना राज्य कर चुके हैं। इन्होंने कई बार इस संसार का रक्त रंजित इतिहास बनाया और सभ्यता नष्ट कर डाली।

0: यदि यह सब न होता तो मानव समाज आज की अपेक्षा कहीं अधिक समुन्नत हो गया होता। कोई भी मनुष्य दूसरे से घृणा करके जीवित नहीं रह सकता। क्या रामानुज के हृदय में दुर्बल वर्ग के प्रति प्यार नहीं था? क्या उन्होंने जीवन पर्यंत चंडाल तक को अपने संप्रदाय में लेने का प्रयास नहीं किया? क्या गुरु नानक ने मुसलमानों और हिंदुओं से समान भाव से विचारों का आदान प्रदान कर समाज में एक नई व्यवस्था लाने का प्रयत्न किया? स्वामी जी ने कहा, मैं दूसरी जातियों की सामाजिक प्रथाओं की निंदा नहीं करता, वे उनके लिए अच्छी हैं परंतु हमारे लिए नहीं। हमारे परंपरागत संस्कार और हजारों वर्ष के कर्म हम लोगों के पीछे हैं। अतएव हमें स्वभावतः अपने संस्कारों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। आज स्थिति कुछ बदल गई है, इसलिए कार्य प्रणाली में भी कुछ परिवर्तन करना होगा। कोई भी राष्ट्र अपने को दूसरों से अलग रखकर जीवित नहीं रह सकता। पारस्परिक लेन देन ही संसार का नियम है। हम सबका एक ही वसुंधरा पर जन्म हुआ है और हम एक ही गगन के नीचे रहते हैं तथा एक ही सूर्य से ऊर्जा लेते हैं। अतः आदान प्रदान का द्वार जितना खुला रखा जाएगा, हमें उतनी ही प्राण प्रद वायु और प्रकाश मिलेगा। परंतु खिड़कियां बंद रखने से हम स्वच्छ हवा एवं खुली धूप के लाभों से वंचित रहेंगे। संकीर्णता अपना कर लाभ कम और हानि अधिक होती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने प्रेम, सहानुभूति, सौहार्द और पारस्परिक भाईचारे का संदेश दिया, जिससे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे।
1: विचार बिंदु में आज आपने स्वामी विवेकानंद के विचार सुने और आइए अब मिलकर आरंभ करते हैं आज की आराधना।

भक्ति भाव भजन में बीते अपनी सुबह और शाम। हे सत्य रूप, हे करुणामय, शत शत तुम्हें प्रणाम।

0: आज की आराधना के शुभारंभ में आपने अनूप जलोटा, तुलसी और शिवानी के स्वर में ये भजन सुना। आइए अब सुनते हैं सुरेश वाडकर के स्वर में ये भक्ति रचना।
1: क्या है ईश्वर, गुरु वशिष्ठ से पूछा था श्री राम ने। उत्तर मिला, बस मन का साक्षी। याद रखना है मुझे यही सोते जागते। कैसे कर सकता है कोई चोर चोरी व मन कोई कुविचार, कपट या अहंकार,

भक्ति भाव से परिपूर्ण ये भक्ति रचनाएं इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं।

शंकर महादेवन के स्वर में शनि वंदना अभी आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में संत कबीर की लिखी ये भक्ति रचना। मोह माया अभिमान त्याग कर प्रभु भक्ति को मान, वो ही तारनहार हैं सबके, वो ही कृपा निधान।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज की बात।

आज की बात सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज तारीख है 4 जुलाई और आज का दिन इतिहास में क्यों है खास, आइए जानते हैं। दोस्तों जब इतिहास के पन्ने खोले जाते हैं तो कुछ नाम केवल पढ़ ही नहीं जाते, वे प्रेरणा बन जाते हैं और युगों तक गूंजते हैं। उन्हीं महान नामों में एक नाम है स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बचपन से ही वे तेजस्वी, जिज्ञासु और साहसी थे। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में उन्होंने जीवन का सच्चा अर्थ जाना कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में उनके शब्दों ने पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति का परिचय करवाया। आज भी उनके विचार हर युवा के लिए एक मार्गदर्शक दीपक हैं। उनका निधन आज ही के दिन वर्ष 1902 को बेलूर मठ में हुआ था। आत्मविश्वास, परिश्रम और राष्ट्र प्रेम के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद

श्रोताओं, सन 1776 में आज ही के दिन अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद अमेरिका की 13 कॉलोनीज ने मिलकर एक नए देश के निर्माण की घोषणा की, जिसका नाम द यूनाइटेड स्टेट्स रखा गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन करने वाले श्री पिंगली वेंकैया का निधन आज ही के दिन साल 1963 में हुआ था। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, कृषि विज्ञानी और सच्चे देशभक्त थे। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के समक्ष तिरंगे का प्रारंभिक स्वरूप प्रस्तुत किया, जो आगे चलकर हमारे राष्ट्रीय ध्वज का आधार बना। आज ही के दिन वर्ष 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पेश किया गया था। इस एक्ट में भारत की आज़ादी और नए देश पाकिस्तान को बनाने का प्रस्ताव था। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया, जिसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और उसके एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 1934 में हंगरी के भौतिक शास्त्री लियो जिलार्ड ने एटम बॉम्ब के चेन रिएक्शन डिज़ाइन के लिए पेटेंट का आवेदन किया था। ये पेटेंट मिलने के बाद लियो जिलार्ड मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए और इसी प्रोजेक्ट के जरिए अमेरिका दुनिया की पहली परमाणु शक्ति बना। पोलोनियम और रेडियम जैसे रासायनिक पदार्थों की खोज करने वाली महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का निधन आज ही के दिन वर्ष 1934 में हुआ था। उनके शोध ने दुनिया को रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानकारी दी थी। वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला थीं। आज ही के दिन वर्ष 1997 में नासा का मार्स पाथ फाइंडर 7 महीने के सफर के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचा था। और आज ही के दिन साल 1916 में जन्म हुआ था 40 के दशक की मशहूर अभिनेत्री नसीम बानो का। वे अपने समय की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी, इसलिए उन्हें ब्यूटी क्वीन भी कहा जाता था। 1930 और 1940 के दशक में उन्होंने कई यादगार फिल्में दी। वे प्रसिद्ध अभिनेत्री सायरा बानो की मां थीं। उनकी अदाकारी में एक अलग ही नज़ाकत और आकर्षण था, जो दर्शकों के दिलों को छू जाता था। और दोस्तों, अब इसी के साथ आज की बात को यहीं पर देते हैं विराम। अगली मुलाकात तक के लिए अपनी दोस्त मीनाक्षी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आज की बात, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: विविधा कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कुछ महान आत्माएं समय की सीमाओं में नहीं बंधती हैं। वे शरीर छोड़कर भी अपने विचारों में जीवित रहती हैं। ऐसी ही महान आत्मा थी स्वामी विवेकानंद। वे एक विचार थे, क्रांति थे, एक जागृति थे। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि मानवता बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक जागृति में निहित है। उन्होंने युवाओं को सिखाया कि भय, संदेह और हीन भावना मनुष्य की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। उनका अमर संदेश, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, ये केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला मंत्र है। वे केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं बल्कि एक युग दृष्टा भी थे। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में उनके ऐतिहासिक भाषण ने भारत की संस्कृति, सहिष्णुता और सार्वभौमिकता को पूरे विश्व के सामने गौरव के साथ प्रस्तुत किया। उनके जीवन की यात्रा में कई ऐसे पड़ाव आए जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को और अधिक गहराई दी। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पड़ाव था उनका अल्मोड़ा आगमन। हिमालय की गोद में बसा ये शांत, पवित्र और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान उनके जीवन का एक विशेष अध्याय बन गया। सन 1890 में जब स्वामी जी पहली बार अपने मित्र स्वामी अखंडानंद के साथ आए तो उन्होंने अल्मोड़ा के पास काकड़ी घाट में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय अद्वैत का गहन अनुभव किया, जहाँ उन्हें लगा कि पूरा ब्रह्मांड एक चेतना का रूप है। काकड़ी घाट की दिव्य अनुभूति पाकर स्वामी जी अल्मोड़ा की ओर चल पड़े। पैदल चलते चलते भूख और प्यास से व्याकुल स्वामी जी अल्मोड़ा नगर से लगभग 3 किलोमीटर पहले करबला के पास अर्धमूर्छित होकर गिर पड़े। तब एक गरीब फकीर ने ककड़ी का रस स्वामी जी के मुंह में डाला तो उनकी मूर्छा दूर हुई और फिर स्वामी जी धीरे धीरे चंद राजाओं की राजधानी अल्मोड़ा की तरफ बढ़े। अल्मोड़ा में पहले से ही तपस्यारत उनके दो गुरु भाई स्वामी शारदानंद और स्वामी कृपानंद ने उनका स्वागत किया। उस वक्त अल्मोड़ा के संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में लाला बद्री शाह ने स्वामी जी से अपने घर पर रुकने का अनुरोध किया और प्रेम और श्रद्धा से उनको खजांची मोहल्ले में स्थित अपने घर ले गए। अल्मोड़ा भ्रमण के दौरान उन्होंने कसार देवी और स्याही देवी में अनेक बार ध्यान किया। विश्व को अपने ज्ञान से चमत्कृत करने के बाद 11 मई 1897 को दूसरी बार स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा पधारे। अल्मोड़ा वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में छात्रों को और आम जनमानस को व्याख्यान दिया। स्वामी जी के लिए अल्मोड़ा एक प्रेरणा स्थल था, जहाँ उन्होंने अपने विचारों को नई दिशा दी और आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को छुआ। साल 1898 में स्वामी जी ने अल्मोड़ा की धरती को अपनी उपस्थिति से एक बार फिर धन्य किया। इस बार यहाँ थॉमसन हाउस में रहते हुए उन्होंने एक ऐसे स्थान की कल्पना की जहाँ ध्यान, शांति और सेवा का संगम हो। क्योंकि स्वामी जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उनके मन में रामकृष्ण कुटीर की स्थापना का विचार आया और उनके इस सपने को आगे चलकर उनके मित्र स्वामी शिवानंद और स्वामी तुरियानंद जी ने पूरा किया। 22 मई 1916 को अल्मोड़ा में रामकृष्ण कुटीर की स्थापना की गई। ब्राइट एंड कॉर्नर के पास स्थित यह कुटीर आज भी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बसा ज्ञान एवं ध्यान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अल्मोड़ा में बिताया गया समय स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन को और गहराई देने में अहम साबित हुआ। 4 जुलाई यानी आज ही के दिन 1902 में उन्होंने इस संसार को हमेशा के लिए अलविदा कहा था। आज जब हम उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हैं तो केवल उनके देहावसान को नहीं बल्कि उनके अमर संदेश को, उनके विचारों को याद करते हैं। और जब हम उनके अल्मोड़ा आगमन की चर्चा करते हैं तो हमें समझ आता है कि उनका जीवन केवल एक यात्रा नहीं था बल्कि एक ऐसी साधना थी जिसने भारत को आत्मगौरव का नया मार्ग दिखाया। स्वामी विवेकानंद अमर हैं अपने विचारों में, अपने संदेशों में और हर उस हृदय में जो उन्हें प्रेरणा मानता है। और अब इसी के साथ आज के विविधा कार्यक्रम को संपन्न करने की अपनी दोस्त मीनाक्षी को अनुमति दीजिए। अगले अंक में एक नए विचार और एक नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में तत्पश्चात हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थान गुजरात राज्ययोः एकदिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। प्रधानमन्त्री सर्वप्रथमं राजस्थानस्य यात्रां करिष्यति, यत्र असौ अद्य प्रातःकाले जोधपुर विमानपत्तनस्य नूतन टर्मिनल इति भवनस्य उद्घाटनं करिष्यति। 80+400 कोटि रूप्यकाणां इयं परियोजना वार्षिकं 20 लक्ष यात्रिणः सञ्चालयितुं परिकल्पितमस्ति। असौ जोधपुरे संशोधित उड्डयन योजनायाः शुभारम्भोऽपि विधास्यति। अस्याः योजनायाः उद्देश्यं विमानन आधारित विकासस्य अग्रिमचरणस्य गतिं वर्धयितुमस्ति। एतदनन्तरं श्रीमोदी बालोतरा नगरस्य यात्रायां भविष्यति, यत्र असौ अद्य मध्याह्ने प्रायः 6,000+ कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां लोकार्पणम् उद्घाटनम् आधारशिलाञ्च स्थापयिष्यति। श्रीमोदी राजस्थान प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु नियुक्तेभ्यः प्रायः 450 युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि प्रदास्यति। अनन्तरं सायंकाले प्रधानमन्त्री मोदी गुजरातस्य यात्रां करिष्यति। पाकिस्तान देशात् सीमापारस्य भयोत्पादनस्य निरन्तर प्रयोजकत्वस्य प्रतिक्रियारूपेण सिन्धु जलसन्धिः स्थगितः अस्ति। गतरात्रौ नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् सिन्धु जलसन्धि विषये भारतस्य स्थितिः सुसंगता अस्ति। सः अवदत् यत् पाकिस्तानदेशः सीमापारस्य भयोत्पादनस्य समर्थनं विश्वसनीयरूपेण अपरिवर्तनीयरूपेण च त्यक्तव्यम्। तीस्तानद्याः समग्रप्रबन्धन पुनर्स्थापन परियोजनायाः विषये श्रीजायसवालः बांग्लादेशस्य विकाससाहाय्यं प्रति भारतस्य दृष्टिः अपि प्रकटितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः, कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहान च एल नीनो इत्यस्य कारणेन देशस्य केषुचित् भागेषु सामान्यात् न्यूनवृष्टेः तस्य प्रभावस्य च स्थितिं समीक्षितवन्तौ। श्रीशाहः सभायाम् अवदत् यत् एल नीनो इत्यस्य कारणेन देशस्य केषुचित् भागेषु सामान्यात् न्यूनवृष्टिं, सम्भावित अनावृष्टेः स्थितिं च प्रशासनं निरन्तरं निरीक्ष्यमाणमस्ति। अद्यावधि सम्पूर्ण राष्ट्रिय राजधान्याम् 1,02,000+ गणना प्रपत्राणि अङ्गीकृतानि। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयस्य अनुसारं दिल्ल्यां मतदातृसूच्यां विशेष गहन पुनरीक्षणस्यांशरूपेण प्रायः 14,000+33,00,000 प्रपत्राणि अधुना यावत् वितरितानि सन्ति। सम्प्रति दिल्ल्यां मतदातृगणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। अन्तिममतदातृसूची अक्टूबर मासस्य 7 दिनाङ्के प्रसारयिष्यते। पुरुषाणां क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया 20-20 अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धा अद्य मैनचेस्टर इत्यत्र भविष्यति। स्पर्धा भारतीय समयानुसारं सायं 7 वादने प्रारप्स्यते। चेस्टर ले स्ट्रीट इत्यत्र वृष्टिकारणात् 5 स्पर्धानां श्रृंखलायाः प्रथमा स्पर्धा निरस्तीकृता आसीत्। तृतीया स्पर्धा जुलाई मासस्य 7 दिनाङ्के नॉटिंघम इत्यत्र क्रीडिष्यते। ब्रिस्टल साउथहैम्प्टन इत्येते नगरे 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः अन्तिमयोः द्वयोः स्पर्धयोः आतिथ्यं करिष्यतः, यत् जुलाई मासस्य 11 दिनाङ्के समाप्येते। एतदनन्तरं भारत इंग्लैंड देशौ 3 स्पर्धानां एकदिवसीयाम् अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलां क्रीडिष्यतः। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि

मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर

0: 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आज शाम 5:10 पर प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आप सुनेंगे श्री देवेंद्र सूरा कांस्टेबल हरियाणा पुलिस से बातचीत। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम के तहत सुनेंगे पत्रिका साहित्य भारती। और रात्रि 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का ख्याल गायन। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हम अपने देहरादून केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर में प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से 144वां प्रसंग। कुमाऊनी लोकगीत आप सुनेंगे प्रातः 7:30 पर लोक मंजरी कार्यक्रम में और शाम 5:05 पर शैल स्वर कार्यक्रम के अंतर्गत। प्रातः 8:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित भजन सोपोरी से संतूर पर प्रजाया राग नट भैरव। शास्त्रीय संगीत पुनः सुनिएगा सुबह 11:30 पर। दोपहर 12:30 पर अर्पण कार्यक्रम में बहनों से चर्चा होगी सहभागिता से बनती संभावनाएं विषय पर। इसके अलावा बहनें पोषण की पाठशाला सेगमेंट के अंतर्गत सुनेंगी पौष्टिक और गुणकारी बथुआ के विभिन्न व्यंजन विषय पर श्रीमती बबीता साह से दीपा जोशी की बातचीत। दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे नाटक कल सुबह। दोपहर 2 होंगे उत्तराखंड के लोकगीत और 2:30 पर किसान भाई सुनेंगे खेती की बातें। शाम 5:35 पर युववाणी कार्यक्रम में युवा साथियों से आज की बात का विषय होगा प्लान बी पर भी काम करें। साथ ही खेल जगत और आज के इतिहास से जुड़ी जानकारियां युवा साथी सुनेंगे। उत्तरायण कार्यक्रम में शाम 5:45 पर श्रोताओं से चर्चा का विषय होगा डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ता भारत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। शाम 6:40 पर भक्ति संगीत में आज सुनिएगा सुरेश वाडकर और अनूप जलोटा के गाए भक्ति गीत। किसानवाणी

फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे सुबह 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में, सुबह 10:35 पर सुरबहार, सुबह 11 बजे सैनिकों के लिए कार्यक्रम में, दोपहर 12 बजे मेरी पसंद, दोपहर 2:45 पर एक ही फनकार, अपराह्न 3 बजे आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत, हमारी सायंकालीन सभा में फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत। सुगम संगीत आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर सबरंग कार्यक्रम में, दोपहर 1:15 पर और रात्रि 8 बजे सबरस कार्यक्रम के तहत। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

राजा दशरथ ने कैकेयी को कई प्रकार से समझाया, अनुनय विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र आहुति का काम कर रहे हैं। रानी की एक ही टेक है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया नहीं चलेगी। या तो जो वर मैंने मांगा है वो दे, नहीं तो ना ही करके अपयश के भागी बने। सवेरा होते ही यदि राम मुनिवेश धारण करके वन को नहीं जाते तो हे राजन, निश्चय जानिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। इतना कहकर कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ी हो। दो वरदान उस नदी के दो किनारे हैं, कैकेयी का हठ उस नदी की तीव्र धारा है, मंथरा की प्रेरणा भंवर है, और क्रोध रूपी वो नदी राजा दशरथ को मूल रूप से ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के रूप में मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है। उन्होंने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की कि वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने, वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे, राम के विरह में उन्हें न मारें। किंतु राजा की गुहार व्यर्थ हुई, उन्होंने जान लिया कि रोग असाध्य है। अत्यंत आर्तवाणी से हा राम कहकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े।

श्री रामचरितमानस से 144वां प्रसंग अभी आप सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर, संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर आज से 18 जुलाई तक सेवा सुशासन एवं समर्पण की थीम पर प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा का आयोजन। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन आयोग की अहम बैठक। दलों से 100% बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त करने का आह्वान। देहरादून में पूर्व सैनिकों और सैनिक विधवाओं के लिए गृह कर छूट के आवेदन की शुरुआत 15 जुलाई से की जाएगी। और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्रीनाथ धाम चढ़ावा प्रकरण में दिए जांच के आदेश। कथित हेराफेरी मामले में दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई।

अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर सेवा सुशासन एवं समर्पण की थीम पर आज से प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश के IGPL परिसर में इसका शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार के दूसरे चरण के तहत प्रदेश के कई जिलों में सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जाएगा ताकि पात्र नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस दौरान आमजन को सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। राज्य सरकार की योजनाओं और 5 वर्षीय उपलब्धियों का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर कल सचिवालय में राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 71 लाख से ज्यादा मतदाताओं के गणना फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। राज्य के लगभग 8 लाख 39 हजार से ज्यादा मतदाता अनकलेक्टेड श्रेणी में हैं।

0: जिनमें मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, पहले से पंजीकृत और अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं। श्री जोगदंडे ने कहा कि प्रदेश में 1 जुलाई 2026 की आहर्ता तिथि के आधार पर SIR प्रक्रिया जारी है। 7 जुलाई तक प्रदेश में गणना पत्रों के वितरण और डिजिटाइज का काम पूरा होगा और 14 जुलाई को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया जाएगा। 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच दावे और आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक नोटिस की अवधि और दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 सितंबर को किया जाएगा। वर्तमान में 11,733 पोलिंग बूथ के सापेक्ष वर्तमान में प्रदेश में राजनीतिक दलों की ओर से 23,102 BLA की तैनाती की गई है। देहरादून में पूर्व सैनिकों और सैनिक विधवाओं को गृहकर्म में छूट देने के लिए 15 जुलाई से आवेदन शुरू किए जाएंगे। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल ओम प्रकाश परस्वाण सेवानिवृत्त ने बताया कि विभाग के जिला कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 15 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे। उन्होंने जिले के सभी पात्र पूर्व सैनिकों और सैनिक विधवाओं से अपील की है कि वो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना निर्धारित समय अवधि के भीतर अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें, ताकि उन्हें गृहकर छूट का लाभ समय पर और बिना किसी असुविधा के मिल सके। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के सेलाकुई में 13 जून को असम विमान दुर्घटना में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शहीद के परिजनों से भेंट कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें इस दुख की घड़ी में धैर्य बनाए रखने का संबल दिया। श्री जोशी ने कहा कि स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह का सर्वोच्च बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा बद्रीनाथ धाम चढ़ावे और दान में कथित हेराफेरी मामले का संज्ञान लेते हुए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने निष्पक्ष जाँच के समिति गठित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जांच की रिपोर्ट आने के बाद अगर इसमें कोई भी कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को एक संगठन से शिकायत पत्र मिला है। इस पर सभी तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित पक्षों के बयान के आधार पर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान अगर कोई अनियमितता संज्ञान में आती है तो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम 1939 और कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने कल आगामी कांवड़ मेला 2026 के सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए CCR सभागार में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में कांवड़ यात्रा के संचालन के लिए तैयार की गई कार्य योजना पर विभागवार चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री ने सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध ढंग से अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कांवड़ मार्गों पर स्वच्छता, पेयजल और चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
2: तीस जुलाई से 11 अगस्त तक कांवड़ यात्रा का आयोजन होगा। सरकार ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनपद हरिद्वार में इस 46,000 का जो बजट की है मांग की गई है, तो इसके साथ साथ हम लोगों ने काफ़ी समीक्षा की है और इसके अंदर ये निर्देश दिए अधिकारियों को कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुचारू रूप से यातायात सुनिश्चित किया जाए। कांवड़ यात्रियों के साथ साथ आम जनमानस को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान रखा जाए। और इसके अंदर जो हमारा जो समय, क्योंकि रोड वाइडनिंग हो गई है और एलिवेटेड ट्रैक बन गया है, तो उसका भी हम उपयोग करेंगे ताकि सब लोग बड़े आराम से कांवड़ यात्रा संपन्न कर सके। भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा के लिए डायवर्जन प्लानिंग, पार्किंग व्यवस्था और संवेदनशील स्थलों की निगरानी की जाएगी। गंगा घाटों और प्रमुख कांवड़ मार्गों पर पुलिस बल CCTV ड्रोन कंट्रोल रूम के माध्यम से 24 घंटे मुस्तैदी से निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रियों की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ प्राथमिक उपचार के उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं और इसमें वाटर एम्बुलेंस जो है जिसको हम नहर से लाएंगे उसका भी प्रबंध किया गया है। इसके बाद हेली एम्बुलेंस की भी इसमें प्रोविजन रखा गया है। मैं देश भर से आने वाले कांवड़ यात्रियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आस्था, सुरक्षा और सुविधा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ साथ एंटी वेलम जो है वो जो हाँ अभी मार्ग है वहाँ पर अस्पतालों में उपलब्ध होगा और हमारे कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। हम फूलों से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हम निश्चित रूप में रिकॉर्ड बनाएंगे और ये रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होगी।
0: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में कल बोर्ड ऑफ ट्रेड की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने प्रतिभाग किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य साल 2030-31 तक देश के $2 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति पर विचार विमर्श करना था। श्री चौधरी ने उत्तराखंड के निर्यात, औद्योगिक विकास और विशेष रूप से हिमालयी राज्यों की भौगोलिक आवश्यकताओं को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान श्री चौधरी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार राज्य में निर्यात आधारित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य में वर्तमान में पंतनगर और काशीपुर में इनलैंड कंटेनर डिपो संचालित हैं, जबकि हरिद्वार में एक नए ICD की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर के किच्छा में करीब 800 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर आज से 18 जुलाई तक सेवा सुशासन एवं समर्पण की थीम पर प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा का आयोजन। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन आयोग की अहम बैठक। दलों से 100% बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त करने का आह्वान। देहरादून में पूर्व सैनिकों और सैनिक विधवाओं के लिए गृह का छूट के आवेदन की शुरुआत 15 जुलाई से की जाएगी। और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्रीनाथ धाम चढ़ावा प्रकरण में दिए जांच के आदेश। कथित हेराफेरी मामले में दोषियों पर होगी सख्त कार्यवाही। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं विक्की के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं, विक्की के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ आज का लोकमंजरी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रहे

0: क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक

0: बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ते लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ते ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से

0: बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें। मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती। बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है। अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान एंड गुजरात टुडे टू इनॉग्रेट कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन बालोतरा। Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Uran scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. More from our correspondent.
3: The refinery and petrochemical complex is expected to open new avenues for investment, employment and industrial growth in the state's western districts. The Rajasthan refinery project will also boost sectors such as MSMEs, packaging, textiles, auto components and agri-films, providing a fresh boost to the state's economy. Built on Rajasthan's challenging desert terrain, the project is a remarkable feat of engineering. The second phase of Jaipur Metro Rail project will develop the north South corridor, significantly enhancing the city's multimodal connectivity. The corridor will integrate metro services with the airport, railway station and bus terminal, providing seamless and more convenient public transport for citizens. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jodhpur.
2: Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand in Ahmedabad. The project is one of the first 4 approved under the India Semiconductor Mission and has been developed with a total investment

पंडित भजन सोपोरी से संतूर पर बजाया राग नट भैरव अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, सुबह के 9 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा।

0: पहले तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 863 अरब डॉलर का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के ठीक 9:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर।

कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गीत निर्झर में। दोस्तों, हर सुबह एक नया सवेरा लेकर आती है, एक नई रोशनी और एक नई उम्मीद के साथ। सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती को छूती है, वैसे ही हमारे जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत मिलता है। रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का उजाला उसे मिटा देता है। उसी तरह जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हर सुबह हमें उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का मौका देती है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा आपने सुना हैसियत फिल्म से। आवाज थी येसुदास की और नगमा निगार थे इंदीवर। इस नगमे को सुनना चाहा था भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार ने। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवीर हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी और रसीद वारसी ने। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान ने। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू ने इस गीत की फरमाइश की थी। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। आज़ाद रोड सनावत से बेगम सलमा खत्री, बेबी सुमैया, आयशा भी खत्री, सादिया भी खत्री, नवासी जिक्रा और मोहम्मद सगड़ खत्री। जींद हरियाणा से इसी गीत को सुनना चाहा था जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर ने इसी गीत की फरमाइश की थी। फुले नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद जी करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा ने।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।

0: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
1: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और बाबला की आवाजों में चांदनी फिल्म से। गीत है आनंद बख्शी का और संगीत दिया है शिवहरी ने। इस गीत की फरमाइश की है विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से हमारे श्रोता दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन ने। इसी गीत को सुनना चाहा है टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थानदी, तृप्ता कुमारी थानदी, डॉक्टर प्रियंका थानदी, डॉक्टर प्रशांत थानदी, डॉक्टर प्रियम थानदी, बेबी वामिका और वाणी थानदी ने। दुल्हापुर मुरादाबाद यूपी से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनना चाहा है श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे ने। नूर महल महसौल सीतामणि बिहार से हमारे श्रोता हैं मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया साहिन नाज और नाजिया नूरी नाज। इसी गीत को सुनना चाहा है पिंगा वाला चौक गुराया जालंधर पंजाब से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी ने। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे। यहीं से हैं स्वाति प्रयाग चौधरी। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से इसी गीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं PS नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। मलकापुर से हैं नारायण इंगले, सोपान ताइड़े, आशीष मुरहेकर। कवर कॉलोनी बड़वाह खरगोन MP से हैं प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। तो लीजिए पेश है आप सभी की फरमाइश पर चांदनी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं येसुदास की आवाज में दादा फिल्म से। कुलवंत जानी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है उषा खन्ना ने और पसंद है आप सभी की। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मनीष और राहुल शर्मा। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। इसी गीत को सुनना चाहा है। ग्राम पजौनिया जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक आलौकिक चंसौलिया ने। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शेंडे। राज पैलेस मऊनाथ भंजन से इसी गीत को सुनना चाहा है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा ने। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। इसी गीत को सुनना चाहा है गांव उगाला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। इसी गीत की फरमाइश की है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। और इसी गीत की फरमाइश की है शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने।

दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में उजाला फिल्म से। शब्द रचना है हसरत जयपुरी की और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है गांव शोभापुर बाईपास रोड मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौर ने। इस गीत को सुनना चाहा है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा ने। वंडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से हैं मोहम्मद यासिन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत, यहीं से हैं सादिया। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हमारे श्रोता हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर और जियाउल हक डावर। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया और इब्राहिम। खमहरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। सौराष्ट्र राजकोट से हमारे श्रोता हैं जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी। देवरी भाटापारा से हैं के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नू लाल रजक और मुरली छत्रिय। जवाहरनगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। इसी गीत को सुनना चाहा

है ग्राम लसूडिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका और रमेश चंद्र डांगी ने और इस गीत की फरमाइश की है रजौनी महोबा बुंदेलखंड यूपी से उदय बानपाल जय हिंद पाल दीक्षा पाल प्रतीक्षा पाल विमलेश पाल दिव्यांश बघेल और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। तो लीजिए पेश है आपकी पसंद आपकी नज़र।

अल्लाह या अल्लाह दिल ले गई। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत। कार्यक्रम है गीत निर्झर। कार्यक्रम की अगली पेशकश लव स्टोरी फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की, और इस गीत को सुनना चाहा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू ने। मालियान सरधना मेरठ से हैं, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन और मुस्कान जैन, यहीं से हैं मास्टर जिव्यम। चर डोगरी पीपरिया कबीर धाम छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू। इस गीत को सुनना चाहा है काले गांव जाफराबाद से सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी और कल्पना देशमुख ने। लोरमी चंचेड़ी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद अल्ताफ। छत्तीसगढ़ रायपुर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन और मोहम्मद हसनैन रजा। सहारनपुर से हैं आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गीत को सुनना चाहा है फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण ने। ग्राम बाघा मुड़ा कोमा खान से हैं प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन और यहीं से हैं गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। दतरंगी से इसी गीत को सुनना चाहा है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने।

श्रोताओं, आनंद बख्शी का लिखा गीत आइए अब सुनते हैं। हीरो फिल्म से आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और मनहर उधास की। इस गीत के इंतजार में हैं पाखुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, ताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा। डाबकी रोड अकोला से हमारे श्रोता हैं सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर। इसी गीत को सुनना चाहा है डेर पाटन गुजरात से धीरज वी रवारी ने। मुजफ्फरपुर बिहार से हमारे श्रोता हैं आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। शाहजीनगर देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। दुर्गा कॉलोनी हांसी से इसी गीत को सुनना चाहा है राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू और डब्बू ने। इसी गीत की फरमाइश की है गनगोला दातागंज जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, सावरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आजम खान और अरहान खान ने। ऊपरकोट मोहल्ला चौखूनट्टी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान और अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, रोशनी, चेतन, विशाल और बेबी प्रियांशी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। तो लीजिए पेश है आप सभी की फरमाइश पर हीरो फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं मिस्टर नटवरलाल फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की, गीत है आनंद बख्शी का और संगीत दिया है राजेश रोशन ने। इस गीत को सुनना चाहा है स्टेशन पारा कानपुर से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा और अकरम आसमा फकीर ने। पांडर कवडा से हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री और धनश्री बुरांडे। रामगंज खंडवा से इसी गीत को सुनना चाहा है विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू ने।

झज्जर हरियाणा से हमारे श्रोता हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया। ऑरेंज सिटी नागपुर से हैं विट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव और पवन राजे जाधव। छत्रपति संभाजी नगर से हैं मंगेश इंगले, संध्या इंगले और स्वराज विराज। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हैं संतोष खडसे और विनोद खडसे। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना। खरगोन मध्य प्रदेश से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, केपी सिंह चौहान, दीपक सचिन कटारिया, कृष्ण विराज, अर्णव, काव्यांशी, कृतिका और श्रीमती प्रभा कटारिया। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। इसी गीत को सुनना चाहा है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष ने। रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल।

श्रोता हो, आइए अब आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं लता मंगेशकर के गाई गाइड फिल्म के नगमे के साथ। नगमा निगार हैं शैलेंद्र और इस नगमे को सुनना चाहा है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह और प्यारी गुड़िया वेदा सिंह ने। गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम करेली बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहे नूर अंसारी, नसरीन अंसारी और शमा अंसारी ने। मजनू कटिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गभाणकर राही, श्रीमती सरिता गभाणकर, प्रिंस एकांश गभाणकर। बदलापुर मुंबई से हैं प्रणीता गभाणकर, सिद्धांत और टुक टुक गभाणकर। बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली शैलेश गभाणकर, श्वेता सुमित गभाणकर, कुमारी ध्वनि गभाणकर परी। और इसी गीत को सुनना चाहा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता हुजा ने। तो लीजिए पेश है आप सभी की फरमाइश पर आज के प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश।

गाइड फिल्म के इस नगमे के साथ आज के गीत नेचर कार्यक्रम से अपनी दोस्त मीनाक्षी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

गीत निर्झर। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। सुबह के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेक्षण से संबंधित है। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सांणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने यह भी बताया कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावों और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। सरकार ने बैट, BMS, ईपोक, IIN और लॉसिकी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट

0: मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सब रंग। कार्यक्रम की पहली पेशकश गुलाम अली की आवाज़ में।

0: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय ITI से।
1: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
0: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
1: 12 सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत ITI में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
0: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय ITI में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
1: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओ, आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम की अगली पेशकश, आइए सुनते हैं इब्राहिम अश्क का लिखा गीत। आवाजें हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की।

फाल्गुनी पाठक के गाए इसी गीत के साथ आज का सबरंग कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के 5 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की ये यात्रा प्रदेशवासियों के विश्वास, आकांक्षाओं और सहयोग को समर्पित है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है समस्याओं का त्वरित समाधान और जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। श्री धामी ने कहा कि आज से सरकार जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के दूसरे चरण के तहत स्वयं जनता के बीच पहुंचकर जन समस्याओं के समाधान, जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने समान नागरिक संहिता और उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन समेत कई बड़े निर्णय लिए हैं। इसके साथ ही युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती व्यवस्था, मातृशक्ति को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण, निवेश, रोजगार, बेहतर कनेक्टिविटी तथा चारधाम सहित धार्मिक और पर्यटन अवसंरचना के व्यापक विकास को नई गति मिली। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए ग्रामोत्थान परियोजना और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से हरिद्वार में प्रदेश का पहला हिलांस रिटेल आउटलेट शुरू किया गया है। रीप की राज्य परियोजना निदेशक झरना कामठान ने कहा कि हरिद्वार को प्रदेश के पहले हिलांस रिटेल आउटलेट के लिए चुनना जरूरी है, क्योंकि वर्ष भर देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने कहा कि ये आउटलेट उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनेगा। श्रद्धालु जब स्थानीय उत्पाद खरीदेंगे तो केवल वस्तु ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और ग्रामीण महिलाओं के श्रम से भी जुड़ेंगे। इससे महिलाओं की आय बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने कल कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए विकसित की जा रही अवस्थापना परियोजनाओं के तहत विभिन्न निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने धनौरी सिडकुल मोटा मार्ग के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और डामरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क के आधारभूत कार्य शीघ्र पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला 2027 से जुड़े सभी निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। राज्य के शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने देहरादून नगर निगम में कल क्विक रिस्पांस टीम सेवा का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत नगर निगम ने 5 विशेष वाहनों को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया है। उन्होंने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टीमों को आधुनिक उपकरणों और आवश्यक संसाधनों से लैस किया गया है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में बिना विलम्ब प्रभावी कार्यवाही की जा सके। हर वाहन में ग्रास कटिंग मशीन, बेलचा, फावड़ा, गैंती, सब्बल, झाड़ी काटने की तलवार, कुल्हाड़ी, रस्सियां, सुरक्षा उपकरण और अन्य आवश्यक स्वच्छता एवं आपदा प्रबंधन सामग्री उपलब्ध कराई है। हरिद्वार में राजकीय मातृ शिशु अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सेवा का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने 39 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड के मातृ शिशु अस्पताल का निर्माण कराया है, जिसमें आज पूजा अर्चना के साथ अल्ट्रासाउंड सेवा की शुरुआत हुई। इससे पहले अल्ट्रासाउंड की सुविधा न होने के कारण मरीज को बाहर जाकर अल्ट्रासाउंड सुविधा के लिए अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ती थी। अस्पताल के निदेशक मनोज मिश्रा ने बताया कि रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गीत तिवारी मरीजों की जांच करेंगी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में मरीजों को आधुनिक और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्य आवश्यक सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप, न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा।

सुरबहार कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में एक ही कलाकार के तहत हमारे आज के कलाकार हैं हिंदी और उर्दू के मशहूर शायर निदा फाजली, जिनका नाम हिंदुस्तान के शीर्ष शायरों में शामिल है। हिंदी सिनेमा के लिए कई सदाबहार गीत और गजलें निदा साहब ने लिखे। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं उनकी कलम से निकला ये खूबसूरत गीत मोहम्मद रफ़ी की मधुर आवाज़ में। फिल्म है आप तो ऐसे न थे।

दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दोस्तों, इन खूबसूरत पंक्तियों को लिखने वाले मशहूर शायर निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था। उनका असली नाम मुक्तदा हसन था। निदा फाजली उनका लेखन का नाम था। निदा का अर्थ है आवाज़, स्वर, और फाजिला कश्मीर के एक इलाके का नाम है जहाँ से निदा के पुरखे आकर दिल्ली में बस गए थे, इसलिए उन्होंने अपने उपनाम में फाजली जोड़ा। दोस्तों, निदा फाजली साहब का बचपन ग्वालियर में गुजरा और पढ़ाई भी वहीं पर हुई। बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान चला गया, लेकिन निदा साहब भारत में ही रहे। दोस्तों, निदा फाजली साहब के बारे में आगे भी आपसे बातें करेंगे। आइए पहले सुनते हैं उनका लिखा ये गीत। फिल्म है स्वीकार किया मैंने, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

दोस्तों, निदा फाजली साहब को कविता विरासत में मिली थी। उनके पिता भी कविताएं लिखा करते थे। उन्होंने सीधी और सरल भाषा के जरिए लोगों तक अपने कलाम पहुंचाए। न सिर्फ गजलें, नज़में, बल्कि दोहे भी लिखे। हिंदी और उर्दू काव्य प्रेमियों के बीच अति लोकप्रिय और सम्मानित निदा फाजली ने बॉलीवुड को कभी न भूल पाने वाले ऐसे गीत और गजलें दी जो आज भी लोग गुनगुनाया करते हैं। फिल्मों के लिए गीत लिखने की शुरुआत उन्होंने रज़िया सुल्तान फिल्म के गीतों के साथ की और इसके बाद उनकी लेखनी से ऐसे ऐसे कमाल गीत निकले जो आज भी कानों में रस घोलते हैं। ऐसा ही एक मधुर गीत आइए अब सुनते हैं, तरकीब फिल्म से। आवाज़ें हैं जगजीत सिंह और अलका याग्निक की।

दोस्तों, निदा फाजली ज़मीन से जुड़े शायर थे, वो दिल के शायर थे। उनकी रचनाओं, गज़लों, नज़मों और गीतों ने वर्तमान सामाजिक विसंगतियों को रेखांकित तो किया ही है, साथ ही अंधेरे रास्तों में उम्मीद की नई रोशनी भी दी है। उनकी लेखनी में ज़मीनी सोच वाले शब्द फूटते थे। आज भले ही निदा साहब हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनके शब्द, उनके बोल हमारे बीच मौजूद हैं। वो हमेशा हमें जिंदा दिली का सलीका सिखाते रहेंगे।

श्रोताओं, विजय फिल्म के इसी गीत के साथ आज का सुरबहार कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। कार्यक्रम में एक ही कलाकार के तहत हमारे आज के कलाकार थे गीतकार और शायर निदा फाजली। और अब अगली मुलाकात तक के लिए अपनी दोस्त मीनाक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

सुरबहार, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना लीडर फिल्म से। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत दिया था नौशाद ने। साजन का घर, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत। शब्द रचना है समीर की और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना लीडर फिल्म से। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत दिया था नौशाद ने। साजन का घर, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत। शब्द रचना है समीर की और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

सात रंग के सपने फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की, गीतकार थे समीर। सैनिक भाइयों आइए अब सुनते हैं रन फिल्म का गीत। गीत एक बार फिर से समीर का है, संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने, आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

सैनिक भाइयों, आइए अब आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म के इस नगमे के साथ। नगमा निकार हैं हसरत जयपुरी और आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

मैं खिलाड़ी तुआ नाड़ी फिल्म के इसी नगमे के साथ आज का सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक भाइयों, आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

अभी सैनिक भाई सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं श्री मोहन चंद्र पांडे से सितार पर बजाया राग जौनपुरी। आलाप, जोड़, झाला और गत तीन ताल में है। आपके साथ तबला संगत की है सुरेश प्रभाकर ने।

शास्त्रीय संगीत में अभी श्रोता सुन रहे थे मोहन चंद्र पांडे का सितार पर बजाया राग जौनपुरी। तबला संगीतकर्ता थे सुरेश प्रभाकर। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजे हैं, लेकर हम आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

मेरी पसंद के सभी श्रोताओं को अंजू पांगते का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आ चुका है बारिश का भीगा भीगा मौसम। घुंघरू से छनकाते गीले पैरों से मन आंगन को गुलो गुलजार करने वाली बरखा ऋतु की मेहरबानी के लिए ये आकाश, धरती, नदियाँ, हम आप सभी दामन फैलाए बेसब्री से इंतजार करते हैं। वर्षा ऋतु आती है तो प्रकृति बूंदों की थाप पर सरगम छेड़ देती है, बूंदों संग नर्तन करने लगती है और गुनगुनाते मौसम का उत्सवी माहौल बन जाता है। इस निराले पावस ऋतु में रिमझिम के प्यारे प्यारे तराने हम सभी कुछ यूं ही गुनगुनाने लगते हैं।

सुनो, ग्रीष्म ऋतु की तपन के बाद ये इकलौता मौसम है बारिश का, जो बाकायदा ऐलान करके आता है, नजर आता है, महसूस कराता है अपने होने का, अपने अस्तित्व का। बूंदों का नर्तन, रिमझिम फुहार, ये सारे शब्द बारिश से ही जुड़े हैं। हर शब्द में खुशी अपार समाहित है, जैसे ही बोलो छलक से पढ़ते हैं और कुछ यूं गा उठते हैं।

शुद्धम बारिश का जिक्र हो तो याद आती है गुलजार साहब की एक नज्म, बादल की चंद पंक्तियां। कल सुबह जब बारिश ने आकर खिड़की पर दस्तक दी थी, कल सुबह जब बारिश ने आकर खिड़की पर दस्तक दी थी, मैं नींद में था, बाहर अभी अंधेरा था। ये तो कोई वक्त नहीं था उठकर उससे मिलने का। मैंने पर्दा खींच दिया, गीला गीला एक हवा का झोंका उसने फूंका मेरे मुंह पर। क्या कल्पना है, सच, कांच की बूंदों की मानिंद बरसती है फुहारें, हृदय को स्पंदित करती, तरन्नुम गुनगुनाती।

जी हाँ श्रोताओं, बरखा ऋतु के आगमन के साथ ही जनमानस बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं हरियाली के उत्सव पौधारोपण के साथ वन महोत्सव मनाकर। हमारे जीवन में वनों का कितना महत्व है ये हम सभी जानते हैं। वन की अधिकता से हमारा पर्यावरण संरक्षित होता है और इससे मानव जीवन को प्राण वायु रूपी ऑक्सीजन प्राप्त होती है। हमारे देश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, जो कि हम आजकल मना भी रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वनों की सुरक्षा और उनकी कटाई से जीव जंतुओं पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है उसके प्रति जागरूकता हम फैलाएं, जनमानस जागरूक रहे, तभी तो हरियाली आएगी, क्योंकि हरियाली से ही खुशहाली का रास्ता निकल कर आता है ना।

तो श्रोताओं, सबके पसंद के अपने अपने मौसम होते हैं, लेकिन एक बरखा ऋतु ही वो ऋतु है जिसे हर कोई चाहता है। धरती, गगन, आमजन, किसान, हर कोई बाट जो होता है। रिमझिम के तरानों संग ख्वाब संजोते हैं हम राही, या फिर पीहर की आस में, पिया मिलन की आस में कोई विरहनी, हर कोई इंतजार करता है इस पावस ऋतु का।

तो श्रोताओं, जब हल्की हल्की बारिश की फुहारें धरा पर पड़ती हैं तो बूंदों की टप टपाहट की ध्वनि दिलो दिमाग को सुकून से भर देती हैं। रिमझिम रिमझिम रुनझुन के स्वरों से ये धरती, ये गगन गूंजने सा लगता है, कुछ ऐसे ही।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। बहने आप सुनेंगी अर्पण।

ओपन कार्यक्रम से मैं सभी श्रोता देगड़ियन के आप लोगों को रेडियो देगड़ी दीपा जोशी नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों ना आज के अपने कार्यक्रम में देगड़ी कुछ बातचीत आप लोगों देगड़ करूँ कुछ जानकारी आप लोगों को दूँ और देगड़ में करूँ आप लोगों को भरपूर मनोरंजन तो कार्यक्रम में पछा तक हमारे देगड़ बढ़ी रहे देगड़ियों सहकारिता विकास का एक सशक्त माध्यम छू सहकारिता द्वि शब्दों है मिलवे बड़ू सह और कारिता एक मतलब छो मिलजुल वेर काम करण जब अनेक व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा कोई एक समान उद्देश्य के पालक लीजिए मिलजुल वेर काम करी जा तो उसके सहकार कर जा और सब लोग जब मिलवेर एक बटी बेर काम करने के सफलता के नई अवसर पैद हुई और नए नए मौक लोगों के मिलो सहकारी समितियाँ सामाजिक हर वर्ग के आर्थिक रूप पर सशक्त बढ़ूँ और मजबूत बढ़ून काम करूँ रोजगार बनूँ और स्थानीय विकास के गति देना काम करूँ उके बनूँ बढ़ून बहुत महत्वपूर्ण काम करूँ अचार भूलों की अगर हम बात करूँ तो अचार सहकारी समितियों के माध्यमल हमारे कतु के दगड़ियों के काम करणक और आर्थिक रूप सशक्त होनक भल मौक मिल रहा है सहकारी समितियाँ अपन सदस्यों कर्मचारियों और समुदायों के लिए तब सब यह भल काम करनी जब वो जीवन यापन योग्य वेतन लाभ और धन सृजन यानी कि डबल कमोणक और आर्थिक रूप सशक्त होनक और अपने भविष्य का सुधारणक दगड़े प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास तक ज़्यादा है ज़्यादा मौक दिन निर्भरीय सहकारिता कदू का फैद हम गछन सहकारी समितियों है मिलने वाले फायदों का अगर हम बात करूँ तो खाद्य सहकारी समितियाँ स्थानीय स्तर पर ज़्यादा राजस्व खर्च करनी और स्थानीय स्तर पर ज़्यादा उत्पाद खरीदनी ज़्यादा जैविक उत्पाद खरीदनी और ज़्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करनी और ज़्यादा रोजगार सृजित करनी यानी कि ज़्यादा कामों का अवसर अमल कर मिलो स्थानीय स्तर पर और सहकारिता सिद्धांत ने यही छोड़ियों सहकारी समितियाँ एकजुटता मूल्यों पर आधारित हैं जो सदैव आधारित पाते चले कि सहकारिता वजह कतु का संभावनाएँ बढ़नी देखो सहकारी समितियों के मुख्य उद्देश्य ले यही छो कि संगठनक सदस्यों और उनर आसपास समुदायों आर्थिक सांस्कृतिक और सामाजिक जरूरत के पूर्ण करी जा सको सहकारी समितियाँ अक्सर अपने समुदाय के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता धरें और जो समुदाय में वो मौजूद छन या जन सेवा करनी उनके मजबूत बनोर पर ध्यान देनी तो समझ पहले कौच की मिलजुल बेर एक बटी बेर काम करण सहकारिता मतलब काम हो तो एक समान उद्देश्य के लिए का पाना कीजिए मिलजुल भी प्रयास करनी काम करना तो ये बात ये सब बातों ने पता चल जाए कि एकता में कतुक ताकत छू तो हमन के मिलजुल भेर एक बटी बेर काम करन चाहे क्योंकि मिलजुल भेर एक बटी बेर जो काम करी जाँच उनमें सफलता जरूर मिले बातचीत आप लोगों ने अगर करी अगले तक कर लो आप लोग मनोरंजन और सुनने के लिए।

का दपे पौजिया सुनू का मेरी जमुना साई चुम चुमा हिट जानू कोती का मेरी जमुना साई चुम चुमा पौजिया सुनू का मेरी जमुना साई चुम चुमा

मेरी जमुना साई चूं चुमा में जानू नेपाला मेरी जमुना साई चूं चुमा हिट जानू कोतिका मेरी जमुना साई चूं।

0: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय ITI से।
1: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
0: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
1: 12 सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत ITI में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
0: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय ITI में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
1: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: निवृत्त कहना बिल्कुल सही कह रखो, पैर सुख निरोगी काया। जब हमारा शरीर स्वस्थ रोचो तो हम खुश रहनु और हर काम के भले के मन लगे भी करनु। तो हम सब ना के फर्ज है कि हम अपन शरीर के अपना आंग के स्वस्थ धरू निरोगी धरू और देख लीजिए हम कतु का काम ला करनु देखो और हम कुछ करण ना चाहे, क्योंकि जब हम स्वस्थ छना तो तब हर काम के भले के कर सकनु। ये सब बातों के ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए पोषण की पाठशाला के अंतर्गत बात कर लूँ नई नई खान पान अखबार में। तो पोषण की पाठशाला के अंतर्गत आज हम आप लोगों के लिए भी आ रही हूँ एक क्षेत्र संकलित बातचीत पौष्टिक और गुणकारी बथवाक विभिन्न व्यंजन विषय पर श्रीमती अविता सहादगर करी गई हमारी बातचीत, तो सुनो। नगरी पोषण की पाठशाला के अंतर्गत आज हम बात करने लग रही पौष्टिक और गुणकारी साग बथुआ के बारे में। हम रोज अपन खान में अलग अलग साग सब्जियों के शामिल कर लू ताकि हम स्वस्थ और निरोगी रहूं। एक ऐसा साग छू बथुआ जो हमारे आंग के ताकत दू और पाचन तंत्र के लिए मजबूती दू। आज हम यही गुणकारी बथुआ के बारे में बात करने लग रही। बथुआ के व्यंजन हम बढ़ा सकल के फैद हम उनका ये अच्छे जो इस सब बारे में आज हम बातचीत करूँ। तो कार्यक्रम में हमारे द्वारा जुड़ रही श्रीमती बबीता शाह। बबीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत छो हमारे कार्यक्रम ऐपन में।
3: नमस्कार दीपा जी, धन्यवाद।
2: आप जानना चाहूँ कि पौष्टिक और गुणकारी हरे पत्तेदार साग बथुआ के फैद हम उनका होनी और के पोषक तत्व में पाई जानी।
4: आयरन फाइबर और विटामिन है भरपूर बथुआ, न सिर्फ स्वाद बढ़ू बल्कि आंग के हमारे शरीर के ताकत दी और पाचन मेले खास मदद करूँ। तो हम सबन के अपने खान में बथुए के जरूर शामिल करें। देखो ना, साल भर मिलाने वाले बथुओं में डाइटरी फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाता। यह के अलावा विटामिन ए, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम, जिंक, विटामिन B6 और विटामिन सी ले पाई जा। तो सभी पोषक तत्व हैं भरपूर छुए बथुआ।
2: बहुत बड़ी बबीता जी आप बताया कि के पोषक तत्व हमन के यो बथुआ बती मिलनी। तो बबीता जी यह कदुक फैद हमन के मिलनी, के फैद हमारे शरीर के यो बथुआ खाने मिलनी।
4: बथुआ पाद ब्लड शुगर के कंट्रोल करण में काफी असरकारक होनी। बथु में डाइट्री फाइबर ले बहुत हूँ, यके खाड़ल पाचन क्रिया सही तरीकल है, कब्ज और पाइल्स जैस परेशानी है छुटकार मिलो। बथुआ में एंटीऑक्सीडेंट गुण हुनी, येल हमार त्वचा चमकदार बने और हमार बालक ले जिले यो बहुत है भल छू। विटामिन सी है भरपूर बथुआ रोग प्रतिरोधक क्षमता के मजबूत करूं, जो हर मौसमी बीमारी है हम उनके दूर धरूं।
2: बहुत बड़ी अपन कौच की रोग प्रतिरोधक क्षमता लय में है तो हम बीमारी होने बचेंगे है ना।
4: अगर पौष्टिक तरीकल बथुआ के अपन आहार में शामिल करी जाओ तो यो शरीर के संपूर्ण पोषण दियो।
2: बिल्कुल बबीता जी, तो बथुआ के कतुक प्रकार हम अपना आहार में शामिल कर सकनू, ये के व्यंजन हम बढ़ा सकनू, ये बारे में हमें श्रोताओं के बढ़ाओ।
4: बिल्कुल, बथुआ साग, बथुआ रैत, बथुआ दही तड़का, बथुआ पकौड़ी हम बनाए सकूल, बथुआ कोफ्ता और बथुआ परौठ ले हम बनाए सकूं, जो नानतेने को बहुत भल लगी।
2: ये तो बहुत सारा प्रकार आपुल बता है, एक बथुआ हम यदि चीज अलग अलग प्रकार बढ़ा सकनू। जैसे आपुल बताया कि बथुआ हम अलग अलग प्रकार व्यंजन हम बढ़ा सकनू, तो सब है पहले आपू हमें श्रोताओं को बता दो कि बथुआ साग हम कैसे बढ़ा सकनू।
4: सब है पहली बतवे साग बड़ूने लीजी ओके बिनली और फिर भली के खूब धोली साफ पाड़े और धोवे रुकी उबाल ली। एक कढ़ाई में सरसों तेल गरम कर ली, जीरक उमे तड़का लगा दे और आवश्यकता अनुसार मसाला डाल दे, नून डाल दे कि 3 मिनट आई पक ले, फिर बते बड़ी बतवे साग तैयार छे।
5: ये तो बबीता जी अपुल बथवक साग के बारे में हमको बता दी, अपुल कहो कि बथवक रैत ला बढ़ा सके नहीं, तो ये बथवक रैत का हम कैसे बढ़ू ये ला हमारे श्रोताओं को बता दिए।
4: बिल्कुल जरूर, सब है पहली बथवे के भली के साफ कर लिया जिसके हम और हरी सागुन साफ कर लू की लेके हरी साग में बहुत माट और धूल है तो साफ करना बहुत जरूरी छू के भली के धोली बाद पातन के उबाल बेर या तो अपन मिक्सी में पीस सकता या तो सिलबट्टा में तुम पीस लिया, फिर उमे दे नमक और जीरे नून और मिर्च अपन स्वाद अनुसार डाल लिए तो यह बढ़िया रह तैयार है जा और हमारे पिटक लीजिए तो ये बहुत है भलू।
5: बहुत बढ़िया अपुल बता बबीता जी कि बथुआ रैत हम कैसे बढ़ा सकन और हमारे पिटक लीजिए लाया भलू। बथुआ दही तड़का ला अपुल बता, तो ये बथुआ दही तड़का का बनाना विधि ला हमारे श्रोताओं को बताओ।
4: जरूर, तड़के वाल दही बथुआ बड़ोन लीजिए, बथुआ पातन की धो धैवे उबाल लियो, फिर मिक्सी में या सिलबट्टी में पीस लियो और उमें दही मिले लियो, फिर उमें नून है गोई मिर्च है गोई और मसाला अपने स्वादानुसार डालो और यमे हींग हरी मिर्चक और रायक तड़का लगा दियो, बड़ी चटपट बथुआ दही तड़का तैयार है चल।
5: बिल्कुल अपुल बहुत बड़ी बता, रैत मैल बड़ा राशि लेकिन यह बथुआ दही तड़का मिलना नहीं बड़ा राशि, अब मिला बड़ोल बथुआ दही तड़का।
4: जी दीपा जी बिल्कुल बनाइए।
5: बथुआ पकौड़ा हम बनूंगे तो बथुआ पकौड़ कैसे बड़ा यार?
4: बथुआ पकौड़ तो बहुत ही आसान छू, साफ करी हुई बथुआ पतंग की धोलियो और उकी महीन महीन काट, उमें 1 चम्मच चावल पिसू और उमें जरूरत हिसाब 1 ठुल चम्मच चावल आठ है गो, 1 चम्मच बेसन अट है गो और 1 चम्मच गेहूं आठ है गो, इन तीनों की मिक्स कर देनी। बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च, कुटी हुई लहसुन, धनिया पात और नून डाल दे उकी मिक्स कर ली और जिसके हम और पकौड़े उनकी तलनू उसी के तुम यकीले तल लियो और दगड़ में भंगीरक या भांगा खटा बना लियो, स्वाद है अलग।
5: बिल्कुल आप जैसे बथुआ पकौड़ कहीं तो और भांग या भंगीरा खटक दगड़ तो मुख में पाने आएगा बबीता जी, आप एक बात को सुन लें और आपुल कौछ की बथुआ कोफ्ता ला बढ़ी जानी, तो बथुआ कोफ्ता हम कैसे बढ़ोनू उला जैसे और कोफ्ता बढ़ोनू उसके बढ़ने जानी
4: वही यह कोफ्ता बहुत लजीज होनी, यह लीजिए पत्ते की उबाल लेनू और जरूरत में चावल पीसू, थोड़ी बेसन गेहूँ पीसू, ले ली बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, कुटी हुई लहसुन और हरी धनिया पात, नून मिर्च और मसाल सब स्वादानुसार मिला ली और भी कोफ्ता बना ली। वो बाद हम टमाटर और प्याज प्यूरी बने लेंगे, कॉल बेर उमें अंत में उमें कोफ्ता डाल देनू जैसे हम और कोफ्ता बने लू कई योले बने लू ये की उलट पलट बेर पैन में भले के पका लेनी, गरम मसाला डाल दे उमें कान की डाल दी तो बहुत बड़ी कोफ्ता तैयार हो जाएगी।
5: ये तो बहुत बड़ी तरीका आपको बता दी बबीता जी, अब जैसे आपको बताया कि बथुआ पराठ ला बढ़ाई जानी और नंती रेखे बहुत पसंद करनी किले की तो कहूँ की नंती साग पसंद करे ना हरे साग नहीं खाने तो पराठ के हूँ खुश हवे खा लेनी, तो ये जो हमारे बथुआ पोषक तत्व छन नंतुन के कोई ना कोई जरियल मिली जाल है ना, तो हमन का परोठा अपन नंतुन जी जरूर बड़ो चनी ने, तो ये परोठा आपको कैसे बड़ो छा ये हमन के बताओ।
4: नंतिन

0: सबन ज्यादा पसंद करनी पूछिन फराउट। तो नाश्ता में हम नमकीन कलेजी बथवा परांठ बना सकते हैं। अगर स्कूल को ले जाने छी तो तबले बना सकते हैं। तो बथवे परांठ बना लीजिए। सब है पहली हम बथवे के बिमली ओके भल के धोवे पतन की उबाल ली और यह में जौ पिसू है गोए नून अजवाइन हींग और पसंद छू तो थोड़ा हरी मिर्च से काट दियो और उसे भली के गूथ ली। गूथी हुई किसी तैयार कर बे व्हील गरम गरम पराठ बना दे। दह दगड़े पराठ बहुत भर लगने और नंदिन ने ये पराठन की बहुत पसंद करनी।
1: ये तो आपुल बहुत बड़ी बता बबीता जी की अगर नंदिन साग मिला खाना है तो पराठ खा लेंगे। कोई न कोई जरियल हम उनका ये बथु खावे दू ताकि पोषक तत्व है भरपूर जो हमारे बथु छू वीक फैर हमारे नंदिन इनके लिए मिल सको। तो बहुत बड़ी बड़ी बथुआ व्यंजन आप हमन के बताई और अपना अमूल्य वक्त हमन के दे यज्ञ लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: अपन।
2: पौष्टिक और गुणकारी बथुआक विभिन्न व्यंजन विषय पर श्रीमती बबीता सादगर कर गई हमारी अच्छी तो संकलित बातचीत आप लोगों ने सुनी। उम्मीद करने तो बढ़ियों आप उनका भल लागो न आप यह बथुआक विभिन्न व्यंजन जो उन्होंने बताई उन्होंने जरूर बनाया स्वस्थ और निरोगी रहे। और हम तो यह चाहते कि हमारे सदा श्रोता दगड़ी स्वस्थ रहो निरोगी रहो हंसते मुस्कुराते रहो और हम यह कार्यक्रम के जैसे के सुनते रहो। तो आखिर के आप लोगों को मनोरंजन कर लो और सुनो जो गीत।

0: अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम ऐप पर। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि

0: ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। UAPA अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के SIR के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधा कृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ. अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रस्तुत है हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन और ग्रामीण

अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने की दिशा में सरकार की महत्वपूर्ण पहल। हरिद्वार में खुला राज्य का पहला हिलास रिटेल आउटलेट। सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश कुमार ने मसूरी में प्रस्तावित मेट्रो रोपवे परियोजना के टर्मिनल स्टेशनों और संबंधित भूमि का निरीक्षण किया। उत्तराखंड में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी दावों का समयबद्ध किया जा रहा निस्तारण। मृत्यु दावों के त्वरित निपटारे के लिए संवेदना व्यवस्था अब पूरे जोन में लागू होगी। और नैनीताल जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित 14 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पारित किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण, स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत हरिद्वार में ग्रामोत्थान रीप परियोजना और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से राज्य के पहले हिलास रिटेल आउटलेट का उद्घाटन किया गया। आउटलेट में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय खाद्य उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद, मसाले, मिलेट आधारित खाद्य सामग्री, हस्तनिर्मित वस्तुएं और उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े अनेक उत्पाद एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। इससे महिलाओं को अपने उत्पादों के विपणन

0: हमको स्पेस दिया जाएगा जिससे कि हमारी जो महिलाओं के उत्पाद हो उनको एक अच्छा मंच मिले, उनको वहाँ पे आउटलेट मिले और वो अपने उत्पादों को वहाँ पे प्रदर्शित करके उसकी अच्छी सेल कर सके। तो इसी कड़ी में आज पैरिस की शुरुआत हुई है, सबसे पहले हरिद्वार जनपद में। यहाँ पे जो ये पेट्रोल पंप है भाद्राबाद में, यहाँ पे हमारा एक श्रद्धा CLF ग्रुप को एक स्पेस दिया गया है यहाँ पे और इनके द्वारा अपना जो है आउटलेट यहाँ पे खोला गया है। तो इसका यहाँ उद्घाटन किया गया है और ये री परियोजना के अंतर्गत जो कि IFED फंडेड प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत ये पहल है। हमने ये MOU पूरे स्टेट के लिए किया है और हरिद्वार जनपद से शुरुआत है और आगे हम अन्य जनपदों में भी महिलाओं को स्पेस देने के लिए इसी तरह के आउटलेट शीघ्र खोलेंगे।
1: पर्यटन नगरी मसूरी में लगातार बढ़ रही पर्यटकों की संख्या और बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावित मसूरी मेट्रो रोपवे परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार ने उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिला प्रशासन, नगर पालिका मसूरी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित रोपवे टर्मिनल स्टेशनों और संबंधित भूमि का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता, पर्यावरणीय संतुलन और यातायात प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित रोपवे का मार्ग लाइब्रेरी चौक क्षेत्र से होकर गुजरेगा, जिसके मद्देनजर परियोजना से संबंधित आवश्यक भूमि और अन्य व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया गया। सचिव आवास ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि परियोजना तकनीकी रूप से मजबूत, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हो, ताकि स्थानीय लोगों और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके तथा मसूरी की प्राकृतिक और ऐतिहासिक पहचान भी अक्षुण्ण बनी रहे। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने लालकुआं विधानसभा के अंतर्गत ग्राम विजयपुर गोलापार में प्रस्तावित विजयपुर पहाड़ पानी मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। श्री भट्ट ने अधिकारियों को मार्ग निर्माण कार्य में तेजी लाने और जनहित से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए।
2: यहाँ के लोगों की जो डिमांड थी वो डिमांड पहली बार पूरी हुई है। लगभग 4.25 करोड़ से ये आज यहाँ पर सड़क आ रही है। इसमें कॉजवे पहले हम बना रहे हैं, निकट भविष्य में बड़ा पुल बनाएंगे। जैसे सूर्या नाला पर भी पुल बन रहा है, यहाँ हमने पहले भी कई पुल बनाए हैं। धीरे धीरे हर व्यक्ति की, हर गांव में रहने वाले नागरिक की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा विजन है, उसके आधार पर हम सब लोग काम करते हैं। क्षेत्रीय जनता की जो डिमांड से आती है, जनप्रतिनिधि हम लोग सांसद हों या फिर हमारे MLA हों, हम सब लोग उसको आगे बढ़ाते हैं।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
1: ब्रेक के बाद उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़े सभी दावों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही मृत्यु दावों के त्वरित और संवेदनशील निपटारे के लिए देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय में शुरू की गई संवेदना व्यवस्था को अब पूरे जोन में लागू किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजय के मेहरा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 9,744 अंशदायी प्रतिष्ठान और 7,74,377 अंशदायी सदस्य पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय हितधारकों को प्रभावी और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी दावों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। श्री मेहरा ने बताया कि EPFO ने आंशिक निकासी के नियमों को भी सरल बनाया है। अब सदस्य शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार आंशिक निकासी कर सकेंगे। इसके अलावा सभी प्रकार की आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि घटाकर 12 माह कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त निधि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सदस्य के अंशदान का 25% न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने का प्रावधान भी किया गया है। हरिद्वार में कांवड़ मेला को सकुशल और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच समन्वय को और मजबूत करने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारियों ने यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और कांवड़ सेवा शिविरों की तैयारियों पर चर्चा कर संयुक्त रणनीति

0: तैयार की। एक रिपोर्ट।
1: खानपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कोतवाली भोपा और कोतवाली पुरकाजी मुजफ्फरनगर के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर राजमार्ग की स्थिति, कांवड़ मार्ग, डायवर्जन प्लान और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने बड़ी संख्या में आने वाले शिव भक्तों की सुविधा और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए आपसी तालमेल के साथ कार्य करने पर सहमति जताई। बैठक में विशेष रूप से कांवड़ सेवा शिविरों, भजन कीर्तन और अन्य धार्मिक आयोजनों के स्थानों पर भी चर्चा की गई, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित की जा सकें। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कांवड़ मेले के दौरान दोनों राज्यों की पुलिस लगातार समन्वय बनाए रखेगी। सूचना के त्वरित आदान प्रदान, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन के माध्यम से श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित एवं सुगम बनाया जाएगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से गीता नेगी।
0: नैनीताल जिला पंचायत की काठगोदाम में हुई बोर्ड बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित 14 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बजट में विकास व निर्माण कार्यों के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए जबकि अन्य मदों के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरम्बाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 4 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही 1 प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी करने सहित 2 अन्य प्रस्तावों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने की दिशा में सरकार की महत्वपूर्ण पहल। हरिद्वार में खुला राज्य का पहला हिलांस रिटेल आउटलेट। सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार ने मसूरी में प्रस्तावित मेट्रो रोपवे परियोजना के टर्मिनल स्टेशनों और संबंधित भूमि का निरीक्षण किया। उत्तराखंड में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी दावों का समयबद्ध किया जा रहा निस्तारण। मृत्यु दावों के त्वरित निपटारे के लिए संवेदना व्यवस्था अब पूरे जोन में लागू होगी। और नैनीताल जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित 14 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पारित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत, आगाज कर रहे हैं गुलाम अली की आवाज में इस गजल के साथ।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी है। कल सुबह। आज प्रस्तुत है अफाक अहमद का लिखा ये नाटक। निर्देशक हैं केदार शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये नाटक कल सुबह।

0: सच कहती हूँ, आपका खून बिल्कुल सफेद हो गया।
1: इसमें खून सफेद होने वाली कौन सी बात है?
0: मेरी एक ही तो बहन है और वो भी आपको एक आंख नहीं भाती।
1: जी हाँ, सिर्फ एक ही बहन, बहनों भी तो हैं। उनके तीन अदर बच्चे, जेठ जेठानी और फिर माशाल्लाह उनके तीन अदर।
0: हाँ, जैसे सब आपके टुकड़ों पर ही तो पल रहे हैं।
1: ये मैंने कब कहा? मेहमानदारी दो चार की हो तो भली लगती है, मगर दो दो महीने उनके नखरे उठाना मेरे बस की बात नहीं।
0: अगर उन्हें पता भी चल जाए कि आप उनके बारे में कैसी बातें करते हैं, तो वो एक लम्हा भी आपके घर में न टिके।
1: तुम बातें मुझसे कर रही हो या पड़ोसियों को सुना रही हो?
0: पड़ोसियों को सुनाने से क्या मिलेगा, अपनी ही तो जगह हजाई होगी। हाँ, सुबह आपकी इकलौती साली से ही कहूंगी कि बहन की मोहब्बत में गालियां खाने से बेहतर है कि वो यहाँ से चली ही जाए।
1: मैंने कौन सी गाली दी है उन्हें?
0: और क्या गाली में भलपैल जुटते हैं

0: अब वो आपके घर में एक मिनट भी नहीं रहेंगे, बल्कि मैं भी चली जाऊंगी ताकि आपका कलेजा ठंडा रहे।
1: वो तो इसलिए चले जाएंगे कि उनकी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, मगर आप किस खुशी में जा रही हैं?
0: मैं भी तो गैर ही हूँ, गैर खानदान से आई हूँ, जो आपके

0: हूँ है, ये मैं हूँ नीली फ्रॉक पहने।
1: हाँ कहाँ, अगर हमारी बेटी आई होती तो पहले हमें सुबह का प्यार करती।
0: क्या अब्दुल ने आपका मुंह धुला दिया है?
1: हाँ, और तुमने पेस्ट किया?
0: जी दादा अबू, देखिए वाइट है ना मेरे दांत।
1: हाँ मोती जैसे, तो फिर हो जाए प्यारा। मगर आज तुम आधा घंटा लेट आई।
0: क्या करूं, रात फिर देर से सोई।
1: होमवर्क?
0: दादा अबू आजकल छुट्टियां, तो फिर होमवर्क कैसा?
1: ये तो हम भूल ही गए थे। तो फिर क्या कॉमिक पढ़ रही थी?
0: पढ़ कहाँ रही थी, रात को जब मम्मी और पापा लड़ रहे थे तो वो दरवाजे से लगी खड़ी थी।
1: मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ?
0: हवा से पर्दा उड़ा तो मैंने देखा।
1: ओ, बुरी बात, कोई भी करे बुरी बात है शाजी।
0: दादा अबू एक बात बताइए।
1: पूछो बेटे।
0: क्या दादी भी आपसे लड़ा करती थी?
1: हाँ दादी कभी कभी।
0: क्या जब घर में मेहमान आते थे?
1: घर में मेहमान?
2: आपने मुझे बुलाया था?
1: हाँ नजमा, आज 3 दिन हो गए तुम्हारी सूरत देखे हुए।
2: क्या कह रहे हैं आप, सुबह नहीं मिले थे हम?
1: सूरत हमें उस वक्त तक नजर नहीं आती जब तक हम बातें न कर लें।
2: अच्छा अब जल्दी बोलिए क्या कहना है, रात के खाने का भी कुछ नहीं हुआ।
1: उफ़ ये तो बहुत ज्यादती है, रात को जब काम निपटा कर आती हो तो हम सो चुके होते हैं, और जब सोकर उठते हैं तो पता चलता है कि आप किचन में।
2: जब घर में मेहमान हो तो ये सब होता ही है।
1: एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी?
2: कहिए।
1: ये मेहमान तो जी का जंजाल हो गए।
2: बुरी बात, मेहमान भगवान के घर ही आते हैं।
1: मेहमानों के आने पर मुझे कोई एतराज नहीं, मगर
2: ये सब लोग हमेशा यही तो नहीं रहेंगे। और नुसरत, नुसरत तो यूं भी आपकी सबसे प्यारी बहन है।
1: थी, अब नहीं।
2: अब क्या हो गया?
1: अब तो सब तुम्हारा कलमा पढ़ते।
2: अच्छा तो ये थी आपकी इंतहाई जरूरी बात।
1: और रुको तो सही, ओफो हवा के घोड़े पर क्यों सवार हो, इधर आओ।
2: कमाल करते हैं आप भी, क्या मेहमानों को भूखा सुलाने का इरादा है?
1: जब हम खुद भूखे सोने के लिए तैयार हैं तो उनमें कौन से सुरखाब के पर हैं?
2: हैं, एक इन्हीं में क्या, हर मेहमान में सुरखाब के पर होते हैं।
1: अच्छा बाबा, 2 दिन बाद ही तुमसे बात करेंगे, परसों जा रहे हैं ना सब लोग?
2: जी नहीं। मैंने टिकट वापस करवा दिए हैं।
1: हाँ
2: इतनी दूर से आए हैं, कम से कम 2.5 महीने तो रहे।
1: क्या
0: दादाबू, आप चुप क्यों हो गए दादाबू?
1: मैं याद कर रहा था कि तुम्हारी दादी कब लड़ा करती थी।
0: कब लड़ती थी?
1: जब घर में हम दोनों अकेले होते थे और मैं उनके लिए कोई कीमती चीज खरीद कर लाता।
0: मगर अम्मी क्यों हर वक्त लड़ती हैं?
1: पापा भी तो लड़ते हैं।
0: हाँ वो भी, उनको भी बस हर वक्त गुस्सा आता रहता है।
1: हर वक्त?
0: हाँ दादा अबू, हर वक्त जब दफ्तर से आते हैं तो कहते हैं मेरा सर दुखता है, मैं थका हुआ हूँ, अब खेलो मत, अब बात मत करो।
3: सलाम साहब।
1: हाँ क्या हाल है अब्दुल, ठीक हो?
3: जी आप बाहर चलेंगे, कुर्सी लाऊं?
1: ठीक है ले आओ।
3: छोटी बीबी नाश्ता लग गया है, आपको बुलाया है।
0: अच्छा बाय बाय ग्रैंडपा।
1: बाय बेटे, बाय बाय बेटे। अच्छा
4: गजाला
2: जी,
4: भाई कहाँ है और लोग, नाश्ता कब से ठंडा हो रहा है?
2: 2 दफा अब्दुल को भेज चुकी हूँ, कोई आ ही नहीं रहा है।
4: मगर क्यों?
2: अब ये भी मैं ही बताऊँ?
4: जर्दी नहीं की एक बात सुबह होने से पहले ही।
2: फिर आपने इल्जाम लगाया,
4: फिर तुम्हारी आवाज बुलंद हुई।
0: मम्मी अगर आप कहें तो हम नाश्ता कर लें।
2: ओफो कर लेना, मरी क्यों जाती है।
0: सॉरी
5: गजाला, सलमा मुन्ने के फराक को पूछ रही थी।
2: वो धोबी के यहाँ गई है, धुल कर आ जाएगी तो पार्सल से भिजवा दूंगी।
4: पागल हुई हो, जा कौन रहा है?
5: नदीम भाई बस।

0: नहीं साहब, ये नामुमकिन है, आपको रुकना ही पड़ेगा।
1: रुक जाइए ना, कुछ दिन और गालियाँ सुनते जाइए।
0: क्या बकती हो?
1: आप मुझसे चीखकर ना बोलिए।
0: मैं देख रहा हूँ तुम दिन ब दिन सर पर चढ़ती जा रही हो।
2: गजाला बहन, आप ही चुप हो जाइए।
1: क्यों चुप हो जाऊँ, ये कौन सा तरीका है?
3: मम्मी, हम दादा अबू के पास जा रहे हैं।

0: आओ नाश्ता हो गया बेटे।
1: कहाँ दादा अबू, वहाँ तो कभी बिस्तर बनता है तो कभी खुलता है।
0: तुम्हारे पापा कहाँ हैं?
1: वो चुपके से मम्मी से लड़ जाते हैं और मेहमानों से मीठी मीठी बातें करते हैं।
0: न उन्हें लड़ना आता है और न प्यार करना।
1: मैं क्या करूँ दादा, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
0: हाँ? कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी नहीं।
1: यू आर लवली।
0: थैंक यू।
2: अरे हाँ ग्रैंडपा, आपको तो एक पहेली पूछनी थी।
0: अच्छा पूछो।
2: किसी के माँ भी है और बाप भी है, मगर वो किसी का बेटा नहीं है।
0: हाँ, माँ और बाप दोनों हैं और वो किसी का बेटा नहीं।
2: जी हाँ।
0: कुछ अत्ता पत्ता?
2: हमारी तरह है।
0: मैं समझ गया, एक ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप खो गए हों।
2: नहीं, खो गए तो क्या हुआ, वो उनका बेटा तो है।
0: हाँ हाँ हाँ, ये तो है, ये तो है। अच्छा भाई शाजी, हम हार गए।
2: हार गए? गंगा पार गए?
0: बिल्कुल।
2: आपकी उस्ताद का नाम?
0: शाजी।
2: ठीक, वो मैं हूँ।
0: तुम?
2: हाँ मैं बेटी, मेरे माँ बाप है मगर मैं उनका बेटा नहीं बल्कि बेटी हूँ।
0: अरे वाह बेटी, इतना सीधा तो वो सवाल था। अच्छा अब तुम हमारे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछिए।
0: सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है?
2: गुजल खाने में।
0: शाजी बिटिया जीत गई।
2: दादा वो आप चलना कब सीखेंगे?
0: क्यों, तुम्हें क्या करना है?
2: अब देखिए ना, आप ही तो मेरे दोस्त हैं।
3: आपने मुझे बुलाया डैडी?
0: हाँ हाँ, आओ बेटे आओ, आओ भाई बैठ जाओ, बैठो।
3: जी।
0: हाँ, तुम कुछ परेशान लगते हो। हाँ, क्या बात है?
3: की डोर कुछ इस तरह उलझ गई डैडी, किसी हल का सिरा ही नहीं मिलता।
0: कुछ मैं भी तो सुनूं।
3: घर से लेकर दफ्तर तक, अफसरों महतातों से लेकर दोस्तों रिश्तेदारों तक, हर शख्स मेरे खून का प्यासा है।
0: तुम ही कहो नदीम, ये भला किस तरह मुमकिन है? तुम्हें किस तरह फर्ज कर लिया कि तुम इतने अहम हो कि हर शख्स को तुमसे दुश्मनी की फुर्सत है?
3: डैडी आप अपनी बीमारी की वजह से इस कमरे में कायद हैं। आप नहीं जानते कि मैं
0: नदीम, बीमारी का असर मेरी टांगों पर है, दिमाग पर नहीं। और वो शख्स जिसका जहन आजाद है कभी कैद नहीं हो सकता।
3: मेरा ये मतलब नहीं था डैडी, मसलन चंद छोटी छोटी बातें जिन्हें
0: तुम जिंदगी में छोटी छोटी बातों को इतनी अहमियत ही क्यों देते हो कि वो तुम्हें दीमक बनकर चाट जाए?
3: हा? आप तो समझने की कोशिश ही नहीं करते डैडी।
0: मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ मगर तुम समझा नहीं पाते। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें चारों तरफ अंधेरा क्यों नजर आता है?
3: सोचा तो बहुत है रेड, मगर अंधेरे की सेवा कुछ हाथ नहीं है।
0: हाँ भी नहीं सकता।
3: क्यों?
0: इसलिए कि तुम कदम आगे बढ़ाना चाहते हो मगर पीछे मुड़कर देखने से बाज नहीं आते।
3: मैं समझा नहीं रेडी।
0: बीते दिनों की छोटी छोटी महरूमियां, शिकायतें, नाइंसाफियां तुम्हें हर लम्हे दस्ती रहती हैं और तुम उनके जाल में कुछ इस तरह उलझे हो कि ये भी भूल गए हो कि सिर्फ माजी ही एक ऐसी चीज है जिसे खुदा भी नहीं बदल सकता।
3: तो फिर आप ही कहिए कि मैं ऐसी चीज को किस तरह भुला सकता हूं?
0: बेटे अपने फिक्र की परवाज का रुख मुस्तकबिल की तरफ रखो।
3: एक तरफ दफ्तर की परेशानियां है और दूसरी तरफ
0: हाँ, दफ्तर में क्या परेशानी है तुम्हें?
3: वो

0: मेरा प्रमोशन ड्यू है, मगर सुना है प्रेमनाथ चोर तोड़ में मसरूफ है, मुझे डर है कहीं वो मेरा हक ना मार ले।
1: बड़ी नाउम्मीदी हुई अपने बेटे की जबान से अल्फाज सुनकर। अगर तरक्की तुम्हारा हक है तो वो तुम्हें मिलेगी।
0: डैडी, इस बेजमीर दौर में ये सब किस्से कहानियां हैं।
1: तुम जो चाहो करो, मगर एक बात याद रखो, मैं जो कुछ कह रहा हूं वो तजुर्बे की रोशनी में कह रहा हूं।
0: जी मैं समझा नहीं।
1: जिस दोराहे पर आज तुम खड़े हो, एक दफा मैं भी ऐसे ही दोराहे पर खड़ा था।
0: आप?
1: हाँ मैं, मगर उस वक्त तुम बहुत छोटे थे। नाजली और आसिफ तो पैदा भी नहीं हुए थे।
2: अरे आप इतने गुमसुम क्यों बैठे हैं?
1: हा?
2: क्या कॉलेज नहीं जाएंगे?
1: हाँ नहीं।
2: छुट्टी है आज?
1: नहीं।
2: तबीयत ठीक नहीं है क्या?
1: कोई खास बात नहीं।
2: आप मुझे अपनी शरीके हयात समझते हैं?
1: तुम्हें शुबा है क्या?
2: था तो नहीं, मगर अब कुछ
1: होने लगा है।
2: हाँ
1: मगर क्यों?
2: अब आपके सीने में राज बनने लगे हैं।
1: अगर कोई बात सिर्फ इसलिए राज रखी हो कि तुम्हें तकलीफ न देना चाहता हूँ।
2: आपके दुख में शरीक न होने से ज्यादा दुख की बात मेरे लिए और कोई नहीं।
1: मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ।
2: जरूर छोड़ दीजिए।
1: तुम वजह नहीं पूछोगी?
2: अगर आप मुनासिब समझेंगे तो खुद बता देंगे।
1: लोग मेरे हक तलफी करना चाहते हैं।
2: कैसी हक तलफी?
1: एक साहब जो मेरे जूनियर हैं, प्रिंसिपल उनको रीडर बनाना चाहते हैं।
2: खुदा के इंसाफ पर यकीन रखिए, जो आपका हक है वो आपको जरूर मिलेगा।
1: तुम्हारा मतलब है कि मैं हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाऊं और कुछ ना करूं?
2: मैंने ये कब कहा?
1: मैं तो यही समझा।
2: आप अपनी मिसाल जिंदगी के चिराग को रोशन रखिए, लोग खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएंगे।
0: तो वो साहब फिर आपसे पहले रीडर बने?
1: जरूर बने।
0: मैं कम से कम ये नहीं होने दूंगा।
1: अगर तुम्हारा अफसर बेईमानी पर आमादा हो तो तुम क्या करोगे?
0: मैं नौकरी छोड़ दूंगा।
1: फिर उसकी बेईमानी खत्म हो जाएगी?
0: मैं अखबारों में मजामीन लिखूंगा उसके खिलाफ।
1: ये सब जज्बाती बातें हैं। अभी तो तुमने मेरी अधूरी कहानी सुनी है।
0: क्या अभी और कुछ भी है?
1: हाँ, वो रीडर मुझसे पहले जरूर बन गया, मगर मेरी खामोशी ने इस नाइंसाफी के खतूत और भी उभार दिए।
0: और हासिल?
1: मैं भी उसी तारीख से रीडर बना जब मुझे बनना चाहिए था। प्रिंसिपल को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा।
0: मगर आमतौर पर ऐसा नहीं होता है डैडी।
1: आमतौर से लोग खुश भी नहीं रहते। उनकी दौलत, बड़ा नाम, सुकून के दो लम्हों की भीख मांगते नजर आते हैं। सोचना यह है कि इंसान ने अपनी जिंदगी का मकसद क्या चुना है।
0: डैडी, चंद मामलात में आप बहुत खुशकिस्मत थे।
1: मसलन
0: मम्मी, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सहारा थी।
1: हाँ ये मैं मानता हूँ, जिंदगी के परेशान लम्हों में जितना मैंने तुम्हारी माँ से सीखा उतना किसी से नहीं।
0: और उसके बरक्स गजाला को देखते हैं आप?
1: मैं आमतौर से मियाँ बीवी के मामलात में किसी की भी दखल अंदाजी के खिलाफ हूँ। अब चूंकि तुमने जिक्र किया है इसलिए चंद बातें कहे बगैर नहीं रह सकता।
0: जी कहिए।
1: गजाला से तुम्हें कोई शिकायत है? हो सकती है, मगर नदीम तुमने कभी यह भी सोचा है कि शिकायत करने का हक उसे भी है?
0: लेकिन मैं उसे क्या कहता हूं?
1: जो अपने दानिस्त में कुछ नहीं कहता, मेरे ख्याल में वो बहुत कुछ कहता है।
0: बात यह है डैडी के सब बातें आपके सामने नहीं है।
1: हर बात को जानने के लिए उसमें शरीक होना तो जरूरी नहीं है।
0: मिसाल के तौर पर?
1: वो ये पसंद नहीं करती कि शाजी मुझसे इस कदर मानूस हो।
0: जी

0: उसे यूं भी आपकी कौन सी फिक्र रहती है?
1: क्यों हो, क्या तुम उसके बाप की फिक्र करते हो?
0: जी मैं क्यों करूं?
1: तो फिर वो क्यों करे? तुम उसे वो प्यार नहीं देते जो उसके जहन के गोशों में अभी तक एक आरजू बनकर भटक रहा है। वो अपने महरूमियों का इंतकाम इस तरह लेना चाहती है कि मेरी तरफ से लापरवाही का इजहार करे। अगर मेरी मानो तो अपने माजी पर सियाह चादर तान दो, अगर मुड़कर देखने की गलती भी करो तो वहां तुम्हें कुछ नजर ना आए।
0: जी मैं कोशिश करूंगा डैडी, मगर आप गजाला को भी समझा दीजिएगा।
1: इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप को बदल लो, वो तुम्हारी परछाई है, खुद ही बदल जाएगी।
0: जी

0: मैं बहुत परेशान
1: हूँ। तो फिर क्या मैं भी खामोश रहूँ?
0: ये मैंने कब कहा?
1: तो फिर क्यों परेशान हो?
0: मेरा कुछ खो गया है।
1: क्या खो गया?
0: आसिफ अंकल का लड़का है ना, जालिब।
1: हाँ, कौन आसिफ अंकल?
0: अरे वही आपके दूसरे बेटे, बोर पापा के अच्छे से भाई।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनके बेटे का नाम है जालिब।
0: आपको कुछ याद नहीं रहता? याद नहीं, उसने आपके कपड़ों पर सुसु कर दिया था।
1: अरे अच्छा, वो गंदा बच्चा।
0: दादा आप तो कहते हैं कि सबसे प्यार करो, किसी को बुरा मत कहो।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर आपने मेरे कजिन को बुरा क्यों कहा?
1: आई एम सॉरी।
0: ठीक है, मगर आज आप ठीक से बात कीजिए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ भाई, ठीक से बात करेंगे, बिल्कुल ठीक से बात करेंगे। मुझे याद आ गया ना, तुम्हारा मूड खराब है, तुम्हारा कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ खो गया है ना?
0: ईद कार्ड।
1: ईद कार्ड कहाँ से आया था?
0: आया नहीं, भेजना था।
1: कहाँ?
0: जालिब को।
1: अरे अभी तो बहुत वक्त है, दूसरा मंगवा लो।
0: अरे दादा वो मैंने खुद बनाया था।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा चलो फिर तलाश करें।
0: यही तो मुसीबत है कि आप चलते भी नहीं।
1: मगर मुझे खोई हुई चीजों के ढूंढने का जादू आता है।
0: सच?
1: बिल्कुल सच।
0: तो फिर ढूंढिए।
1: चलो ढूंढते हैं। पर देखो तुम आंखें बंद करो और जब तक मैं न कहूँ खोलना नहीं। ओके
0: ओके
1: ओके ओके। देख लो, चुन मन टुन टुन टुन टुन, आ जा डम डम डम डम डम डम डम डम, चुन मन चुन मन, काम बना जा, कार्ड दिला जा। शाजी शाजी बेटा आगे खोलो।
0: मेरा कार्ड?
1: ये रहा।
0: झूठ बोलना पाप है, उसके घर में सांप है।
1: वो किसने झूठ बोला? हमने तो नहीं। हम वो कैसे?
0: अरे दादा मुझसे चालाक ना बनिए, मैंने एक आंख थोड़ी खुली रखी थी।
1: तो फिर मामला बराबर। थोड़ी बेईमानी तुमने की और थोड़ी हमने है।
0: अच्छा दादा देखिए, बस मेरी कल तक की छुट्टी है, इसलिए कल क्या करें?
1: हाँ फिर कल तक की छुट्टी है तो कल का तो बहुत जोरदार प्रोग्राम होना चाहिए।
0: हाँ दादा बस मजा आ जाए।
1: तो प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमारा प्रोग्राम शुरू होगा सुबह के प्यार से।
0: ठीक। फिर नाश्ता।
1: फिर नाश्ता, और नाश्ते के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? दरिया पर मछली के शिकार को चलेंगे।
0: हाँ दादा बड़ा मजा आएगा, मैं वहाँ तितलियाँ भी पकड़ूंगी।
1: हाँ फिर जो बूढ़ा पेड़ है ना वहाँ दरिया के किनारे, उसके नीचे खाना।
0: खाने के बाद कहानी।
1: याद है कल किसकी कहानी सुननी है?
0: सूरज की। और फिर कहानी के बाद
1: जमा करेंगे फूल, खूब उड़ेगी धूल, ढीली होगी चूल, तुमने जाना भूल।
0: मेरे दादा फूल।

0: दादा अबू मैं आ गई। अरे आप तो सो रहे हैं। अरे दादा कितना सताते हैं आप मुझे, आप बोलते नहीं मैं गुदगुदी करूंगी।
1: अरे भाई कौन है जो हमें सुबह ही सुबह सताने आ गया?
0: शाजी के अलावा और कौन हो सकता है?
1: अच्छा शाजी बेटा, मगर वक्त से पहले कैसे?
0: दादा रात मुझे फिर नींद नहीं आई।
1: क्यों?
0: खुशी के मारे नींद नहीं आई।
1: वो क्या?
0: रात मम्मी पापा के कमरे से हंसी की आवाज आ रही थी।
1: हंसी की आवाज आ रही थी? अच्छा
0: मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लोग रोज इसी तरह क्यों नहीं हंसते रहते?
1: बुद्धू हैं।
0: दादा आज आपने गाने का प्रोग्राम तो रखा ही नहीं।
1: रखा है बाबा, कैसे नहीं रखा है?
0: कौन सा गीत गाएंगे?
1: एक नया गीत रिहर्सल करोगी? देखो पहले मैं एक मिसरा बोलता हूँ, उसके बाद तुम बोलना, ठीक है? हम नदी के किनारे जाएंगे, गाना।
0: हम नदी के किनारे जाएंगे,
1: मिलकर धूम मचाएंगे,
0: मिलकर धूम मचाएंगे।
1: शाजी तितली पकड़ेगी,
0: शाजी तितली पकड़ेगी,
1: और दादा केले खाएंगे।
0: वाह दादा केले तो मैं भी खाऊंगी।
2: डैडी हम अंदर आ जाएं?
1: अब आ ही गए हो तो आ जाओ। अरे गजाला बेटी तुम भी है?
3: जी अबू माफ कीजिएगा, मैं काम में कुछ इस तरह फंसी रही कि आपके पास तक नहीं आ सकी।
1: शाजी बेटे कुछ तुम्हारी समझ में आ गया?
0: जी नहीं दादा अबू।
1: लगता है इन लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। किससे मिलना चाहते हैं जी आप?
2: जी वो प्रोफेसर रहमान साहब से।
1: शाजी बेटे इस नाम का कोई आदमी रहता है यहाँ?
0: जी नहीं, यहाँ तो शाजी और उसके दादा अबू रहते हैं।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। किसी तीसरे की गुंजाइश है?
0: बिल्कुल नहीं।
1: ठीक है ना, अकलमंद को इशारा काफी होता है। शाजी कुछ समझी?
0: कुछ भी नहीं।
1: लगता है बेचारे रास्ता भटक कर आ गए।
0: हमारे प्रोग्राम को देर हो रही है ना दादा?
2: हम आपके प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं बेटे?
1: हाँ जी नहीं, शायद भी जो लोग जबरदस्ती किसी के प्रोग्राम में शरीक हो उन्हें क्या कहते हैं?
0: कबाब में हड्डी।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इनको इतना भी अकल नहीं, गुजरी बातों को सीने से लगाए फिर रहे हैं। ये नहीं कर सकते दोनों बैठ के कल सुबह का प्रोग्राम बनाते और हमें अकेला छोड़ देते।
0: अब इन्हें कौन समझाए?
2: हम समझ के बेटे, बिल्कुल समझ गए। चलो बताला, यहाँ अपनी दाल गलती नजर नहीं आती।
0: शुक्र है अब्दुल

0: कल सुबह। अभी आप अफाक अहमद का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे केदार शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे विजय सूरी, एमपी शर्मा, बी परवीन, इसरार खान, कंचन केसरी और प्राण किशोर। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए आकाशवाणी के श्रीनगर केंद्र पर तैयार किया गया यह नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। शुभारंभ कर रहे हैं कुमाऊनी लोकगीत के साथ। गायिका हैं लता तिवारी।

0: सुरेश प्रसाद के गाय से कुमाऊनी बरखा गीत के साथ ही उत्तराखंड के लोकगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
2: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।

0: मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज CG सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कम्प्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कम्प्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष

0: 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
2: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की

0: संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार पांचवे दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है पर्वतीय क्षेत्रों में सोयाबीन, गहत और भट्ट की वैज्ञानिक खेती। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर अनुराधा भारती।
4: आर्थिक एवं पोषकता की दृष्टि से दलहनी फसलें महत्वपूर्ण खाद्य फसलें हैं जिनका उपयोग व खेती पूरे विश्व में की जाती है। दालें शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। दालें आहार में प्रोटीन, मिश्रित कार्बोहाइड्रेट एवं आवश्यक विटामिन की पूर्ति करती हैं। दलहनी फसल उत्पादन से मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ती है तथा मृदा का कटाव भी रुकता है। दलहनी फसल उत्पादन में खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है तथा आजकल दलहनी फसलों के उत्पादन से उचित आय की भी प्राप्ति हो जाती है। हमारे किसान भाई बहन दलहन उत्पादन की उचित विधि अपनाकर अपने खेतों में दलहन उत्पादन बढ़ा सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में सोयाबीन, भट्ट एवं गहत उगाए जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। सोयाबीन का उपयोग पूरे भारतवर्ष में तिलहनी फसल के रूप में होता है। उत्तराखंड में काले रंग की सोयाबीन, जिसे भट्ट भी कहा जाता है, दाल के रूप में प्रयोग होती है तथा भट्ट के अलावा सोयाबीन की खेती उत्तराखंड में बहुत प्रचलित है। अच्छे उत्पादन के लिए कुछ बातें जान लेना अति आवश्यक है जो कि भविष्य में ध्यान रखी जा सकती हैं। सही समय पर बुआई एवं सही विधि से बुआई का कृषि में बहुत महत्व है। पर्वतीय क्षेत्रों में गहत, भट्ट एवं सोयाबीन की बुआई 15 जून से 30 जून के मध्य करना अत्यंत उपयुक्त है। देर से बुआई के फलस्वरूप उपज में गिरावट आती है। अच्छे उत्पादन के लिए भूमि का चुनाव भी अति आवश्यक है। सोयाबीन की खेती के लिए हल्की दोमट से लेकर भारी दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है तथा इन मिट्टियों का पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। अम्लीय क्षारीय मिट्टी सोयाबीन एवं भट्ट की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। गहत की खेती पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्यतः ऐसी भूमि पर की जाती है जहाँ पर अन्य फसलों के उत्पादन बहुत ही कम होता है। गहत की खेती रेतीली भूमि को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। जीवांशयुक्त बलुई दोमट मिट्टी इस फसल के

लिए उपयुक्त रहती है। सोयाबीन, भट एवं गेहूं की खेती के लिए भूमि में जल निकासी का प्रबंध होना आवश्यक है। बुआई हमेशा लाइनों में ही करनी चाहिए तथा गेहूं, भट एवं सोयाबीन में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर तक रखना चाहिए। बीज हमेशा उचित नमी पर 3 से 4 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए। सोयाबीन तथा भट में बीज 70 से 80 किलोग्राम तथा गेहूं में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। अधिक बीज से न केवल खर्च अधिक आता है बल्कि पैदावार भी कम हो जाती है। खाद एवं उर्वरक भी उपयुक्त मात्रा में डालना अति आवश्यक है। पर्वतीय असंचित क्षेत्रों में गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग पैदावार बढ़ाने में अत्यंत लाभकारी है। गोबर की खाद बुआई के लगभग 1 माह पूर्व खेत की तैयारी के समय खेत में समान रूप से बिखेर कर जुताई करके मिला देना चाहिए ताकि उसका भरपूर लाभ फसल को मिल सके। 1 हेक्टेयर के लिए 10 से 15 टन सड़े गोबर की खाद गेहूं, भट एवं सोयाबीन के लिए उपयुक्त है। पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः किसान रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन गेहूं में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए 20 किलो नत्रजन, 40 किलो फास्फोरस तथा 20 किलो पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। सोयाबीन के लिए 20 किलो नत्रजन, 80 किलो फास्फोरस तथा 20 किलो पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक खादों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना सबसे उपयुक्त है। सभी रासायनिक उर्वरक बुआई के समय खेत में समान रूप से मिला लेने चाहिए। बुआई के प्रथम 30 से 45 दिनों तक फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। इसके लिए सोयाबीन, भट तथा गेहूं में 25 दिन बाद प्रथम तथा 40 से 45 दिनों पर दूसरी निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई से खरपतवार तो खत्म होते ही हैं, साथ में मिट्टी में उचित वायु संचार से पौधे भी स्वस्थ होते हैं। यदि किसान भाई बहन रसायनों का प्रयोग करना चाहते हैं तो 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पेंडीमिथिलीन का प्रयोग बुआई के 48 घंटों के अंदर कर सकते हैं। परीक्षणों से यह तथ्य सामने आया है कि यदि प्रारंभिक अवस्था में फसल खरपतवार मुक्त होती है तो फसल का खरपतवारों से जल, सूर्य के प्रकाश एवं वायु के लिए संघर्ष नहीं होता है, जिससे उनकी बढ़ोतरी अच्छी प्रकार से होती है तथा अच्छी पैदावार भी मिलती है। रोगों एवं कीटों का प्रकोप से भी फसल को अत्यंत नुकसान पहुंचता है। पर्वतीय क्षेत्रों में सोयाबीन में लगने वाले मुख्य रोग सर्कस पोरा, लीफ स्पॉट तथा शाम वर्ण है। सर्कस पोरा लीफ स्पॉट में पत्तियों के ऊपरी सतह पर गोल धब्बे बन जाते हैं जो बाहर की तरफ से गहरे भूरे तथा मध्य में स्लेटी रंग के होते हैं तथा देखने में मेंढक की आंख जैसे प्रतीत होते हैं। अधिक प्रकोप होने पर ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं एवं संक्रमण पौधों की शाखाओं तथा फलियों पर दिखाई देने लगता है। इसकी रोकथाम के लिए हमेशा सर्कस पोरा पर्णचित्ती रोधी किस्मों जैसे वेल सोया 47, वेल सोया 59, वेल सोया 63 एवं वेल सोया 65 का चुनाव करें। रोग के लक्षण दिखने पर मैंकोजेब का 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी या कार्बेंडाजिम का 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करके इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। श्यामवर्ण में पत्तियों पर गोल या कोणीय धब्बे बनते हैं जो किनारों की तरफ गहरे भूरे होते हैं। पत्तियों पर इन धब्बों के अधिक बनने से तथा आपस में मिलने से फसल अत्यधिक प्रभावित हो जाती है। अत्यधिक प्रकोप में पत्तियां झुलस जाती हैं तथा फलियों पर भी रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। रोग रोधी किस्में जैसे वीएल सोया 47, वीएल सोया 59, वीएल सोया 63 एवं वीएल सोया 65 का प्रयोग करें। बीजों को बोने से पूर्व किसी फफूदनाशी जैसे थायरम, कैप्टान या बाविस्टीन की 2 से 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर लें। रोग के लक्षण दिखने पर मैंकोजेब 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी या कार्बेंडाजिम का 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करने से इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। इन बीमारियों के अलावा सोयाबीन में चूसक कीट तथा तंबाकू की सुंडी मुख्य है। चूसक कीट आकार में बहुत छोटा होता है तथा पत्ती की निचली सतह पर छुपा हुआ रहता है। यह पत्तियों की सतह से रस चूसता है तथा पत्ती में विषैली लार डाल देता है जिससे पत्तियों में सूखे सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए फसल को अधिक घना नहीं लगाना चाहिए।
बतन के बीजों का सत 5% की दर से छिड़काव करके बस

0: कीट फसल पर अंडे देने तथा भोजन करने के लिए प्रतिकर्षित होता है। कीट का अधिक प्रकोप होने पर रसायन कारटेप 1 ग्राम दवा प्रति लीटर या इमिडाक्लोप्रिड 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर का प्रयोग किया जा सकता है। रणदार सुंडी या कमला कीट पत्तियों को खाकर छलनी कर फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। यह कीट जून से लेकर सितंबर तक सक्रिय रहता है। अंडों से निकलने वाली सुंडियां प्रारंभिक अवस्था में झुंड में तथा कुछ दिनों बाद बड़ी सुंडियां बिखर कर पत्तियों को खाती हैं। बड़ी सुंडियों का सिर काला तथा शरीर पर भूरे रोएं दिखाई देने लगते हैं। मादा कीट पत्तियों की निचली सतह पर हजारों की संख्या में अंडे देती है। फसल का नियमित ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते रहना चाहिए तथा पत्तियों की निचली सतह पर अंडों तथा सुंडियों के झुंडों को एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए। प्रकाश प्रपंच भी वयस्क नर कीटों की रोकथाम के लिए प्रभावी है। इस कीट का अधिक प्रकोप होने पर रसायन क्लोरपाइरीफॉस का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा गेहूं में लगने वाली प्रमुख रोग शामवर्ण तथा जड़ विगलन है। शामवर्ण में पत्तियों की शिराओं के साथ काले भूरे धब्बे बनते हैं जिससे शिराएं गल जाती हैं। निचली सतह पर धब्बे अधिक स्पष्ट होते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए वीएलगेहत 8, वीएलगेहत 10, वीएलगेहत 15 तथा वीएलगेहत 19 उगाएं। मैंगोज़ेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करके इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। जड़ विगलन में बुआई के बाद बीज अंकुरण से पूर्व ही सड़ जाते हैं अथवा अंकुरण के बाद मर जाते हैं। इसका प्रकोप फसल के किसी भी अवस्था में हो सकता है। भूमि के निकट तने पर लाल भूरे से काले रंग के धब्बे बनते हैं जो जड़ व ऊपरी तने पर फैलते हैं। जड़ सड़ जाती है और पौधे शीघ्र मर जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए दलहन फसलों के साथ गेहूं व जौ का फसल चक्र अपनाएं। उचित जल निकास करें क्योंकि अधिक नमी से रोग की उग्रता बढ़ जाती है। उन्नतशील किस्मों का प्रमाणित बीज प्रयोग करें। बीजों को कवकनाशी जैसे कार्बेंडाजिम 2 ग्राम या थिरम 2.5 ग्राम या जैव फफूदीनाशी ट्राइकोडर्मा वेर्डी के 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करें। सोयाबीन की भांति गेहूं की फसल में भी पत्ती चूसक कीट तथा रोएदार सुंडी का प्रकोप हो सकता है। रोग एवं कीटों के नियंत्रण में समय की रणनीति अपनानी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर ही फफूदी या कीटनाशक दवाओं का प्रयोग जरूरत के अनुसार करना चाहिए। कई बीमारियों एवं कीटों की रोकथाम को रोगरोधी किस्में अपनाकर भी किया जा सकता है। ये किस्में अधिक पैदावार देने में तो सक्षम हैं ही, साथ ही कई बीमारियों एवं कीटों के लिए प्रतिरोधी भी हैं। इसी दिशा में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अनवरत प्रयास कर रहा है तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कई रोगरोधी उन्नत प्रजातियाँ भी इस संस्थान की देन है, जैसे सोयाबीन में वीएल सोया 47, वीएल सोया 59, वीएल सोया 63 तथा भट्ट की एक किस्म जिसका नाम वीएल सोया 65 है विकसित की जा चुकी है। यह किस्म भट्ट की स्थानीय किस्मों की तरह बेलदार नहीं है तथा इसे बढ़ने के लिए भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। गेहूं में वीएल गेहूं 8, वीएल गेहूं 10, वीएल गेहूं 15 तथा वीएल गेहूं 19 पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अनुमोदित उन्नत रोगरोधी किस्में हैं। अच्छे उत्पादन के लिए कटाई मड़ाई व भंडारण पर ध्यान देना भी अत्यंत आवश्यक है। पकने की अवस्था में सोयाबीन की पत्तियां पीली होकर ज़मीन पर गिरने लगती हैं, ऐसी अवस्था में कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई की अवस्था में दानों में 17 से 18% तक की नमी होनी चाहिए। इसके बाद 2 दिन बाद फलियों को धूप में सुखाकर अच्छी तरह से मड़ाई कर लेनी चाहिए तथा 10 से 12% की नमी जब बीज में हो तब जूट के थैलों में भरकर ठंडे व सूखे स्थान पर भूमि से लगभग 30 सेंटीमीटर ऊपर रखकर भंडारण करना चाहिए। इन बातों को अपनाकर किसान भाई बहन सोयाबीन भट्ट एवं गेहूं की अच्छी उपज लेकर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं।
1: पर्वतीय क्षेत्रों में सोयाबीन गेहूं और भट्ट की वैज्ञानिक खेती, इस विषय पर खेती की बातें कार्यक्रम में डॉक्टर अनुराधा भारती से जानकारी अभी श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का

विवरण। आज शाम 5:10 पर प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इस श्रृंखला के अंतर्गत आप सुनेंगे श्री देवेंद्र सुरा का, उनसे की गई भेंट वार्ता। रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती और रात 10 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का ख्याल गायन। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 5:05 पर शैल स्वर कार्यक्रम में बीना तिवारी के स्वर में लोकगीत प्रसारित होगा। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, संध्या 7:30 पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। शाम 5:35 पर युवावाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा प्लान बी पर भी काम करें, खेल जगत आज का इतिहास भी युवा साथी सुनेंगे। संध्या 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम प्रसारित होगा जिसमें चर्चा के विषय रहेंगे डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ता भारत, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। संध्या 6:41 पर भक्ति संगीत प्रसारित होगा जिसमें सुरेश वाटकर और अनूप जलोटा के गाए भक्ति वंदन सुने जा सकेंगे। शाम 7 किसान वाणी कार्यक्रम में आज की बातें होंगी वर्षा काल में फल पौध रोपण विषय पर, चर्चा सुनिएगा पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन विषय पर। फिल्म संगीत शाम 7:40 पर और रात 9:15 पर इंद्रधनुष में प्रसारित होगा। सुगम संगीत हम लेकर आएंगे सबरस में रात्रि 8:00। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं, दिन के 2:45 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। आज के फनकार हैं जाने माने मशहूर संगीतकार रामलाल। श्रोताओं, पुराने दौर के मशहूर संगीतकार रामलाल के संगीत से सजे सुरीले तरानों को भला कौन भूल सकता है। जहां वो बेमिसाल संगीतकार थे, वहीं उतने ही जबरदस्त बांसुरी और शहनाई के अत्यंत सुरीले कलाकार भी थे। आज 4 जुलाई उनकी पुण्यतिथि है, तो उन्हें हम नमन करते हैं और उनके संगीतबद्ध और सुरीले गीत जिसमें उन्होंने चाहे शहनाई वादन किया हो या फिर बांसुरी वादन, वो सुनेंगे एक ही फनकार में।

तो श्रोताओं, 15 अगस्त 1922 को बनारस में जन्म हुआ जाने माने संगीतकार रामलाल जी का। मशहूर संगीतकार राम गांगुली के भाई कमल ने रामलाल जी की बांसुरी और शहनाई की मधुर तान सुनी तो इस सुरीले कलाकार को रस की नगरी बनारस से माया नगरी मुंबई ले आए। रामलाल 14 सालों तक राम गांगुली के साथ रहे और वहाँ उन्होंने संगीत की बारीकियाँ सीखी। संगीतकार राम गांगुली को साल 1948 में राज कपूर की पहली फिल्म आग मिली तो इस फिल्म में जो गीत बजे मुकेश जी की आवाज़ में, उन गीतों में सुरीला तान, जो कह सकते संगीत में चाहे वो शहनाई की तान हो या फिर बांसुरी की, वो तान छेड़ी रामलाल जी ने।

वी शांताराम की फिल्मों जैसे सेहरा साल 1963 में प्रदर्शित हुई, 1964 में गीत गाया पत्थरों ने, इन दो फिल्मों के अमर संगीत के लिए याद किए जाते हैं रामलाल। इसके अलावा उन्होंने चार और फिल्मों में भी स्वतंत्र संगीत निर्देशक के रूप में काम किया, और जैसा कि दो फिल्मों का जिक्र आपसे किया। इसके अलावा नकाबपोश जो कि साल 1956 में आई, हुस्न बानो 1956 में ही, माया मच्छिंद्र 1960 में प्रदर्शित हुई, ये फिल्में भी शामिल

है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उन्हें प्रसिद्धि मिली वो सेहरा और गीत गाया पत्थरों ने, जो इस फिल्म के गाने हैं उनसे उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली।

तो सुधों संगीत निर्देशक के तौर पर तो 6 फिल्में उनकी प्रदर्शित हुई। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में, चाहे वो वाद्य यंत्र बांसुरी था या फिर शहनाई, इसकी गूंज उनकी गूंजती रही। जैसे मधुमती, मुगले आजम, आग, गीत गाया पत्थरों ने गूंज उठी, शहनाई जैसी कई फिल्में हैं जिन फिल्मों में उन्होंने अपने वाद्य यंत्रों का भी जादू बिखेरा। बहरहाल आपको सुनवाते हैं किशोरी अमोनकर और साथियों के स्वरों में उनका संगीतबद्ध किया गीत गाया पत्थरों ने फिल्म का गाना, जिसमें उन्होंने खुद भी वाद्य यंत्र इस फिल्म के जो गाने हैं उसमें उन्होंने बजाए हैं। और इन दोनों ही वाद्यों का, चाहे वो बांसुरी हो या फिर शहनाई, इनकी गूंज उठी है उनके वाद्य यंत्रों से कई फिल्मों में, जिनमें उनकी अपनी फिल्म में भी शामिल है, चाहे वो सेहरा हो या फिर गीत गाया पत्थरों ने।

श्रोताओं, फिल्मी दुनिया का ये सुरीला संगीतकार रामलाल 4 जुलाई 2004 को इस नश्वर संसार को अलविदा कह गया और उनके सुरों से सजे तमाम नगमे हमेशा याद किए जाते रहेंगे उस महान कलाकार के जरिए।

फिल्म संगीत एक ही फनकार, अभी श्रोता सुन रहे थे, हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं, पेश है सदाबहार फिल्मी गीत। सदाबहार फिल्मी गीत के सभी श्रोताओं को अंजुपांगते का स्नेहिल नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस सुरीले कार्यक्रम में। श्रोताओं, गीत जो गूंजते हैं इन फिजाओं में यादगार बनते हैं, सदा अमर हो जाते हैं। ऐसे गीतकार जो हमेशा अपनी बेमिसाल लेखनी के जरिए सदाबहार गीत रच देते हैं, वो कमाल बेमिसाल होते हैं। ऐसे ही फिल्मी दुनिया में गीतों के कमाल के महान चितेरे रचनाकार रहे भरत व्यास, जिनके गीत अनमोल हैं, बेशकीमती हैं, जिन्हें हम उस दौर की बात हो या फिर इस दौर की, हर दौर में गुनगुनाते हैं और हमेशा गुनगुनाते रहेंगे। आज 4 जुलाई भरत व्यास जी की पुण्यतिथि है, तो उन्हें हम श्रद्धा नमन करते हैं और आज उन्हीं के सुरीले नगमों से सजा है सदाबहार फिल्मी गीत।

श्रोताओं, 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में जन्म हुआ भरत व्यास जी का। जब वो मात्र 2 साल के थे तभी उनके पिता इस दुनिया से चले गए और इस तरह कठिनाइयों ने जीवन के आरंभ में ही उनके लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर दी। भरत जी बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे और उनके भीतर का कवि छोटी आयु से ही प्रकट होने लगा था। भरत जी ने पहले दर्जे से लेकर हाई स्कूल तक की शिक्षा चुरू में ही प्राप्त की और चुरू के लक्ष्मी नारायण बागला हाई स्कूल से हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो बीकानेर के डूंगर कॉलेज में चले गए। स्कूल समय में ही वो तुकबंदी करने लगे थे और फिल्मी गीतों की पैरोडी में भी उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। मजबूत कदकाठी के धनी भरत व्यास जी डूंगर कॉलेज बीकानेर में अध्ययन के दौरान वॉलीबॉल टीम के कप्तान भी रहे।

0: जी हाँ, शब्दों का रचनाकार ये महान चित्रकार रहा। बीकानेर से कॉमर्स विषय में इंटर करने के बाद नौकरी की तलाश में कलकत्ता पहुंचे, लेकिन उनके भाग्य में शायद कुछ और ही लिखा था। इस दौरान उन्होंने रंगमंच अभिनय में भी हाथ आजमाया और अच्छे अभिनेता बन गए। अभिनेता गीतकार भरत व्यास जी ने शायद ये तय कर लिया था कि आखिर एक दिन वो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा कर ही रहेंगे। चुरू में वो लगातार रंगमंच पर सक्रिय रहा करते थे और एक अच्छे रंगकर्मी के रूप में उनकी पहचान भी बनी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पहली कामयाबी उन्हें तब मिली जब कलकत्ता के प्राचीन अल्फ्रेड थिएटर से उनका नाटक रंगीला मारवाड़ प्रदर्शित हुआ। इस सफलता से भरत जी को बेहद प्रसिद्धि मिली और यहीं से उनकी कामयाबी जिंदगी की शुरुआत हो गई। इस नाटक के बाद उन्होंने रामू चन्नड़ा और ढोला मरवण के भी जोरदार शोज किए। ये नाटक स्वयं भरत जी ने ही लिखे थे। कलकत्ता में ही प्रदर्शित नाटक मोरध्वज में भरत व्यास जी ने मोरध्वज की शानदार भूमिका निभाई और दूसरे विश्व युद्ध के समय भरत व्यास जी कलकत्ता से लौटे और कुछ समय बीकानेर में ही रहे। बाद में अपने एक मित्र के जरिए वो अपनी किस्मत आजमाने मुंबई नगरी पहुंच गए और यहाँ आकर उन्होंने गीतों के जरिए इतिहास रच दिया जो आज हमारे सामने है।
1: अरे कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा।

0: दिन दिन भूख मरोगे, रात कटेगी तारे गिन गिन।
1: अच्छा,
0: इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। अरे छोड़ो कलम चलाओ मत, कविता की चाकी, घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। अरे कितना घर में घी है, कितना गरम मसाला, कितने पापड़ बड़ी मंगोड़ी मिर्च मसाला, कितना तेल नोन मिर्ची हल्दी और धनिया, कवि राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया। अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ।
1: सच है,
0: पैसे

0: रहो गजल धान के शेर सुनाओ।
1: वाह वाह।
0: नोन मिर्च पर चौपाई चावल पर दोहे सुकवि कोयले पर कविता लिखो तो सोहे। अरे कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली। कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली झन झन करती कहो रुबाई पैसे वाली।
1: अच्छा
0: शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है। शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है।
1: अच्छा
0: मुशायरों के शेरों पर रगड़ा होता है पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है।
2: तो शब्दों के जंजाल से कमाल कर गए भरत व्यास जी, फिल्म निर्देशक, और अपने भाई बीएम व्यास जी जो वहाँ पर थे फिल्मी दुनिया में, उन्होंने भरत जी को फिल्मी दुनिया में ब्रेक दिया और फिल्म दुहाई के लिए उन्होंने भरत जी का पहला गीत खरीदा और 10 रुपये बतौर पारिश्रमिक दिए। भरत जी ने इस अवसर का खूब फ़ायदा उठाया और एक से बढ़कर एक गीत रचते चले गए। सफलता उनके कदम चूमती गई और वो फिल्मी दुनिया के जाने माने सुप्रसिद्ध गीतकार बन गए।
3: देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

फिल्मी दुनिया के लिए उसी के अनुरूप गीत लिखना एक बड़ी बात होती है। भरत व्यास जी का सफ़र भी यही रहा कि उनकी लेखनी में एक ख़ास बात थी और वो थी हिंदी प्रेम। फिल्मी दुनिया में उस वक्त हिंदी प्रयोग के प्रति संघर्ष का दौर था। हिंदी शब्दों का प्रयोग गीतों में अधिकाधिक हो, समकालीन गीतकार इसी दिशा में लगे हुए थे। भरत जी के आगमन से इस आंदोलन को और मुखरता मिली और इस आंदोलन के अगुवा हो गए भरत व्यास जी। उन्होंने फूहड़ता और अश्लीलता का कभी साथ नहीं दिया और जहां तक हुआ इसका हमेशा विरोध किया। भरत व्यास जी की कलम से जितने भी गीत निकले वो बेहद प्रसिद्धि को पा गए और बुलंदियों को छूते रहे। उनके कुछ गीत या यूं कहिए हर गीत शुद्ध सुसंस्कृत हिंदी से ओतप्रोत रहे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे गीत उनके रहे जिन्हें आज भी हम सुनें तो हम तरोताज़ा हो जाते हैं और उनके गीत लोगों की ज़ुबान पर आज भी चढ़े हुए हैं। जैसे कि ये गीत, इसमें शब्दों का कितना सुंदर प्रयोग किया गया है आप खुद ही महसूस कीजिए।

तो श्रोताओं, एक से बढ़कर एक गीतों का निर्माण कर अपनी अलग छवि बनाते चले गए जाने माने गीतकार भरत व्यास जी। सफलता उनके कदम चूमती गई और वो फिल्मी दुनिया में छा गए। आधा है चंद्रमा रात आधी, जरा सामने तो आओ छलिए, ए मालिक तेरे बंदे हम, जा तो से नहीं बोलू घूंघट नहीं खोलू, चाहे पास हो चाहे दूर, तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता रहा, जोत से जोत जलाते चलो, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए। जैसे कई एक से बढ़कर एक नगमे रहे जो भरत जी की कलम से निकले और आज भी वो उतने ही सौंदर्य से परिपूर्ण है जितने तब थे। और ए मालिक तेरे बंदे हम तो ऐसी प्रार्थना है जिसे आज भी विद्यालयों में विद्यार्थी गुनगुनाना कभी नहीं भूलते।

भरत व्यास जी ने अपने गीतों में मानवीय संवेदना, विरह वेदना, संयोग वियोग, भक्ति और दर्शन का ही समावेश नहीं किया, बल्कि उनके गीतों में सुरम्यता और भाषा शैली का भी जोरदार समावेश था। उनकी प्रसिद्धि की वजह से ही बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं और फिल्मों में गीत लिखने का उन्हें बार बार अवसर मिलता रहा।

भक्ति और दर्शन की बात करें तो संत ज्ञानेश्वर फिल्म का ये उनका रचित गीत बेहद लोकप्रिय है, कर्णप्रिय है, और जब भी गुनगुनाइए एक अलग ही आपको एहसास से भर देता है।

सुनो, एक दौर तो ये भी था कि वही शांताराम जब भी फिल्मों का निर्माण निर्देशन करते तो भरत व्यास जी को जरूर गीतकार के रूप में रखते और वो एक दूसरे के एक तरह से पर्याय बन गए थे और उनके गीत जिस फिल्म में भी वो लेते थे वो फिल्म ज़रूर हिट हो जाती थी। वैसे भरत व्यास जी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जयानंद जी, वसंत देसाई, आर डी बर्मन, सी रामचंद्र जैसे दिग्गज संगीतकारों के लिए भी गीत रचे।

तो श्रोताओं, बहुआयामी प्रतिभा के धनी भरत व्यास जी ने न केवल अपने गीतों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और बलिदान का संदेश दिया, बल्कि प्रेम से परिपूरित भावनाओं के भी गीतों को रचा। नवरंग, सारंगा, गूंज उठी शहनाई, रानी रूपमती, बेदर्द जमाना क्या जाने, प्यार की प्यास, स्त्री, परिणीता जैसी कई सुप्रसिद्ध फिल्में रहीं जिनमें उनकी कलम ने प्रेम भावनाओं से ओतप्रोत गीतों को रचा और ये गीत सदाबहार बन गए।

पुरुषोत्तम पंडित भरत व्यास जी 4 जुलाई 1982 को गीतों का ये चितेरा रचनाकार इस नश्वर संसार को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। उनके गीत आज भी और हमेशा चारों ओर गूंज रहे हैं, गूंजते रहेंगे, भले ही वो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कहते हैं ना, कलाकार कभी मरता नहीं, वो हमेशा जिंदा रहता है अपनी कला के जरिए, जैसे कि भरत व्यास जी हमेशा हमारे बीच रहेंगे अपनी अनमोल रचनाओं के जरिए। और हम तो उन्हें श्रद्धा नमन करते हुए यही कहेंगे।

जी हाँ, भरत व्यास जी के गीत सदा हमें बुलाते रहेंगे, हम उन्हें सुनते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। आज सदाबहार फिल्मी गीतों का सफर अंजू पांति के साथ यहीं तक। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपके सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब हमारे आज की सायंकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। ये राज्य में अवसंरचना, ऊर्जा, परिवहन और रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का परिचायक है। अपनी एक दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक ऐसा औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है जिसे बिल्कुल नई और पहले से इस्तेमाल न की गई जमीन पर बनाया जाता है। 90,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस परिसर की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधन में केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल सुधारों के माध्यम से उपभोक्ता न्याय को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लिखित एक लेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ई जागृति को परिष्कृत किया गया है। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म, निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला

0: ला सैयद अली खामेनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास के ह्यूस्टन में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 2:30 पर पराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 5:05 में है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शैलस्वर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं बीना तिवारी का गाया लोकगीत। श्रोताओं, हमारी इस सभा के सभी कार्यक्रम इस समय आप मीडियम वेव 187.3 मीटर अर्थात 1602 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र और 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर FM केंद्र बागेश्वर से भी सुन सकते हैं।

बीना तिवारी के गायसी लोकगीत के साथ शैल स्वर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:10 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सोचा है दोस्तों कि ये सारी जानकारियाँ आखिर जाती कहाँ हैं? जब हम कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं या किसी मैसेज को भेजते हैं, तो वो कुछ ही सेकंड में दूसरे व्यक्ति के पास कैसे पहुंच जाता है भाई?
1: और साथियों, सभी सवालों का एक ही जवाब है, डेटा सेंटर। सरल भाषा में कहें तो डेटा सेंटर एक
2: रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत ही बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
3: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूँ जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गाँव में या खेतों में ही बीता है, हम प्रकृति जुड़े हुए थे। लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं भर्ती हुआ,
2: अच्छा,
3: तो चंडीगढ़ पुलिस में वहाँ की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं और वहाँ से मेरा मन भी प्रभावित हुआ। जब पेड़ पौधों की वजह से, प्लान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और का पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं।
2: तो ये कब शुरुआत की आपने?
3: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहां से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले, और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल अपने मन में धारण कर लिया प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
2: अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं?
3: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
2: अच्छा।
3: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
2: जी।
3: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से एक गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
2: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
3: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की उठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की गुठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट, जन आंदोलन के रूप में कार्य।
2: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे? वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
3: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
2: अच्छा।
3: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारी स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
2: अच्छा।
3: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
2: अच्छा।
3: और उस पे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है, अगर बेटी के अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर सनोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम, और उसमें मातृशक्ति ने, वहाँ की जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल, सभी ने

0: भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में, और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते
1: हैं। कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
0: सोनीपत में है।
1: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
0: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें, पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया, और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं। लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया, तो अक्सर लोग कहते थे अब भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है, पेड़ लगाना, वो माली का ही काम है। शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए, और उस गांव में अच्छा वातावरण बना, और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव गांव इस तरह के अभियान चले, और तो सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
1: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो कैसे करते थे ये?
0: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है, और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए, देश के लिए काम करने की। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे डीजीपी हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं, और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर, जो भी हमारी छुट्टियां होती है, लंबी छुट्टी, या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ समाज का, इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था, और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई, जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा, अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
1: आपने नाम भी रोशन किया, क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
0: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है, और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है, तो पूरा गर्व महसूस होता है चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते
1: हैं। अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए, और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है? घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
0: जब हम पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है, तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में, परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले, एक हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े। लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े, जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी, तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो, और समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग, भौतिक संसाधन वो बढ़ाए, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई। लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति, एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है, उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना, और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
1: जब आपने ये शुरू किया था अभियान, तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
0: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया, और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ, और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं, उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला, और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा ऐसा महसूस होता है ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए, और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है, उसमें कोई भी

0: दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गांव अपना परिवार की तरह है और पूरा देश अपना एक मातृभूमि अपना एक परिवार की तरह है। और आज बड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृशक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूं, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूं क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं। गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
1: आपने जीव जंतु की बात की तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है और मैं मानता हूं इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को विचार को हिला दिया। समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते हैं जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे। वो उनका एक गांव था और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया, गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं बहने युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया और गांव गांव इस तरह से 10 एकड़ में 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है, मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को ही बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया, पेड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उससे पौधे तैयार करे और एक छोटी ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाएं, तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गांव वासियों के लिए कहता हूं, जो अपने गांव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं और खासकर NCR के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है और पंचायत या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सका है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी। हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में, तो वहाँ पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं, बहने, बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, एक जैसे घर में त्योहार

0: होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं, तो मैं ये मानता हूँ विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहाँ हम रहते हैं वहाँ के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने NCR की हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें तो इसमें जैसे एक बेरी का पेड़ है या नीम का पेड़ है या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहे और ऑक्सीजन भी खुश होके दे सके।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं, वो कोई भी दाल चीनी या सब्जी लेनी होती थी, वो अक्सर पुराने कपड़े और थैलों का प्रयोग करते थे। और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला।
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनैलिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनैलिटी है, एक इंटरनल पर्सनैलिटी, एक एक्सटर्नल। वो हमारे ऊपर है हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ। प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है, और महीने की 150 हुई तो साल की 1000 पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, गाँव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है, पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो, अपना जीवन में पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते हैं।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे, तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ, व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में, मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने आप प्रयास करें। जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चलें या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाएं, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली ही अपनाएं।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है?
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें, लोगों में बहुत कम जागरूकता है और पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है, तो मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव, जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं, हरियाणा में स्कीम चली है, जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ हैं या गांव में पंचायत को मिलती है, या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है।
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूँ अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती है, पेड़ लगाता है, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहाँ से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं, और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक

0: मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहां देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे तितलियां, मधुमक्खियां और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए? जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में तब्दील हों, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
0: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, गांववासी को जोड़ा जाता है कि इस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है, ऑक्सीजन बाग की और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है एक दो पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
1: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
0: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूँ पूरे विश्व में 1730 में माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालूमरदा थी मक्का, कर्नाटक से हैं, जो वो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी, मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी, मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
1: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
0: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है, तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
1: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत के नागरिकों को यही संदेश देना चाहूँगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिएं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
1: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद।
1: तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast@airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: FM 100.8 MHz।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कार्यक्रम युवाणी के आज के अंक में आप सभी का। आज के इस अंक के साथ मैं हाजिर हूं, आपका रेडियो मित्र भुवन जोशी। तो चलिए, रोजाना की भांति आज के कार्यक्रम में भी हम आज की बात करते हैं, और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक जीवन में सफलता की कुंजी बन सकता है, और वो विषय है प्लान बी पर भी काम करें। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में अनेक सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए एक योजना बनाते हैं, जिसे हम प्लान ए कहते हैं। हम पूरी मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जीवन सदैव हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं, कभी संसाधनों की कमी हो जाती है, तो कभी अप्रत्याशित चुनौतियाँ सामने आ जाती हैं। ऐसे समय में यदि हमारे पास कोई वैकल्पिक योजना अर्थात प्लान बी है नहीं होता है, तो हम निराश होकर तनावग्रस्त हो जाते हैं और असफलता की भावना से घिर सकते हैं। प्लान बी क्या है? अगर इसके बारे में हम बात करें तो प्लान बी का अर्थ है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग या दूसरी योजना तैयार रखना। यह असफलता को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि दूरदर्शिता और व्यावहारिक सोच का परिचायक है। प्लान बी हमें यह विश्वास देता है कि यदि एक रास्ता बंद हो जाए तो हमारे पास आगे बढ़ने के लिए दूसरा रास्ता मौजूद है। दोस्तों, आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में केवल एक योजना पर निर्भर रहना कई बार जोखिमपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी केवल एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अपना भविष्य मानकर करता है और किसी कारणवश वह सफल नहीं हो पाता है, तो उसके सामने निराशा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यदि उसने साथ ही अन्य परीक्षाओं, कौशल विकास या वैकल्पिक करियर विकल्पों पर भी विचार किया है, तो वह अपने जीवन की दिशा को सकारात्मक बनाए रख सकता है। इसी प्रकार व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफल उद्यमी हमेशा जोखिम प्रबंधन की रणनीति अपनाते हैं। वे किसी एक उत्पाद, एक बाजार या एक निवेश पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि वैकल्पिक योजनाएं तैयार रखते हैं। यही कारण है कि संकट की परिस्थितियों में भी वे अपने व्यवसाय को संभालने में सफल हो पाते हैं। प्लान बी बनाने के लाभ की अगर बात करें तो पहला लाभ ये है, यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब हमें यह पता होता है कि हमारे पास दूसरा विकल्प भी है, तो असफलता का भय कम हो जाता है। दूसरा, यह हमारी निर्णय क्षमता को बेहतर बनाता है। हम परिस्थितियों का अधिक व्यावहारिक ढंग से विश्लेषण कर पाते हैं। तीसरा, यह हमें नए अवसरों के प्रति जागरूक करता है, और कई बार हमारा प्लान बी ही हमें ऐसे अवसर प्रदान करता है जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। हालांकि यहाँ यह समझना आवश्यक है कि प्लान बी बनाने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने प्लान ए के प्रति कम समर्पित हो जाएं। हमें अपने मुख्य लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ कार्य करना चाहिए, लेकिन साथ ही परिस्थितियों के अनुसार एक वैकल्पिक योजना भी तैयार रखनी चाहिए। तो इतिहास और वर्तमान दोनों ही इस बात के साक्षी हैं कि जिन्होंने जीवन में विकल्पों को अपनाया है, वे कठिन परिस्थितियों में भी आगे

0: बढ़ते रहे हैं। असफलता उन्हीं को मिलती है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना जानते हैं। माफ कीजिएगा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो परिस्थितियों के साथ अपने को ढालना जानते हैं। जो लोग परिस्थितियों के अनुसार अपने को नहीं ढाल पाते हैं, वे धीरे धीरे असफल होते जाते हैं। निराशा उनके अंदर घर बना लेती है, तनावग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज की बात में बस इतना ही। पहले सुनते हैं ये संदेश, फिर आपको ले चलेंगे गीत संगीत की दुनिया में।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय ITI से।
6: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
5: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
6: डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत ITI में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
5: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय ITI में या लॉग इन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
6: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: इस संदेश के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी में, और अब हम आपको ले चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं ये गीत।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का युवाणी कार्यक्रम, और इसी गीत के साथ अपने दोस्त भुवन जोशी को आज के युवाणी कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुनेर सब श्रोताओं के गोकुलक नमस्कार। श्रोताओं, वन नेशन वन राशन कार्ड डिजिटल क्रांति दिशा में भारत सरकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण और नागरिक केंद्रित कदम छ। यो पहल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत उन्हींवाल सभ्य लाभार्थियों विशेषकर प्रवासी श्रमिकों के पूर्व भारत में कोयले उचित मूल्य दुकान राशन कार्ड में बायोमेट्रिक प्राणीकरण माध्यमल रियायती अनाज प्राप्त करने स्वतंत्रता दी। राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी यो राशन कार्ड कोयले एक राज्य या क्षेत्र विशेष तक सीमित है, बल्कि देशक सभ्य 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में यो प्रणाली के सफलतापूर्वक लागू करी जान लग रहा। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण राशन दुकानों पर इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाई छिन। लाभार्थी अपना आधार नंबर व जुड़ी बायोमेट्रिक अंगूठिया आँखों पुतली माध्यमल अपन पात्रता राशन प्राप्त कर सकें। यह तहत अगर कोई प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में काम करूँ तो उन्हें अपना आंशिक या पूर्ण राशन वह बैल ही सकूँ। यह प्रणाली में सार्थक PDS और मेरा राशन जैस मोबाइल ऐप के जरिए लाभार्थियों के सिद्ध जोड़ी जैसे जल खाद्य वितरण में हेराफेरी और भ्रष्टाचार में कमी आई। तो यो सी हमार आज एक बात कि कैसे हम अपन डिजिटल क्रांति और बढ़ते जो हमार भारत का कदम छ एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ऊपर यह बातचीत कार्यक्रम में आओ अब सुनू रेडियो रिपोर्ट। श्रोताओं, आज दिनांक 4 जुलाई 2026 को मल्ला महल अल्मोड़ा में सेवा सुशासन समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समस्त अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया, साथ ही विद्यालय के बच्चों के द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी गई।

0: इसी क्रम में वर्चुअल माध्यम से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने संबोधन में कहा,
1: नहीं बैठेगा हमारा लक्ष्य सत्ता का सुख भोगना नहीं है बल्कि व्यवस्था परिवर्तन और अंतिम व्यक्ति का उदय है। इसी के सोच के साथ मैंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि वे 5 वर्ष पूरे होने वाले ये हो हल्ले और औपचारिक आयोजनों से दूर रहते हुए जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के माध्यम से, क्योंकि इस बार से पहले वाला जो कार्यक्रम हमारा ये 45 दिनों तक चला था उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए।

0: पूरे प्रदेश के दूर दराज के लोगों ने इसकी बहुत सराहना की थी। ऐसे लोग जो देहरादून नहीं आ सकते, जिला मुख्यालयों तक नहीं आ सकते, आयुक्त मुख्यालयों तक नहीं जा सकते, सरकारी दफ्तरों में आने में जिनके पास साधन नहीं है, उन सभी को उनके घर के पास जाकर सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने अनेक सुविधाएं और अनेक प्रमाण पत्र और अनेक प्रकार की लाभार्थी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम किया था। तो इसलिए मैंने कहा कि इस माध्यम से स्वयं जनता के बीच जाकर हमारे अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित रूप से समाधान करें और सुनिश्चित करें और सरकार की योजनाओं का प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएं। यही हमारे 5 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। भाइयों बहनों, ये 5 साल का पड़ाव अंत नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। ये जनसेवा का महायज्ञ है जिसमें हमें मिलकर आहुति देनी होगी। आइए इस पावन धरा से हम सब मिलकर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण का संकल्प लें। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आप सभी के आशीर्वाद से वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड निर्माण के अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए श्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के विकल्प सही संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में हम अवश्य सफल होंगे।
1: इस अवसर पर अपने उद्बोधन में आप हैं पूर्व दर्जा मंत्री गंगा बिष्ट।
2: न प्यासा रहे, ये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है कि हर हाथ में काम, हर गांव में पानी, हर गांव में बिजली और हर किसी को भी आत्मनिर्भर बने और हमारा उत्तराखंड सबसे अग्रिम पंक्ति में रहे। और मैं धन्यवाद देती हूँ ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने अपना राज्य अग्रिम पंक्ति में रखा है। ऐसा हमारा उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड है, तो मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि आज उनका ये 500 साल चल रहा है, तो उन्होंने अपनी पूरी गरिमामयी मुख्यमंत्री के रूप में रखी हुई है, तो उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और अपने प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देती हूँ जिसे मैं उन्होंने शपथ ली थी लाल किले से। उन्होंने कहा था, सिर्फ पहले उनका एक पहला वचन था कि गांव में शौचालय होने चाहिए। हमारी माँ बहनें शौच को जाती है तो मुंह छिपाती है, तो हर गांव में पहले उन्होंने क्या करा, शौचालय। तो कहने लगे ऐसा प्रधानमंत्री वहां से शौचालय की बात कर रहे हैं, तो आज देखो घर घर में शौचालय है और स्वच्छता के लिए सबसे अग्रणी हमारा गांव भी है। आप देखिए हमारी बहनें जंगलों से लकड़ियां काटती थी, उनका टाइम रहता था, आंखें उनकी धुएं से लुप्त हो जाती थी, तो आज देखिए उज्ज्वला गैस हमारी सरकार की उपलब्धि है।
1: संबोधन के साथ आप हैं नगर निगम महापौर अजय वर्मा।
3: आज देवभूमि प्रखंड सेव सुशासन समर्पण के आज अपनी सरकार के 5 वर्ष कुछ समय बाद पूर्ण होने पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार का ये जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर में हो रहा है, ये वास्तव में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है। और ये वास्तव में हमारे प्रदेश के अंदर में ऐसे युवा नेतृत्व श्री पुष्कर सिंह धामी जी जिनके नेतृत्व में पूरा प्रदेश जिसने अपना एक उल्लेखनीय कार्य किया है और अन्य प्रदेश भी जिनसे प्रेरणा लेकर के अपने राज्यों में उसका आत्मसात करके आत्ममंथन करके उस कार्य को अपनी सरकारों में भी लागू कर रहे हैं। ये ऐसे मुख्यमंत्री युवा कर्मठ और जो बिल्कुल कार्य के प्रति समर्पण और ईमानदारी के साथ अपने कार्य को कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करूंगा अपने उत्तराखंड के युवा कर्मठ मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने युवाओं के लिए और छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, चाहे बेसहारा लोगों के लिए, चाहे अन्य कोई भी कार्य समाज के अंदर में ऐसे जो प्रभावित होते थे सरकार के द्वारा, उन पर ये सारे कार्यों को उन्होंने बहुत गहनता के साथ बड़ी।
1: आप हैं पूर्व विधायक रघुनाथ सिंह चौहान
0: और माननीय

0: मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे धामी जी का ये 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है तो बड़ा दिक्कत होती है, बोले भारत माता की, भारत माता की, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा जो 5 साल का जो कार्यकाल हुआ है उसको विलक्षण कार्यकाल उनका हुआ है। इन कार्यकाल को सेवा सुशासन और समर्पण के तहत जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं महेश दयाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दर्जा राज्य मंत्री हमारे बिट्टू कर्नाटक जी और हमारे नगर के मेयर अजय वर्मा जी और युवा जहां चलता है, जहां युवा चलते हैं वहां जवाना चलता है, इसलिए हमारे युवा मोर्चा के हमारे कल्याण के लिए हमारे आए बैठे हमारे कुंदन लखवाल जी हमारे बीच में, जहां पर युवा चलता है मैंने कहा वहां जवाना चलता है, गिरीश जी गिरीश खोलिया जी हमारे बीच में, हमारे संजीव श्रीवास्तव जी हैं हमारे बीच में, हमारे तिवारी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे कैलाश दुरानी जी हमारे बीच में, हमारे कनवाल जी, हमारे कनवाल जी बड़े उपस्थित हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य मनोज रावत जी, हमारे प्रधान जी हैं फलटा के अर्जुन जी और बीच में हमारे नवीन जी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं तो हमारे कृपाल जी उपस्थित हैं और कार्यक्रम में सभी मातृशक्ति और सभी कार्यकर्ता बंधु नगर की संभान नागरिकगण यहाँ पर उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम बहुत महत्व।
1: आप हैं पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक।
2: आज हम सब लोग इस गौरवशाली क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। किसी क्षण में हमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदि पुष्कर सिंह धामी जी का मार्गदर्शन भी मिलेगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार जिस तरह से नए दिन नए आयाम गढ़ते जा रहा है, मैं समझता हूं जो मोदी जी की कल्पना है विकसित भारत 2047 तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी उत्तराखंड की सरकार है उसका नेतृत्व कर आदि पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी जो योजना है वो मील का पत्थर साबित होंगे। हमारे यहाँ पर एक से एक कानून बने हैं, जैसे यूसीसी कानून हो या नकल विरोधी कानून हो, आप जिस तरह से आज हमारी सरकार चल रही है मैं समझता हूँ कुछ दिनों बाद हमारी सरकार पुनः विकास करने में सरकार जनता द्वार कार्यक्रम फिर आयोजित किए जाएंगे, वहां पर भी जनता के समस्या का समाधान करने का कार्य किया जाएगा। अभी तक हमने इस वर्ष 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है, यह प्रक्रिया आगे आए दिन बढ़ते रहेगी। मेरा आप सब से निवेदन है कि हम सब लोग आए और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दें, जिससे जो भी होता है उसको उस कार्य को करने का काम करेंगे और हम सब लोग जो सेवा पखवाड़ा है उसके तहत 7 दिनों तक विकास खंडों में जनता की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ, जय हिंद जय भारत।
1: इस अवसर पर कई स्टॉल लगे हुए थे, हमने उनसे उनके अनुभव साझा किए।
3: देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपका बहुत बढ़िया स्टॉल लगा हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और कई चीज़ें बनी हुई भी आ रही हैं, तो ये किस तरह से इनको आप सहायता प्रदान करते हैं?
4: जी, तो यहाँ पर जितने भी स्टॉल लगा हुआ है जनरली ये सब क्या है, उद्यमी है
3: जी।
4: तो हम जैसे कि हम RBI में हैं, रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर, अब इसको पिछले साल से मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना कहा जाता है। तो इसका कार्य यह है कि जो ग्रामीण स्तर में जो कार्य लोग करते हैं और लोग आजीविका से उद्यम की तरफ जाना चाहते हैं
3: जी,
4: तो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि उनको बाज़ार के बारे में सही जानकारी मिल सके, है ना, उद्यम करने के लिए किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब मिल सके, है ना, और रेगुलरली इनको जो एक तरह से बिज़नेस की ट्रेनिंग्स जो एक बिज़नेस स्कूल्स में कराई जाती हैं वो ट्रेनिंग्स की हम व्यवस्था यहीं पर ही करते हैं, अपने जनपद स्तर पर ही करी जाती है जी।
3: तो ये मतलब अलग अलग क्षेत्र में जैसे कोई उसका क्षेत्र कोई बना रहा है तो उसका अलग होगा
4: जी जी, तो इसमें सब अलग अलग क्षेत्र कहेंगे।

0: जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कुछ लोग तो हाथ काम वाले हैं, हाथकरघा वाले हैं, जैसे कि हैंडलूम वाला देख पा रहे हैं, कुछ ताम्र वाले कुछ हैं, है ना। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो खासकर हमारे ग्रामीण महिलाएं हैं, वो जाकर ज़्यादातर खाने की वस्तुओं को मार्केट करना चाहती हैं, जैसे कि कोई जैम जूस जेली, है ना, अचार बना कर भी आगे करना चाहती हैं। उस तरह के भी लोग हैं, कुछ होम स्टे वाले भी हैं जो आजकल आप देख ही रहे हो कि होम स्टे को भी सरकार बढ़ावा दे रही है कि आप इससे भी अपना एक छोटा उद्यम शुरू कर सकते हैं, है ना। आप अगर घर पर रह रहे हैं तो बाहर से काफ़ी लोग आजकल आ रहे हैं उत्तराखंड में रहने के लिए, तो वो देखना चाहते हैं कि उत्तराखंड में लोग कैसे रहते हैं, और होटल को छोड़कर लोग आजकल होम स्टे में रहना प्रेफर कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का उद्यम निकल के आ रहा है।
1: जैसे ये उद्यमी हैं, इनसे आप किस तरह से संपर्क करते हैं, ये आपसे कैसे मिलते हैं?
0: जी जी, तो ये इसमें हम गांव-गांव जाकर खुद वर्कशॉप्स करते हैं, इनके साथ मिलकर बैठ के बात करते हैं, और इनफैक्ट हमारी वेबसाइट भी है moi.arba.gov.in करके, तो आप वहां पर आ सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग दूसरे विभागों के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके द्वारा भी मिलकर भी उनको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, बल्कि हमारी टीम ग्राउंड पर जाती है, उनसे मिलकर बात करती है, और कोई भी अगर चाहे जो 18 साल से ऊपर हो और उत्तराखंड का नागरिक हो, कोई भी आकर हमारे ऑफिस में आकर बात कर सकता है और जुड़ सकता है, सभी इसके लिए पात्र हैं। जी जी बिल्कुल, मैं एक बात पे यहाँ बोलना चाहूँगा, सिर्फ उद्यमी नहीं, जो भी उद्यम कर रहे हैं वो नहीं, जो उद्यम करना चाहते हैं वो भी। आप भी कई लोग उद्यम करना शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके दिमाग में बहुत डर होता है कि मैं पैसा लगाऊंगा, पैसा डूब जाएगा, और मेरे को मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा, ऐसे तो बहुत लोग कर रहे हैं, कैसे होगा, मैं कैसे करूँगा। तो उस तरह का भी अगर ग्रामीणों को आइडिया भी नहीं है कि क्या किसमें स्टार्ट करना, तो भी आप हमसे मिला के मिल सकते हैं, हम एक उसमें बिजनेस सेटअप करने में, उनका आइडिया जनरेट करने में भी हेल्प कर सकते हैं, तो वो हमसे आके मिले, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी विभागों से भी हम उनको सहायता करवाते हैं, आप हमसे ऐसे आते हैं तो जैसे कि आप ग्राम में अभी सुना होगा कि NRLM है, SHG महिलाएं ग्रुप होता है, अभी एक ग्रामोत्थान का भी चल रहा है, रीप बोलते हैं, उनसे भी लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं। हम सभी का एक ही कार्य है कि ग्रामीण विकास में अपना सहायता प्रबंध अपना योगदान देना, और खासकर उद्योग को बढ़ावा देना। जी,
1: बहुत अच्छी सर जानकारी दी आपने, आपका बहुत
2: यहाँ पर हैंडलूम का स्टॉल लगा हुआ है, तो मैडम ये जो शॉल वगैरह जो आप बना रहे हैं, ये आप कहाँ बनाते हैं इसको?
3: ये हम हिमालय दीना पानी में बनाते हैं, हमारी कंपनी है वहाँ, इसलिए हम वहाँ पे बनाते हैं हैंडलूम, अपना हाथ से बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाते हैं इसमें।
2: अच्छा जी,
3: और क्योंकि महिलाओं की अपनी कला है इसमें।
2: जी जी जी, तो कितनी महिलाएं इसमें काम करती हैं?
3: हम 50 महिलाएं काम करते हैं।
2: अच्छा, ये आप लोग का अपना है या
3: सहकारिता से?
2: तो इसका आपका जो संस्था है इसका नाम क्या है?
3: हिमात्री है।
2: तो शॉल तो आप बनाते हैं, और कोट का कपड़ा भी दिख रहा है, और टोपियाँ भी दिख रही हैं, टोपियाँ आप यहीं बनाते हैं या बाहर से?
3: जी हाँ, हम टोपियों का डेकोरेशन सब यहीं से करते हैं, यहीं से बनते हैं।
2: अच्छा,
3: यही बनते हैं, हमारा सब हैंडलूम में बनता है ये काम सारा।
2: जी जी जी जी, तो स्टॉल आप और जगह भी लगाते होंगे?
3: हाँ, जहाँ जहाँ हमको मेला वेला लगता है वहाँ वहाँ हम लगाते हैं।
4: अंत में कई विद्यालय एवं सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुतियां भी रही।

इसी के साथ संपन्न होती है आज दिनांक 4 जुलाई 2026 की रेडियो रिपोर्ट। वाचन गोकुल सिंह, प्रस्तुति संजय जोशी। श्रोतामा भी आप अल्लाह सुनने छा आज दिनांक 4 जुलाई 2026 के मल्ला महल अलमाड़ में आयोजित सरकारक 5 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा सुशासन समर्पण कार्यक्रम रेडियो रिपोर्ट। वाचन गोकुल सिंह, प्रस्तुति संजय जोशी। कार्यक्रम में आपको सुनो शंकर उपेति गई योगी।

0: श्रोताओंल्लाह यो गीत सुनेछ गायक छ शंकर उपेती। श्रोताओं कार्यक्रम में अघिल वन महोत्सव सप्ताह अंतर्गत वन महोत्सव के लाभ विषय पर श्रीमती पूनम पंतुजुदग क्षेत्र संकलित यो भेटवार्ता।
1: आज हम बात कर रहे हैं वन विभाग में वन बीट अधिकारी श्रीमती पूनम पंत जी से। मैम हमको ये बताइए ये वन महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है?
2: नमस्कार सर, जैसा कि सर आप लोगों को ज्ञात होगा कि हर साल 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण, वनों की कटाई रोकने के लिए और लोगों में पेड़ लगाने की भावना को जागृत करने के लिए। ये हर साल सर वन महोत्सव मनाया जाता है।
1: इस महोत्सव को हर साल मनाया जाता है। वनों को हम किस तरह से वृक्षारोपण करें और वनों को खूब खाना बनाएं?
2: सर इसका मूल उद्देश्य है कि हम कैसे आम जनमानस को भी ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें और इसकी शुरुआत इसीलिए सब वन विभाग करता है। सर हम लोग एक एग्जांपल सेट कर पाए ताकि लोग उन्हें देखें और सीखें और वनों की महत्ता को जानते हुए ज्यादा से ज्यादा सर जैसे जो अगर एक पेड़ लगाता है तो वो 1 से बढ़ के 10 पेड़ तक कम से कम लगाए। और इसका उद्देश्य यही नहीं है कि वो अपने सिर्फ ना भूमि में ही जो है वृक्षारोपण करें, वो हमारे साथ जैसे वृक्षारोपण स्थल होते हैं जो हम वनीकरण क्षेत्र बनाते हैं, विभिन्न वन पंचायत होते हैं, गांव होते हैं, बेनाब जमीन होती है सर, उसमें भी हमारे साथ वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और इसको मनाने से मैं देख रही हूँ कि काफी लोग जागरूक हो रहे हैं और वृक्षारोपण जो है एक त्योहार के तौर पे अब वो मना रहे हैं। पहले सर ऐसा होता था वो हमें मतलब एक मैंडेटरी हमारे लिए होता था कि हमें करना ही करना है, लेकिन अब ये है कि मैं देख रही हूँ लोग बहुत उत्साह के साथ इस काम को हमारे साथ कर रहे हैं।
1: हाँ, जैसे कि विगत कई वर्षों से इस महोत्सव को मनाया जा रहा है कि हमारे जंगलों को संरक्षण मिले, जंगल खूब घने हों।
2: जी जी सर।
1: आम जो ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, ग्रामीणों की इसमें क्या भूमिका रहती है?
2: सर इसमें सर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जिन वन पंचायतों में हम काम कर रहे हैं हमारे साथ सर और भी एनजीओ जुड़ गए हैं, उनके भी कॉल वगैरह आते हैं, जैसे हंस फाउंडेशन हो गया, आरोही हो गया, आरोही संस्थान हो गई, तो वो लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। हम जाते हैं लोगों को पहले जैसे सरपंच जी के माध्यम से जो गांव के मुखिया माने जाते हैं या ग्राम प्रधान जी, उनके माध्यम से हम लोगों को सर बुलवाते हैं जिस समय मतलब हमें प्रोग्राम रखते हैं गांव में, और वहीं पे स्थल में गड्ढा खोद करके सबको पेड़ दिया जाता है तो सब लोगों को बताया जाता है। सर देखिए एक पेड़ देना और लगाना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि पेड़ों को किस तरीके से लगाना है वो ज्यादा जरूरी है, ताकि वो पेड़ जो है मतलब वो जो पौधा है वो पौधा ही ना रहे, वो एक फलदार वृक्ष में परिवर्तित हो सके। सर हम ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को इसमें आमंत्रित करते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो लोग आए और सीखें कि कैसे पेड़ लगाना है, उनको हम अपने ही विभाग से अपने ही सर जो हमारी नर्सरियां वगैरह होते हैं वहीं से हम उनको पेड़ प्रोवाइड भी कराते हैं, ताकि उनको सर मतलब परेशानी ना हो कि हम

0: दाखिल आएगा बढ़ चढ़ के जो है वन विभाग इसमें कार्य कर रहा है।
1: जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि वन विभाग तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है
0: जी, जी।
1: ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को क्या अपेक्षा लगती है कि वो इस जो आप वृक्षारोपण कर रहे हैं उनको संरक्षित करें, उनको बढ़ावा दें, या जो भी वृक्ष हम गाँव के बीच में लगा रहे हैं तो उनका जैसे हम बच्चे को पालते हैं उसको बड़ा करते हैं, क्या इसी तरह से पौधों को बड़ा करने की उनके अंदर चाह रहती है?
0: सर इसमें सर मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से अगर सर इसमें हमारा इसमें मैं जानती हूँ ज्यादा भूमिका होती है, अगर हम उन गाँव वालों को उनको लेकर के जाते हैं, उनको हम बताते हैं कि इसको किस तरीके से संरक्षित करना है, इसके थावले कैसे बनाने, इसकी निराई गुड़ाई कैसे करनी है, तो मैं समझती हूँ कि सर वो लोग भी इंटरेस्ट लेते हैं। और जरूरी नहीं है कि तो हम मतलब ये एक या दो दिन का प्रोग्राम इसे ना माना जाए, मेरी सर सभी से ये निवेदन है। जब तक ये पौधा एक फलदार वृक्ष में परिवर्तित ना हो जाए तब तक उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। मिनिमम सर 7 से 10 साल तक पौधे की केयर करना बहुत जरूरी होता है ताकि वह सर जो है सफल हो, वो पौध सफल हो जाए सर। तो इसलिए हम जो है सर लोगों को बताते भी हैं और सिखाते भी हैं, ये नहीं कि सर बस गड्ढा खोदा, पेड़ डाला, दबाया और घर को आ गए।
1: यही हम कहना चाह रहे हैं कि
0: जी, जी, जी।
1: हमने अगर वृक्ष लगा रखा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको अपने बच्चे को पालते हैं उसी तरह उस पौधे को भी पालें।
0: हर सर 6 महीने में उसकी गुड़ाई की जाए, नियमित अगर आपके वहाँ खाद अवेलेबल है नेचुरल खाद उसको भी डाल दिया जाए। और सर जो इसमें मेन है निराई गुड़ाई का होता है, थावला बंदी होता है, किस प्रकार से हम थावले बनाते हैं। और प्लस सर एक जो सबसे बड़ा वो होता है इसमें कि हम आग से भी उसको सुरक्षित रखते हैं पौध को, नहीं तो सर वो बहुत ही कोमल पौध होती है, वो एक ही सर आग में जो है जल करके पूर्णतः नष्ट हो जाती है, तो उसका भी ध्यान देना पड़ता है।
1: बिल्कुल, जैसे कि हम देखते हैं ना कि गर्मियों में ज्यादातर हम देखते हैं कि हमारे जितने भी आसपास या जहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें आग लग जाती है, इसका ये ग्रामीण खुद लगाते हैं, क्या है इसका, क्या होता है इस तरह से?
0: सर अब कंफर्म ये नहीं कह सकती कि ग्रामीण ही लगाते हैं, लेकिन सर कुछ अराजक तत्व जरूर होते हैं, क्योंकि सर कितना भी टेम्परेचर हो, कितनी भी ज्यादा भीषण गर्मी हो, आग सर स्वतः कभी भी नहीं लगती है, कभी भी नहीं लगती है सर। मैं बताऊं आपको सर 90% से ऊपर जितने भी हमारे आग के जो कारण होते हैं वो मानव जनित कारण है, मानव के द्वारा ही लगाई जाती है। कुछ सर ऐसे भी मतलब हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, अगर ग्रामीण लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमारे नाप खेतों में हम आग डालेंगे तो अच्छी घास आएगी, सर इस घास की लालच में वो बड़े से बड़े जंगलों को जो है पूर्णतः तबाह कर देते हैं। और में सर जो सबसे बड़ी लापरवाही ग्रामीणों की आती है वो जब नाप खेतों में आग डालते हैं उस समय जो लापरवाही करते हैं सर, उसकी वजह से वो जो है नाप से बेनाप, बेनाप से संरक्षित, संरक्षित से आरक्षित, मतलब एक बहुत बड़े पैमाने में वो आग लग जाती है, जिससे कि हमारी सर लाखों की वन संपदा हर साल नष्ट हो जाती
1: है। बिल्कुल सही बात है।
0: तो इसमें सर सबसे जो जरूरी पहल है हम लोगों को जागरूक, हम तो हमारा वन विभाग सर पुरजोर कोशिश करता है, हर साल हम मीटिंगें बैठाते हैं, रैलियां निकालते हैं, हम उनको हर तरीके से सर समझाया जाता है कि आप अपने नाप खेतों में अगर आप ठीक है सफाई करनी है मैं जरूर मानती हूँ, नई फसल के लिए उसको तैयार करना है मैं मानती हूँ, लेकिन सर ये जो है अगर आप आग डालकर उसको छोड़ के आ जा रहे हैं सर, वो आग स्वतः तो बुझेगी नहीं, वहाँ पे सर जरा लापरवाही ग्रामीणों की हो जाती है कि वो लोग जो है उस आग को वैसे ही छोड़ करके आ जाते हैं घरों में। तो सर मैंने बहुत सही से ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराया, उसमें बताया भी है कि इस तरीके से और नाप खेतों की आग को जब डालते हैं तो उसका सावधानी बरते हैं, लाइन काटे और सर किस तरह उसको मैं कहती हूँ कि तुरंत ही मतलब बुझाने के बाद ही घरों को वापस आए, सर ये हमने बहुत बार उनको बताया है।
1: जी जी जी। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि ग्राम पंचायतों को जो आप ये वृक्ष देते हैं तो उनकी तार बाड़ का भी है कुछ, उनके जिस तरह से जंगली जानवर पौधों को नुकसान न पहुंचाए,
0: इस पर हमने ऊपर तो सर बहुत ज्यादा लिखित आवेदन किए हैं कि हमें जो है हमें सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड वगैरह प्रोवाइड किए जाए।
1: जी जी।
0: लेकिन सर हम जो है ऐसे क्षेत्रों में लगाते हैं पौधे जहाँ पे की हमारी जैसे दीवार बंदी वगैरह हो, हम ऐसे ही सर स्थलों का चुनाव करते हैं जहाँ पे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
1: जी जी जी
0: जी सर। हम मतलब कहीं भी मतलब लगा के नहीं आ जाते हैं, फिर आवेदन हमने कर रखे हैं ट्री गार्ड वगैरह के लिए। देखिए सर इसमें भी अभी सरकार जो है प्रयास कर रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सर हमें पेड़ों के साथ साथ ट्री गार्ड भी दिए जाएंगे उनकी सुरक्षा के लिए।
1: बिल्कुल बहुत अच्छी बात आप कह रहे हो। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे सुनने वालों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे ये वन महोत्सव के दौरान?
0: मेरे जितने भी श्रोतागण, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि वन महोत्सव जो 1 से 7 जुलाई

0: खरवर्ष मनाया जाता है, इसको बस 1 से 7 जुलाई तक ही ना मनाएं। सर पूरा जुलाई और सितंबर जो है हमारा जो है पौधारोपण के लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है, जो मानसून सत्र हमारा चल रहा है। बढ़ चढ़कर सर वो हिस्सा लें, वृक्षारोपण को बढ़ावा दें, विभिन्न संस्थाओं से अधिक पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करें, ताकि सर हमारे देश के जो हरित क्षेत्र है उसको बढ़ाया जा सके, बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सके। और सर वनों को बचाना और नए पेड़ लगाना सर आज के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक हो चुका है। पर्यावरण संतुलन के क्षेत्र में भी अगर देखें तो सर प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए और हमारी जैव विविधता को फलीफूलित करने के लिए सर वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। हम समझेंगे कि हमारे सुनने वाले इससे लाभान्वित होंगे। आपने हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं अल्लाह सुनने वन महोत्सव सप्ताह अंतर्गत वन महोत्सव के लाभ विषय पर वन बीट अधिकारी श्रीमती पूनम पंतजुदग क्षेत्र संकलित भेटवार्ता कार्यक्रम में आपको सुनू महिपाल सिंह मेहता और ज्योति उप्रेती गई योगी।

साई चुम चुमा हिट जानू कोती का मेरी जमुना साई चुम चुमा मैं जानू नेपाला मेरी जमुना साई चुम चुमा हिट जानू

दपे पौजिया सुनो का मेरी जमुना साई चुम चुमा हिट जानू कोती का मेरी जमुना साई चुम चुमा पौजिया सुनो का मेरी जमुना साई चुम चुमा हिट जानू।

श्रोताओ महिपाल सिंह मेहता व ज्योतिप्रति गई योगी तक दगड़ आज उत्तरायण कार्यक्रम इतिग संपन्न हूँ। प्रस्तुति छी संजय जोशी। गूगल का आज्ञा दियो। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय ITI से।
4: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
3: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
4: डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत ITI में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
3: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय ITI में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
4: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, सेवा

0: पखवाड़ा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने यात्रा मार्ग पर विशेष निगरानी शुरू की। विभाग की 4 विशेष टीमें होटल, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करेंगी। रुद्रप्रयाग पुलिस ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पूरे जिले में साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया। ये विशेष अभियान 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा का 103वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। प्रगतिशील किसानों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थान के वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश से सेवा सुशासन व समर्पण जन जन की सरकार जन जन के द्वार सेवा पखवाड़ा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। अभियान का उद्देश्य सरकार और आमजन के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाना तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचाना है। इस अवसर पर देहरादून जिले की 219 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की 51 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। राज्यपाल ने कहा कि यह अभियान लोक सेवा सुशासन और जन कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सेवा सुशासन और समर्पण की भावना के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं लोगों के बीच पहुँच रही है, जिससे आमजन को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े।
1: से पहले वाला जो कार्यक्रम हमारा ये 45 दिनों तक चला था, उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए थे। पूरे प्रदेश के दूर दराज के लोगों ने इसकी बहुत सराहना की थी। ऐसे लोग जो देहरादून नहीं आ सकते, जिला मुख्यालयों तक नहीं आ सकते, आयुक्त मुख्यालयों तक नहीं जा सकते, सरकारी दफ्तरों में आने में जिनके पास साधन नहीं है, उन सभी को उनके घर के पास जाकर सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने अनेक सुविधाएं और अनेक प्रमाण पत्र और अनेक प्रकार की लाभार्थी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम किया था। तो इसलिए मैंने कहा कि इस माध्यम से स्वयं जनता के बीच जाकर हमारे अधिकारी और हमारी जनप्रतिनिधि मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित रूप से समाधान करें और सुनिश्चित करें और सरकार की योजनाओं का प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएं। यही हमारे 5 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।
0: इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लघु उद्योगों, स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की। सेवा पखवाड़ा के तहत आज टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत और पिथौरागढ़ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में बहुउद्देश्य शिविर लगाए गए। इस अवसर पर विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर आमजन को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही मौके पर योजनाओं का लाभ भी दिया गया। इन शिविरों में लोगों को एक ही स्थान पर अनेक विभागों की सेवाएं प्राप्त हुई। वहीं बागेश्वर में आयोजित शिविर में शामिल हुई आशा खेतवाल ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के माध्यम से उन्हें लाभ मिला है।
2: यहाँ पे जो है डिग्री कॉलेज बागेश्वर में सेवा पखवाड़ा लगा हुआ है, जिसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसमें मैं एनआरएलएम से जुड़ी हुई महिला हूँ और रिप परियोजना के माध्यम से, ग्रामोत्थान के माध्यम से जो है मैंने यहाँ पर सीबीओ लेवल से एक सिलाई की यूनिट हमारे अनरसा में लग रही है, जिसका काम जो है अभी वर्तमान में जो है चालू है और इससे हमारी स्थानीय लोगों को भी अच्छी मदद मिलेगी और हमारी समूह की महिलाओं को भी इसमें रोजगार मिलेगा, जिससे मैं रिप परियोजना का और एनआरएलएम का धन्यवाद और सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी।
0: प्रदेश में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आगामी 7 जुलाई तक गणना प्रपत्र जमा करना अनिवार्य है। इस संबंध में देहरादून के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जिले के ऐसे सभी पात्र नागरिकों से तत्काल अपने BLO से संपर्क कर गणना प्रपत्र जमा करने की अपील की है, जिन्होंने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है। उन्होंने बताया कि जिले में पंजीकृत 13,76,000 मतदाताओं में से 11,86,000 से अधिक मतदाता अपना गणना प्रपत्र जमा कर चुके हैं और इनमें 99.98% प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन भी पूरा हो चुका है। हालांकि अभी भी 1,90,588 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा नहीं किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर गणना प्रपत्र जमा करना प्रत्येक पात्र मतदाता के लिए आवश्यक है।
3: आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताज़ा समाचार। के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध।

0: हैं।
1: ब्रेक के बाद उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने यात्रा पार्क पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है। विभाग ने 4 विशेष टीमें तैनात की हैं जो होटल, ढाबों, भोजनालयों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करेंगी। साथ ही मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से मौके पर ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच की जाएगी। ये टीमें यात्रा मार्ग पर लगातार निरीक्षण करेंगी। अगर किसी प्रतिष्ठान में मिलावट, गंदगी, अस्वच्छ वातावरण या खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी MN जोशी ने बताया कि पिछले वर्ष कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए इस बार भी व्यापक तैयारियां की गई हैं। विभाग ने यात्रा मार्ग पर संचालित सभी होटल, ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों को वैध फूड लाइसेंस, रेट लिस्ट और संचालक का नाम, पता व संपर्क नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का कहना है कि इससे श्रद्धालुओं को पारदर्शी जानकारी मिलेगी और शिकायतों के निस्तारण में सुविधा होगी। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा का 103वां स्थापना दिवस आज समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों और संस्थान की फसल प्रजातियों को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। संस्थान के निदेशक डॉ. लक्ष्मीकांत ने संस्थान द्वारा पिछले वर्षों की गौरवशाली उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि भविष्य के लिए नई कार्य योजनाओं पर भी रणनीति बनाई जा रही है।
2: पिछले वर्ष में क्या क्या उपलब्धियां संस्थान ने प्राप्त की हैं और फ्यूचर की क्या डायरेक्शन होगी। जैसे पिछले साल वर्ष की बात करें तो इसमें 7 नई प्रजातियां विमोचित की गई हैं, जिसमें 2 प्रजातियां जो VL340 एक है, जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज बोलते हैं, तो उसके अंदर में QPM है, प्रोविटामिन ए है और लो फाइटेट है। और दूसरी एक VL Suprosita एक प्रजाति है जिसके अंदर में QPM है और साथ में जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो ये देश में प्रथम बार ये प्रजातियां विकसित हुई हैं इस कॉम्बिनेशन की। और साथ में जो नई दिशा, जो नया प्लान शुरू हो रहा है उसके अंदर में, जैसे वैक्सीमेज की हम बात कर रहे हैं या फॉक्सटेल मिलेट और किनोवा की बात कर रहे हैं, हींग की बात कर रहे हैं, तो इन दिशाओं में काम इसमें किया जाएगा।
1: समारोह में बागेश्वर जिले के सम्मानित प्रगतिशील किसान जीवन चंद्र ने बताया कि वो पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, इससे उन्हें काफी लाभ होता है।
3: पॉली हाउस से टमाटर और शिमला मिर्च और बैगन ये उत्पादन करता हूँ। 2 बार हम खेती करते हैं और उसमें से 4-5 क्विंटल के आसपास में टमाटर होता है और 1.5-2 क्विंटल के आसपास शिमला मिर्च होता है और वैसे ही बैगन होता है।
1: रुद्रप्रयाग पुलिस ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पूरे जिले में साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है। ये विशेष अभियान 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी पुलिस उपाधीक्षक, थाना व कोतवाली प्रभारियों और साइबर सेल के साथ बैठक की। उन्होंने साइबर शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण, 1930 साइबर हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, E0 FIR पर का प्रभावी क्रियान्वयन और वित्तीय साइबर ठगी के पीड़ितों को शीघ्र धनराशि वापस दिलाने का निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने महिलाओं, आमजन और बच्चों से जुड़े साइबर अपराधों में तत्काल कार्रवाई करने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने अभियान की नियमित समीक्षा करने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से जन जन की सरकार, जन जन के द्वार सेवा पखवाड़ा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने यात्रा मार्ग पर विशेष निगरानी शुरू की। विभाग की 4 विशेष टीमें होटल, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करेंगी। रुद्रप्रयाग पुलिस ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पूरे जिले में साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया। ये विशेष अभियान 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा का 103वां स्थापना दिवस समारोह पूर्व संपन्न। प्रगतिशील किसानों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थान के वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम की पहली भक्ति रचना हम आपको सुना रहे हैं सुरेश वाडकर के स्वर में।

0: अनूप जलोटा की गाई सी भक्ति रचना के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, कुछ ही पलों में गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटिन गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी दीपक नेगी। पहली मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का बालोतरा मां देश को पहलू ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर ते राष्ट्र को समर्पण करी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

0: ऋषिकेश माँ देहरादून जिलक 219 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 51 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करी। मुख्यमंत्री ने बोली सरकार को लक्ष्य वर्ष 2035 तक उत्तराखंड ते विकसित और श्रेष्ठ राज्य बनोण च। हरिद्वार में राज्य को पहले हिलांश रिटेल आउटलेट को उद्घाटन। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ते मिलुलु अस्थायी बाजार। और मौसम विभागन अगले 24 घंटे का दौरान नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भारी बरखा को ऑरेंज अलर्ट जारी करी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान का बालोतरा में भारत को पहलू ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिषद राष्ट्र ते समर्पित करी। यु देश को ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि च। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिषद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार को संयुक्त उद्यम च। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा ते संबोधित कनबगत बोली कि यू रिफाइनरी हजारों लोगों का वास्ता रोजगार को माध्यम बनलो। श्री मोदी ने बोली कि 21वीं सदी को सबसे बड़ा ऊर्जा संगठन से निपटण में नए भारत की इच्छा शक्ति और वहाँ का प्रयास सफल रहन। उन बोली कि भारत ने हर स्तर पर समय रेखी से निर्णय लेनी, स्थिति को सटीक आकलन करी और प्रभावी रणनीति अपनाई और उपलब्ध संसाधनों को संतुलित उपयोग करी।
1: 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश में देहरादून जिला का 219 करोड़ से अधिक लागत की 51 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करी। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम से संबोधित कनबगत राज्यपाल ने बोली कि यू अभियान लोक सेवा सुशासन और जन कल्याण का प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सशक्त प्रतीक च। उन बोली कि लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तभी च जब शासन की योजनाओं को लाभ समाज का अंतिम छोर पर खड़ा प्रत्येक नागरिक एवं समयबद्धता का दगड़ी पहुंचू। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बोली कि सरकार को उद्देश्य केवल योजनाएं बनोनी बल्कि उनको लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाउण च। ये भावना का दगड़ी जन जन की सरकार जन जन के द्वार सेवा पखवाड़ा आयोजित करे जाणु च। उन बोली कि राज्य सरकार को लक्ष्य वर्ष 2035 तक उत्तराखंड ते विकसित और श्रेष्ठ राज्य बनोण च।
2: कार्यकाल पूरा करना नहीं है बल्कि हमारा लक्ष्य एक समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना है। वर्ष 2035 तक देवभूमि उत्तराखंड को पूर्ण रूप से विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में निरंतर कार्य हो रहे हैं। आज शहर हो चाहे सीमावर्ती क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही हमारे अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए दिन रात हम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम पारंपरिक खेती के साथ दुग्ध मधु उत्पादन, आधुनिक बागवानी, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। युवाओं को अपने घर में ही रोजगार मिले इसके लिए हमारी सरकार नई स्टार्टअप नीति, एक जनपद दो उत्पाद योजना, होम स्टे योजना और सौर स्वरोजगार योजना जैसी कई योजनाओं को हमने लागू किया है।
0: हरिद्वार में राज्य को पहलू हिलांश रिटेल आउटलेट को उद्घाटन करेंगे। रीप की राज्य परियोजना निदेशक झरना कामठन बोली कि यू पहल महिला सशक्तिकरण, स्थानीय उत्पादों ते बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ते मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम च। उन बोली कि स्वयं सहायता समूह ते बाजार उपलब्ध करोण, उनकी आय बढ़ोण और उनते आत्मनिर्भर बनोण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल च।
3: सरकार ग्राम्य विकास विभाग का एक इनिशिएटिव है जिसमें IOCL के साथ में हमने एक MOU साइन किया है 29 जनवरी को, जिसके अनुसार जो प्रदेश में जो भी पेट्रोल पंप है IOC के, वहाँ पे हमको स्पेस दिया जाएगा जिससे कि हमारी जो महिलाओं के उत्पाद हो उनको एक अच्छा मंच मिले, उनको वहाँ पे आउटलेट मिले और वो अपने उत्पादों को वहाँ पे प्रदर्शित करके उसके अच्छी सेल कर सके। तो इसी कड़ी में आज इसकी शुरुआत हुई है। सबसे पहले हरिद्वार जनपद में यहाँ पे जो ये पेट्रोल पंप है भादराबाद में, यहाँ पे हमारा एक श्रद्धा CLF ग्रुप को एक स्पेस दिया गया है यहाँ पे और इनके अपना जो है आउटलेट यहाँ पे खोला गया है। तो इसका यहाँ उद्घाटन किया गया है और ये रीप परियोजना के अंतर्गत जो कि IFED फंडेड प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत ये पहल है। हमने ये MOU पूरे स्टेट के लिए किया है और हरिद्वार जनपद से शुरुआत है और आगे हम अन्य जनपदों में भी महिलाओं को स्पेस देने के लिए

0: इसी तरह के आउटलेट शीघ्र ही खोलेंगे।
1: आउटलेट में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार स्थानीय खाद्य उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद, मसाले, मेलेट आधारित खाद्य सामग्री और हस्त निर्मित वस्तुएं उपलब्ध होली। ये से महिलाओं ते अपना उत्पादों को विपणन का वास्ता अस्थायी मंच मिललु और उपभोक्ताओं ते उत्तराखंड की गुणवत्ता और परंपरा से जुड़ना उत्पादन आसानी से मिल सकला। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बद्रीनाथ धाम दान की कथित हेरा फेरी को मामला की निष्पक्ष जांच करने का निर्णय लेने, सोशल मीडिया पर मामला सामने आने का बाद बीकेटीसी जांच समिति को गठन कार्यालय। बीकेटीसी का अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी बताई कि संबंधित कर्मचारी वटिन स्पष्टीकरण मांगेगे। उन बोली कि जांच पूरी होने का बाद यदि कोई कर्मचारी दोषी पाए जालो तो वे का विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करे जाली।
2: में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है और चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी कर्मचारी हैं, अधिकारी गण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा वो नोटिस, सो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से बना दी गई है। जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: मौसम विभागन अगला 24 घंटे का दौरान नैनीताल और बागेश्वर जिला में भारी बरखा को ऑरेंज अलर्ट, जबकि राज्य का अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी कर। पिछला 3 दिनों बटिन रुक रुकी होनी बरखा, पर्वतीय क्षेत्र में अवरुद्ध ग्रामीण सड़कों ते खुलने को काम जारी चुकी, भूस्खलन का कारण कई मुख्य मार्ग भी प्रभावित छन और उनको बंद खुलने को सिलसिला जारी चु। विभागन 10 जुलाई तक राज्य में बरखा को येलो अलर्ट भी जारी करूँ। लोगों से मौसम पूर्वानुमान ध्यान से रखी ही यात्रा करन और खराब मौसम का दौरान सुरक्षित स्थानों पर रोकन और गाड़ गदेरों और नदी नालों से दूर रहने की अपील करी च। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र का सांसद अजय भट्टन लालकुआ विधानसभा का अंतर्गत ग्राम विजयपुर गोलापार में प्रस्तावित विजयपुर पहाड़ पानी मार्ग को स्थलीय निरीक्षण करी। ये दौरान श्री भट्टन अधिकारियों ते मार्ग निर्माण कार्य में तेजी लियोण और जनहित से जुड़िया विकास कार्यों ते प्राथमिकता का आधार पर पूरा करने का निर्देश दिनी। श्री भट्टन क्षेत्रवासियों और ग्रामीणों दगड़ मुलाकात करी, उनकी समस्याएं और सुझावों ते सुनी। पत्रकारों दगड़ बातचीत मां उन बोली की
3: के लोगों की जो डिमांड थी वो डिमांड पहली बार पूरी हुई है। लगभग 4.25 करोड़ से ये आज यहाँ पर सड़क आ रही है। इसमें कॉजवे पहले हम बना रहे हैं, निकट भविष्य में बड़ा पुल बनाएंगे, जैसे सूर्या नाला पर भी पुल बन रहा है। यहाँ हमने पहले भी कई पुल बनाए हैं। धीरे धीरे हर व्यक्ति की, हर गांव में रहने वाले नागरिक की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा विजन है। उसके आधार पर हम सब लोग काम करते हैं। क्षेत्रीय जनता की जो डिमांड से आती है, जनप्रतिनिधि हम लोग, सांसद हों या फिर हमारे MLA हों, हम सब लोग उसको आगे बढ़ाते हैं।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का बालोतरा में देश को पहलू ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर ते राष्ट्र को समर्पण करी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश में देहरादून जिला की 219 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 51 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करी। मुख्यमंत्री ने बोली कि सरकार को लक्ष्य वर्ष 2035 तक उत्तराखंड ते विकसित और श्रेष्ठ राज्य बनौण च। हरिद्वारम राज्य को पहलू हिलांस रिटेल आउटलेट को उद्घाटन, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ते मिललू अस्थायी बाजार और मौसम विभागन अगला 24 घंटा का दौरान नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भारी बरखा को ऑरेंज अलर्ट जारी करी। यहाँ का दगड़ ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
4: FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 7 बजने वाले हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम किसान वाणी।

कार्यक्रम किसानवाणी सुनने सब दगड़ियां मैं प्रमोद पांडे। नमस्कार श्रोताओ, हमारे यो किसानवाणी कार्यक्रम प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। दगड़ियो, आज हम बात करनु वर्षा काल में फल पहुँच रोपड़ा बारे में। दगड़ियो, भारत एक कृषि प्रधान देश जहाँ बर्ख ऋतु में पौधा रोपड़ा लीजिए सबसे उपयुक्त वक्त मानी जाए। हर यो मौसम में पर्याप्त नमी, अनुकूलता, पान तथा प्राकृतिक जल उपलब्ध होने के कारण फलदार पौधों की जड़ तेजी साथ विकसित होनी। यदि उचित विधि वर्षा काल में फल पौध रोपण करी जाए तो पौधों की जीवित रहने की संभावना ज्यादा हो और भविष्य में भल गुणवत्ता एवं ज्यादा उत्पादन प्राप्त हो। अब दगड़ियो, जब बात करी जाओ कि वर्षा काल में फल पौध रोपण महत्व बारे में, तो यह क्यों कि मठ में पर्याप्त नमी बढ़ी रहूँ, पौधों की जड़ों विकास तेजी साथ हूँ, सिंचाई आवश्यकता कम पड़े, पौधों का जीवित ऋण प्रतिशत ज्यादा है या और बागवानी लागत ले कम हो। दगड़ियो, मानसून एक पहल वर्ग जो हूँ हम भल वर्ग बाद सामान्यतः तो जुलाई बटी अगस्त तक जो वक्त हूँ वो अधिकांश फल पौध रोपणों लिए उपयुक्त माने जा। यह एक वक्त हम जो मुख्य रूप फलदार पौछन उछन आम, अमरूद, ऑल नींबू है, संतरा, कटहल, जामुन, बेल, पपित, लीची एक के हम लगा सकनु। और दगड़ियो, पौध रोपण है जो विधि से उछ कि हमन के एक गुणा एक गुणा एक मीटर फसल अनुसार आकार गड्ढ तैयार करना चाहिए। गड्ढे माट में भल सड़ी हुई गोबर खाद तथा आवश्यक उर्वरक हमन के मिलूं चाहिए। स्वस्थ एवं प्रमाणी पौधों का चयन हमन क्या करना चाहिए। पौध के पॉलीबैग में बटीक सावधानी पूर्वक निकाल बेर खड्ड में लगूं चाहिए। माट भल तरह दबेर खाल बोण और आवश्यकता अनुसार सिंचाई उमें करना चाहिए। पौधों के सहार देने लीजिए बांसक खुट्टी में लगूं चाहिए। दगड़ियो, इमें कुछ बात ध्यान देने लगूनी, जस की जल भराव वाले स्थानों पर पौध नहीं लगूं चैन, रोग एंग कीट मुक्त पौधों चैन हम उनके करण चैन, पौधों चारों ओर मल्च करने नमी बढ़ी रू, पशुओं से सुरक्षा हेतु पौधों चारों ओर टी गार्ड या बाड़ लगूं चैन, खरपतवार एक बखत बखत पर सफाई हम उनके करते रू चैन। दगड़ियो, यह कुछ फैद लक्षण जैसे कि भविष्य में ज्यादा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हम उनके प्राप्त हों, किसानों की आय में वृद्धि हों, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण में वृद्धि हों, मृदा संरक्षण तथा जल संरक्षण में सहायता मिले, पोषण सुरक्षा एवं रोजगार अवसर में वृद्धि हों। तो दगड़ियो, वर्षा काल फलदार पौधों का रोपण लीजिए सबसे अनुकूल मौसम छ। यो वक्त वैज्ञानिक विधि पौधारोपण करण पर पौधों की वृद्धि भली हों और उस शीघ्र फल देने लगनी। तो प्रत्येक किसान एवं जुले पौधों का रोपण करना चाह वो वर्षा ऋतु में ज्यादा है ज्यादा फलदार पौध लगा बेर पर्यावरण संरक्षण, पोषण सुरक्षा तथा आर्थिक समृद्धि में अपूर्ण योगदान दी सकनी। तो दगड़ियो, यो छी आप लोगों दगड़ बातचीत और कार्यक्रम में अखिल सुनो शंकर उप्रेती गई हुई शोलो गीत।

ಸಿಕರಿ ಪಯೋಗಿ ಉಂಜಿ ತಲೆನು

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल

0: का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
1: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
0: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए।
3: छोटा किसान बने देश की शान।
2: पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रूपए की सम्मान राशि, 2,000 रूपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान।
4: और दोस्तों, अब कार्यक्रम में आज सुनो पशुपालन और मिश्रित खेती करणी महिला कृषक कलावती देवी ग्राम बालाकोट पिथौरागढ़ द्वारा करेगी जो छेद संकलित भेंटवार्ता।
5: श्रोता मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं श्रीमती कलावती देवी से, जो कि ग्राम बालाकोट जिला पिथौरागढ़ की रहने वाली है। मैडम, जहां एक ओर कृषि कार्य करती हैं, वहीं दूसरी तरफ मैडम पशुपालन में भी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। मैडम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे आपका परिचय।
6: मैं कलावती देवी, ग्राम बालाकोट, पोस्ट ऑफिस हरकोट, जिला पिथौरागढ़ की मूल निवासी हूँ। मैं कृषि कार्य करती हूँ और साथ साथ डेयरी भी चलाती हूँ, पशुपालन करती हूँ। हमें विभागों से जो भी परियोजनाएं हमें मदद करती हैं, तो हम उस अनुसार हमको कृषि विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र हमारे यहाँ गैना में वैज्ञानिक तरीके से हमको सिखाते हैं। उसी के अनुसार हमने पहले हम अपने तरीके से खेती करते थे, तब से हम विभागों से जुड़े, समूह से जुड़े, हमारे कृषि विभाग, उद्यान विभाग, आत्मा परियोजना आदि सब हमको सहयोग करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। तो हम अब तकनीकी विधि से खेती, कृषि सब्जी करते हैं, साथ साथ डेयरी और बर्मी कंपोस्ट। हमने यूरिया या छोड़ दिया और बर्मी कंपोस्ट खाद अपनी डालते हैं, और उसी के साथ जो हमको बताया कि
5: आप कहिए, हम वैज्ञानिक विधि से कृषि कार्य कर रही हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि अभी आपने वर्तमान में अपने खेतों में क्या क्या लगा रखा है?
6: अभी सर हमने सब्जी में लगा रखा है शिमला मिर्च, टमाटर, बंद गोभी और ऐसी मिर्च लगा रखी है, और खेतों में हमने लगा रखी है काले भट्ट, मड़ुआ, धान, सोयाबीन।
5: अब आप मुझे ये बताइए कि आपको मालूम है कि आपने जो बीज लगा रखा है वो कौन सी प्रजाति का है?
6: सर उसमें खास तो है, लेकिन हमने बंद गोभी लगा रखी है और शिमला मिर्च लगा रखी है और टमाटर लगा रखे हैं, और मड़ुआ में हाइब्रिड ही लगा रखा है ब्लॉक द्वारा जो दिया जाता है किसी विभाग से, और धान लगा रखे हैं थोड़ा, तो हमने वो लगा रखे हैं जो किसी विभाग द्वारा दिए जाते हैं वो बीज, और थोड़ा अपने परंपरागत जो बीज हैं वो भी लगा रखे हैं, भट काले भट।
5: जी, यानी कि आपने जो वैज्ञानिक बीज भी लगा रखे हैं और अपने जो परंपरागत बीज हैं उनका भी आप प्रयोग करती है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कितने नाली में करती हैं आप खेती?
6: खेती करते ही हैं सर, कुल मिला के 10 नाली करीब करते ही हैं हम।
5: अच्छा, 10 नाली करीब?
6: हाँ करते, मैं अपना बता रही हूँ, 10 नाली करीब।
5: और पशु कितने हैं आपके पास?
6: पशु सर मेरे पास है 5 पशु हैं।
5: और बकरी या मुर्गी पालन ऐसा भी कुछ है?
6: मुर्गी है हमारे पास, 50 मुर्गियाँ हैं
5: जी,
6: 8 बकरियां हैं।
5: तो मुर्गी कौन सी प्रजाति की है?
6: कॉलर है सर।
5: अच्छा, ब्रॉयलर है जी।
6: कॉलर जो रंग बिरंगी नहीं होती है।
5: जी जी जी जी जी,
6: कॉलर मुर्गियां हैं जो अपने यहाँ से चूक के ही हमें से खोल देते हैं और घर के ही राशन से पाली जाती हैं वो मुर्गियां।
5: अच्छा, ये वाली प्रजाति आपके पास है। अब आप मुझे ये बताइए, कृषि विज्ञान केंद्र पिथौरागढ़, वहाँ से आप कितने सहायता लेती हैं?
6: सर जो भी सहायता है वो हमारे नज़दीक है कृषि विज्ञान केंद्र गैना, वहाँ के वैज्ञानिक हर मौसम में हमको यहाँ

0: प्रशिक्षण देते हैं समूह की महिलाओं को, दस्तानी जैसी और जीवामृत जैसे जो घरेलू उपचार हैं, कीड़े की दवाई है, जो दस्तानी और जीवामृत हमको घर में बना के सब्जियों में ऐसे डालना सिखाया, वो हम अपना करते हैं, प्रयोग करते हैं उनके बताए अनुसार। मौन पालन और मशरूम ट्रेनिंग समय समय पर हमको, ये गैना कृषि विज्ञान केंद्र हमको समय समय पर अपने गाँव में ही समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं।
1: आप भी करती हो मशरूम उत्पादन और मौन पालन?
0: हम भी करते हैं लेकिन बड़े स्तर पर नहीं, अपने लाइफ करते हैं हम।
1: कितने हैं मौन के बक्से?
0: मौन के बक्से तो 4-5 ही हैं अभी हमारे पास
1: जी। और मशरूम कितना है?
0: मशरूम का जैसे हम 10 पैकेट 15 पैकेट ऐसे भरते हैं
1: जी,
0: तो अपने लायक हो जाता है,
1: यानी कि अपने लायक आप कमा लेती है। आपने मुझे बताया कि आप बर्मी कंपोस्ट तैयार करती हैं।
0: जी सर।
1: कितने गड्ढे हैं आपके पास बर्मी कंपोस्ट के?
0: मेरा बहुत लंबा चौड़ा है, 20 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा एक वो है मेरा बर्मी कंपोस्ट का एक पीट, और छोटे छोटे हैं उसमें, मेरे पशु ज्यादा हैं, मैं बर्मी कंपोस्ट तैयार करती हूँ, डिमांड के अनुसार मैं बेचती भी हूँ।
1: क्या भाव से बेचती हैं आप?
0: हम 20 रुपए किलो बेचते हैं यहाँ से, मार्केट में वही 25-30 बेचते हैं, लेकिन हमारे घर से जो उठाता है उसको हम 20 रुपए किलो यहाँ से देते हैं
1: जी। अच्छा मैडम एक बात बताओ कि आपने जो ये बर्मी कंपोस्ट के गड्ढे तैयार किए, ये किसी सब्सिडी के तहत तैयार किए?
0: सर पहले किसी विभाग द्वारा दिए गए थे 5,000 कितने की सहायता दी गई थी इसमें, तो हमने छोटे छोटे तो गांव में बने ही हैं, मैंने एक बड़ा बनाया जिसमें कि मेरे पशु ज्यादा थे, मैंने बड़ा बनाया, तो इसको हम एक तो रोजगार में लाए हैं, दूसरा हमारा कारोबार कम हो रहा है सर, गोबर के ढेले के सामने इसको हम ज्यादा उठा के खेत में डालते हैं, और ये अच्छा काम भी करता है, इसमें कुरमुल्ले उरमुल्ले की शिकायत नहीं होती है।
1: आपने बर्मी कंपोस्ट के लिए केंचुओं की जरूरत होती है, तो आप केंचुए कहाँ से लाई?
0: सर ये पहले हम एक सशक्ति परियोजना आई थी स्वाति सस्ता करके, एक पिथौरागढ़ में सस्ता काम करती थी, उन लोगों ने समूह की महिलाओं को केंचुए दिए जिनको हमने आज तक जिंदा रखा है, उनके गोबर डाल डाल के अभी तक बहुत सारे हो गए हमारे गांव में, छोटे छोटे सबके ही हैं वो।
1: अच्छा।
0: दिए भी।
1: आप बागवानी वगैरह कुछ करती हैं?
0: बागवानी करते हैं सर, इसमें हमारे जैसे हमारा अपना एक चेक है उसमें हमारा नाशपाती है और वो वाला आड़ू है और ये है खुमानी है पुलम है, ऐसी चीजें लगा रखी है हमने बागवानी में।
1: अच्छा तो मैडम आप सरकार द्वारा जो सहायता किसानों को दी जाती है उन किसानों का फायदा आप उठा रही हैं?
0: उठा रहे हैं सर, उठा रहे हैं।
1: कौन कौन सी योजनाओं का लाभ ले रही हैं?
0: उठा रहे हैं सर, जैसे ये कृषि विज्ञान उद्यान केंद्र, ये तो उद्यान विभाग, ये तो किसानों के साथ ही रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो हमारी परियोजनाएं समूह के समूह में काम कर रही है ना, हमारे एक ग्राम उत्थान है और NRLM है, ये जो काम कर रहे हैं समूह के साथ, ये आने वाली जो भी गरीब महिलाएं हैं अगर इच्छुक हैं तो जो इन परियोजनाओं में महिलाओं के लिए है वो सारी सुविधाएं गांव तक पहुंचा रहे हैं, उनमें भी हम डेयरी का हो उद्यान का हो जैसे पेड़ पौधे लगाने के लिए जो डिमांड करते हैं वो समूह के माध्यम से हमको मिल जाते हैं, और कृषि विभाग उद्यान विभाग से भी हमको पौधे मिल जाते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सरकार ने हमारे लिए काफ़ी योजनाएं आज चला रखी हैं, जैसे फसल बीमा योजना ही है कि हम अपने फसल का बीमा करा लें, आपने कराया होगा फसल बीमा?
0: जी सर, वो तो हर साल ही कराते हैं 6 महीने में रबी और खरीफ की ना,
1: जी जी,
0: तो हम कराते ही हैं इसमें बीमा भी, फसल बीमा भी कराते हैं, जो वो बीज बीज देते हैं तो उसी के साथ साथ हम बीमा भी बीमा के फॉर्म भी भर देते हैं।
1: और किसान सम्मान निधि?
0: जी सर, जिनके नाम पे किसान है, किसान के जिसके नाम पे जमीन है
1: जी जी,
0: उसको किसान सम्मान निधि मिलती है, अगर बाय दफे किसी की कुछ त्रुटि के वजह से नहीं आते हैं, वो लोग घर घर आके करते हैं पता कि आप लोगों की जिसकी भी किसान सम्मान निधि रुकी है आप समाज कल्याण में आके अपना आधार कार्ड आके और हमसे संपर्क करें, कहाँ पे रुकी है क्या त्रुटि हुई है वो उसको दूर कर देते हैं, वो गांव में भी आके बताते हैं।
1: बहुत बढ़िया जानकारी आप दे रही हैं मैडम, तो मैडम आप चलते चलते हमारे जो किसान भाई हैं उनसे आप और क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं कहना चाहूंगी कि जैसे हम कर रहे हैं वो भी करें, और सरकार की दी हुई विभागों से दी हुई जानकारी का फायदा लें, और आज तक हम जो छिड़काव विधि करते हैं आज लाइन में बोल

0: हैं उसमें से भी हमको फायदा हो रहा है। सारे किसान फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, अभी भी मैं जो दूर दराज के किसान हैं उनको भी ये जानकारी पहुंचे और जो सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हैं वो लाभ उन तक भी पहुंचे।
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने हमें दी मैडम। तो मैडम
2: आप लोग ने पशुपालन में मिश्रित खेत करणी महिला कृषक कलावती देवी देवी ग्राम बालाकोट पिथौरागढ़ दगा करी गई क्षेत्र संगलित भेंटवार्ता सुनी।
3: किसान मान धन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और दोस्तों अब कार्यक्रम में जाने जाने सुनने को नंदलाल आर्य गई थी यो लोकगीत।

说这个刘老不如我能得拉了哎呦为非有路给说了而这个刘阿玛的阿杰克斯拉去给他们给बागवानी है बड़ा वाद दिन छे लेकिन अगर यो हम देखनो कि जहाँ बागवानी हमर पर्यावरण सुरक्षित रू हमर वातावरण भल रू वहीं हमर जो रोजगार छे उले बढ़िया ढंग से चलो आजकल तो वर्षा काल छे दगड़ी हो आजकल हम बागवानी पौध लगा सकनो और किले की यो वर्षा काल में पौध लगुना सही वक्त हूँ तो हम आप लोगों थे यो ही कून की आप लोग बागवानी के बढ़ावा दियो खूब फल फूल ना चौड़ पातन वाले पेड़ लगाओ ताकि हमारी धरती हरी भरी रहो और अब बखत है वो आज किसानवाणी कार्यक्रम संपन्न करो हमारी यो किसानवाणी कार्यक्रम आज अच्छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार तो एल मगा आगे दियो नमस्कार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी FM 14.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 7:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से सुनेंगे।

नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचारक दगड़े में कुसुमलता पिलखवाल। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थानक बालोतरा मा देशक पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र के समर्पित करो। राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल ऋषिकेश मा देहरादून जिलक 219 करोड़ रुपए हबे सकर लागतक 51 विकास परियोजनाओं लोकार्पण और शिलान्यास करो। मुख्यमंत्री को सरकारक लक्ष्य साल 2035 ताले उत्तराखंड के विकसित और श्रेष्ठ राज्य बनाण छू। हरिद्वार मा राज्यक पहली हिलांस रिटेल

0: क्रेटक उद्घाटन, स्वयं सहायता समूह श्रेणियों के मिलौल स्थायी बाजार और मौसम विभागल अगिल 24 घंटों के दौरान नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भारी द्योग ऑरेंज अलर्ट जारी करो। और अब समाचार विस्तारल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थानक बालुतरा में भारतक पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र के समर्पित करो। यह देशक ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि छु। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकारक संयुक्त प्रयास छु। प्रधानमंत्री एक जनसभा के संबोधित करते हुए कहो कि यह रिफाइनरी हजारों जाने नकली जी रोजगारक माध्यम बनल। श्री मोदी कहो कि 21वीं सदी सबू हवे ठोल ऊर्जा संकट बटी निपटना में नई भारत तक इच्छा शक्ति और उनर प्रयास सफल रही। उन्होंने कहो कि भारत हर स्तर पर बखत रहते सही निर्णय ली, स्थिति सटीक आकलन करो, प्रभावी रणनीति अपना और उपलब्ध संसाधनों का संतुलित उपयोग करो।
1: 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज ऋषिकेश में देहरादून जिलक 219 करोड़ रुपए हबे सकरक लागतक 51 विकास परियोजनाक लोकार्पण और शिलान्यास करो। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के संबोधित करते हुए राज्यपाल को कि यह अभियान लोक सेवा, सुशासन और जन कल्याणक प्रति सरकारक निष्ठा के मजबूत प्रतीक छो। उन्होंने कहा कि लोकतंत्रक वास्तविक सफलता तबे छो जब शासनक योजनाक लाभ सामाजक आखिरी छोर पर ठाड़ हर एक मनखी ताले बखत पारे पहुंचो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कहो कि सरकारक उद्देश्य केवल योजनाएं बनानी छू बल्कि उनर लाभ के आखिरी मनखी ताले पहुंचाण छू। यह भावना का दगड़े ही जन जन की सरकार, जन जन का द्वार सेवा पखवाड़ा आयोजित करी जानो। उन्होंने कहो कि राज्य सरकारक लक्ष्य साल 2035 ताले उत्तराखंड के विकसित और श्रेष्ठ राज्य बनाण छू।
2: कार्यकाल पूरा करना नहीं है बल्कि हमारा लक्ष्य एक समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना है। वर्ष 2035 तक देवभूमि उत्तराखंड को पूर्ण रूप से विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में निरंतर कार्य हो रहे हैं। आज शहर हो चाहे सीमावर्ती क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही हमारे अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए दिन रात हम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम पारंपरिक खेती के साथ दुग्ध मधु उत्पादन, आधुनिक बागवानी, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। युवाओं को अपने घर में ही रोजगार मिले इसके लिए हमारी सरकार नई स्टार्टअप नीति, एक जनपद दो उत्पाद योजना, होम स्टे योजना और सौर स्वरोजगार योजना जैसी कई योजनाओं को हमने लागू किया है।
3: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: हरिद्वार में राज्यक पहली हिलांस रिटेल आउटलेटक उद्घाटन करीगो। रीपक राज्य परियोजना निदेशक झरना कमठानल को कि यह पहल महिला सशक्तिकरण, स्थानीय उत्पादों के बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम छो। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह बाजार उपलब्ध कराण, उनर आय के बढ़ान और उनके आत्मनिर्भर बढ़ान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल छो।
4: उत्तराखंड सरकार ग्राम्य विकास विभाग का एक इनिशिएटिव है जिसमें IOCL के साथ में हमने एक MOU साइन किया है 29 जनवरी को, जिसके अनुसार जो प्रदेश में जो भी पेट्रोल पंप है IOC के, वहाँ पे हमको स्पेस दिया जाएगा जिससे कि हमारी जो महिलाओं के उत्पाद हो उनको एक अच्छा मंच मिले, उनको वहाँ पे आउटलेट मिले और वो अपने उत्पादों को वहाँ पे प्रदर्शित करके उसकी अच्छी सेल कर सके। तो इसी कड़ी में आज इसकी शुरुआत हुई है, सबसे पहले हरिद्वार जनपद में। यहाँ पे जो ये पेट्रोल पंप है भादराबाद में, यहाँ पे हमारा एक श्रद्धा CLF ग्रुप को एक ये स्पेस दिया गया है यहाँ पे, और इनके द्वारा अपना जो है आउटलेट यहाँ पे खोला गया है। तो इसका यहाँ उद्घाटन किया गया है और ये री परियोजना के अंतर्गत जो कि IFED फंडेड प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत ये पहल है। हमने ये MOU पूरे स्टेट के लिए किया है और हरिद्वार जनपद से शुरुआत है और आगे हम अन्य जनपदों में भी महिलाओं को स्पेस देने के लिए इसी तरह के आउटलेट शीघ्र खोलेंगे।
0: आउटलेटमा स्वयं सहायता समूह श्रेणियों द्वारा तैयार स्थानीय खाद्य उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद, मसाले, मिलेट आधारित खान पीनक सामान और हस्त निर्मित वस्तुएं उपलब्ध होल। यह श्रेणियों के अपू उत्पादों के बाजार में बेचने के लिए स्थायी मंच मिलोल और उपभोक्ताओं के उत्तराखंड गुणवत्ता और परम्परा बटी जुड़ी उत्पाद आसानी मिल सकल। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बद्रीनाथ धामा दानक कथित हेराफेरी मामल लक निष्पक्ष जांच करने का निर्णय ली है। सोशल मीडिया में मामला सामने आनक बाद BKTCL जांच समिति गठन ले कर हेलो। BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी बता की संबंधित कर्मचारियों ने स्पष्टीकरण मांगे गो। उन्होंने कहा कि जांच पूर्ण होने के बाद यदि कोई कर्मचारी दोषी पाई जाए तो उ खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई करी जाए।
5: में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी गण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा वो नोटिस सो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से बना दी गई है। जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: मौसम विभाग अगले 24 घंटों के दौरान नैनीताल और बागसर जिलों में भारी द्योग ऑरेंज अलर्ट कर रहो, जबकि राज्य दोहर जिलों में येलो अलर्ट जारी कर रहो। पिछले 3 दिनों बटी रुक रुक बे है रही द्योल पर्वती क्षेत्रों में बंद ग्रामीण सड़कों के खोलना काम जारी छू। वे पहाड़क खिसकनल कई मुख्य बाटले प्रभावित छन और उनर बंद खुलनक सिलसिला जारी छू। विभाग 10 जुलाई ताले राज्य में द्योग येलो अलर्ट ले जारी कर रहो। मनखियों दे मौसम पूर्वानुमान के ध्यान में रखबे ही यात्रा करण, खराब मौसम के दौरान सुरक्षित जागो पर रुकण और गाड़ गधेरों और नदी नालों बटी दूर रुणक ले निवेदन कर रो। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र सांसद अजय भट्टल लालकुआ विधानसभा के अंतर्गत ग्राम विजयपुर गोलापार में प्रस्तावित विजयपुर पहाड़पानी मार्ग स्थली निरीक्षण करो। यो दौरान श्री भट्टल अधिकारियों के बाट निर्माण कार्य में तेजी लाणक और जनहित बटी जुड़ी विकास कार्यों के प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री भट्टल क्षेत्रवासियों और ग्रामीणों से मुलाकात कर बेर उन समस्याओं और सुझावों के सुनो। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि
6: यहाँ के लोगों की जो डिमांड थी वो डिमांड पहली बार पूरी हुई है। लगभग 4.25 करोड़ से ये आज यहाँ पर सड़क आ रही है। इसमें कॉजवे पहले हम बना रहे हैं, निकट भविष्य में बड़ा पुल बनाएंगे। जैसे सूर्या नाला पर भी पुल बन रहा है, यहाँ हमने पहले भी कई पुल बनाए हैं। धीरे धीरे हर व्यक्ति की, हर गांव में रहने वाले नागरिक की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा विजन है, उसके आधार पर हम सब लोग काम करते हैं। क्षेत्रीय जनता की जो डिमांड से आती है, जनप्रतिनिधि हम लोग सांसद हों या फिर हमारे MLA हों, हम सब लोग उसको आगे बढ़ाते हैं।
0: आखिर में मुख्य समाचार आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बालोतरा में देशक पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र के समर्पित करो। राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल ऋषिकेश में देहरादून जिला 219 करोड़ रुपया भी सकल लागत तक 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला धरी। मुख्यमंत्री को सरकारक लक्ष्य साल 2035 ताले उत्तराखंड के विकसित और श्रेष्ठ राज्य बनाना छो। हरिद्वार में राज्यक पहली हिलांस रिटेल आउटलेटक उद्घाटन, स्वयं सहायता समूह श्रेणियों के मिलोल स्थायी बाजार और मौसम विभाग अगले 24 घंटों दौरान नैनीताल और बागसा जिलों में भारी दियोग ऑरेंज अलर्ट जारी करो। यो का दगड़ी ही कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचार यो अंक इति के खत्म हूँ। नमस्कार।
7: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा के

आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। हम आपको सुना रहे हैं यंगिस्तान फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में। कौशल मुनि के लिखे इस गीत को संगीत दिया है कुमार ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं चलते चलते फिल्म से अभिजीत की आवाज़ में।

0: चलते चलते फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत की आवाज़ में, जावेद अख्तर के बोल थे, संगीत दिया था आदेश श्रीवास्तव और जतिन ललित ने। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय आईटीआई से।
2: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
1: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
2: डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत आईटीआई में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
1: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय आईटीआई में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
2: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास

0: सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। दबंग 3 फिल्म से गायक कलाकार हैं सलमान अली और मुस्कान। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है साजिद वाजिद ने।

दबंग 3 फिल्म के इस गीत के बाद आइए आप सुनते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का गीत आतिफ असलम की आवाज़ में। गीत के बोल इरशाद कामिल के हैं, धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। लीजिए प्रस्तुत है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के 103वें स्थापना दिवस पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।
1: दिनांक 4 जुलाई 2026 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा का 103वां स्थापना दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संजय कुमार माननीय अध्यक्ष कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल नई दिल्ली वर्चुअल रूप से रहे। विशिष्ट अतिथि थे डॉक्टर अवलोकितेश्वर सेन, पूर्व मुख्य वैज्ञानिक CISR NCL पुणे। कार्यक्रम का संचालन किया डॉक्टर कामिनी बिष्ट व निधि सिंह ने संयुक्त रूप से किया। प्रस्तुत है कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। कार्यक्रम के आरंभ में संस्थान की उपलब्धियों को बताते हुए आप हैं संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत।
2: अगर हिस्ट्री देखें तो 1924 से लेकर के ये संस्थान अलग अलग माइलस्टोन इसके हैं। 36 में ये परमानेंटली यहाँ शिफ्ट हुआ। 1943 में इसका मैंडेट जो बेसिक साइंस से आपके कृषि की तरफ आया, क्योंकि बंगाल में उस समय बड़ी भुखमरी फैल गई थी। 2001 में और 2008 में इस संस्थान को अखिल भारतीय स्तर पर सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग आईसीआर

0: इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला। 2015 में हमें मुक्तेश्वर में 5 हेक्टेयर लैंड मिली जिसमें हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग स्टेशन है, और 2018 में जो इस इंस्टीट्यूट के साथ में बहुत सारी पहली चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ये नीचे जो अचीवमेंट की टाइमलाइन दिखाई, जैसे पहला मेज हाइब्रिड यहाँ से डेवलप हुआ, पहला प्याज का हाइब्रिड यहाँ से डेवलप हुआ, जो ड्यूल पर्पज वैरायटी चारा और गेहूं देने वाली द्विदेशी प्रजाति जो है वो यहाँ से 1986 में विकसित हुई, जो लॉन्ग डे ऑनियन की प्रजाति जो अभी तक चल रही है 1991 में, फिर जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन आया 2007 में जब अरहर की वैरायटी और मिलेट थ्रेशर और पैडी थ्रेशर डेवलप हुआ। 2008 में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इस संस्थान के द्वारा प्राप्त किया गया कि जो मॉलिक्यूलर मार्कर सिलेक्शन के द्वारा जो पहली देश की पहली प्रजाति VLQPM9 वो जारी की गई। उसके बाद जो काला जो भट होता है उसकी वैरायटी और स्याही हल एक पूरा टोटली मेटेलिक प्लाव है 2017 में पहला पेटेंट मिला। 2020 में जो पब्लिक सेक्टर के थ्रू जो चेरी टोमेटो की पहली प्रजाति देश के अंदर, और 2021 में जो सफ़ेद मंडवा की प्रजाति उत्तराखंड के लिए, और 2024 में एक और अचीवमेंट हुआ जो ऐसी मटर की प्रजाति डेवलप की गई जिसको कि पूरी फली आप खा सकते हैं, फली छीलने का ज़रूरत नहीं है। और 2025 एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहा जिसमें कि 2 ऐसे अचीवमेंट आए जो अगेन कंट्री में फर्स्ट हैं। इसमें एक प्रजाति VL त्रिपोशी यहाँ से निकली जिसमें आपका QPM और प्रोवाइटमिन ए और लो फाइटेट, और दूसरी प्रजाति VL सुपोसिता जिसमें QPM के साथ में जिंक की मात्रा बढ़ी। KVK हमारा है चिनाली सोड़ वाला, उसको बेस्ट KVK अवार्ड मिला। तो ये देखें तो ये मैंडेट है, ये बहुत सारे QRT और RAC के लाइव स्टॉक को जोड़ने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना सहमति दी है, और जल्दी ही इस पर कुछ काम तो शुरू हो गया, कुछ और काम इस पर शुरू होगा। तो ये देखें तो ये मैंडेट है, ये बहुत सारे QRT और RAC के रिकमेंडेशन के फलस्वरूप जो है इसमें पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर, एक प्रजाति VL लोफी है जिसमें लो फाइटेट कंटेंट है, और VL पोशिका जो है ये QPM मेज की प्रजाति है, एक स्वीट कॉर्न की प्रजाति आई है जो VL मधुबाला के नाम से लाइव स्टॉक को जोड़ने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना सहमति दी है, और जल्दी ही इस पे कुछ काम तो शुरू हो गया, कुछ और काम इस पे शुरू होगा।
1: आप हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद जोशी।
2: बोशी सेन जी देखिए द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था, आज उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। अभी आदरणीय निदेशक महोदय ने अपने व्याख्यान में तमाम प्रजातियों का वर्णन किया जो कि संस्थान के कुशल वैज्ञानिकों उनके पूरे स्टाफ की मेहनत का प्रतिफल है कि ये संस्थान नई नई प्रजातियों को देश को दे रहा है, और बहुत अच्छी प्रजातियां यहां पर तैयार की जा रही हैं जिससे हमारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं और दूर दूर तक संस्थान का नाम फैल रहा है। अभी जो हमने यहां का प्रस्तुतिकरण देखा है उन सब में केवल यहां ही नहीं बल्कि दूर दूर तक आपके कामों की प्रशंसा हो रही है, और चाहे अरुणाचल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल हो। अपने वक्तव्य को यहाँ पर विस्तार नहीं करूँगा, आप हर बार आमंत्रित करते हैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि वैज्ञानिक लोग जो हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन प्रकृति जो है वो थोड़ा सा अपना वर्चस्व दिखा रही है। अभी जैसा कि जलवायु परिवर्तन का मामला है, उस जलवायु परिवर्तन का भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारे उत्पादन पर पड़ता है। कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहाड़ में भी इस समय गर्मी बढ़ने लगी है। AC पहले कभी नहीं दिखाई देता था पहाड़ में, अब सब जगह AC लगने लगे हैं। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है इससे निपटने के लिए भी हमारे वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आने वाली फसलें कैसी होंगी, जलवायु का कितना प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा गर्मी जब होगी तो उससे उत्पादन कितना प्रभावित होगा, इन सब चीज़ों पर विचार करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि वैज्ञानिक इसका कोई न कोई निदान निकालेंगे कि ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा बरसात होने पर फसलों को हम कैसे संभालें, कैसे उस पर उनका प्रतिकूल असर न पड़े, इस चीज़ को हम कैसे साबित करें, ये वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मैं समझता हूँ कि

0: पाकिस्तान इस चुनौती का बहुत अच्छी तरह सामना करने में सफल होगा और वैज्ञानिकों की मेहनत, उनके शोधार्थियों के का काम जो भी है वो इसका कोई ना कोई तरीका निकालेगा ताकि ये चुनौती दूर हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए संस्थान के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: संस्थान के बारे में बतलाते हुए आप हैं पूर्व निदेशक विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान डॉक्टर जेसी भट्ट।
2: तो मुझे अत्यंत खुशी है और कभी कभी जब नहीं आ पाता हूँ, बाय द वे नहीं आने का है, तो अंदर से एक वो रहता है कि पिक्चर बन जाती है दिमाग में कि ये हो रहा होगा। तो ये है, बहुत अच्छे पेपर्स यहाँ पर बताए, प्रगतिशील किसानों को भी का भी जिक्र हुआ, उन्होंने जो अच्छी बातें वहाँ पर की हैं उन सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। वैज्ञानिकों को भी, रिटायर्ड कर्मचारियों को भी शुभकामनाएं देता हूँ जो होने वाले हैं, और जो प्रगतिशील किसान, और बड़ी अच्छी बात आपने बताई PPVR, इसको हम बहुत ट्राई कर रहे थे, नहीं हो पाया था। प्लांट प्रोडक्शन एंड वेराइटीज़ जो एक्ट है उसमें एक जो जीनोम अवार्ड, जो शायद जीनोम अवार्ड मिला होगा, तो वो बहुत अपने आप में प्रतिष्ठित है। और आप आपस में केवल आपको तक अवार्ड नहीं है, उस इलाके में भी आपको आगे चीज़ें बढ़ानी हैं। और प्रगतिशील किसानों से मैं निवेदन करूंगा कि वो जो चीज़ प्रगतिशील कर रहे हैं वो अपने आसपास के लोगों को भी बताएं, उनको बढ़ाएं। और इस अवसर पर मैं प्रोफेसर बोसी सेन साहब, मिसेस गर्टूड इमर्सन सेन, दोनों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि उनके ग्रेट ग्रैंडसन यहाँ पर प्रोफेसर सेन साहब यहाँ पर आए हैं, उनके विषय में बताने के लिए। बहुत अच्छा लेक्चर आप लोग सुनेंगे और ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक प्रोफेसर सेन का, क्योंकि नए हमारे साथी हैं, कई लोग पुराने भी हैं, प्रोफेसर सेन साहब ने तो सर जेसी बोस के साथ काम किया था करीब, ये जैसा रिकॉर्ड्स में है, तो एक भी दिन छुट्टी नहीं ली और 12 वर्ष तक काम किया। उसके बाद जो संस्थान उन्होंने खोला, उस संस्थान में वो बेसिकली सेल पर काम करते थे, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट। परंतु बंगाल के अकाल, जो कि 42-43 का अकाल फेमस है बंगाल का, तो तब उनके दिमाग में परिवर्तन आया कि नहीं, हमने फसलों पर काम करना है, लोगों का पेट पहले भरना है, भूख, विवेकानंद जी का जो सब भूख से कैसे निवारण किया जाए वो उनके दिमाग में हमेशा कोहता रहता था। तो उस पर तब ये काम फसलों में यहाँ 1942-43 के बाद प्रारंभ हुआ। और उसका असर ये हुआ कि सबसे पहले देश की जो मक्का की किस्म, अभी डॉक्टर निदेशक महोदय ने अभी जिक्र किया था, VL मक्का 54, सबसे पहले देश की जो संकर मक्का है और हाइब्रिड वैरायटी, वो इस संस्थान से रिलीज हुई। इसके अलावा अनेक चीज़ों पर उन्होंने काम किया और फसलों पर काम करने को आगे बढ़ाया, धान की किस्में आयातित की, गेहूं का किया, सभी चीज़ों में उन्होंने बहुत काम किया। और करीब करीब 1974 से ये ICR में आया, तो उनको लोगों की भी फिक्र थी कि उनको एक सिस्टम में कैसे वो किया जाए, तो पन्नगर में जाने का था, नहीं दिया। फिर ICR में प्रोफेसर स्वामीनाथन के सहयोग से, उनके ही माध्यम से ये ICR में गई ये लेबोरेटरी। तो उस समय फाउंडेशन थी, 1974 में बहुत चीज़ें नहीं थी, यहाँ पर लिमिटेड लोग थे। 75-76 में जा करके ARS एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस प्रारंभ हुई प्रोफेसर स्वामीनाथन के निर्देशन में, और तब जा करके 1976 से वैज्ञानिक आने यहाँ प्रारंभ हुए। कई लोगों को जानकारी नहीं होगी इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। 76 से वैज्ञानिक यहाँ आए, शुरू में 4-5 लोग आए, फिर 4, फिर 5, ऐसे आते रहे। और वैज्ञानिक, हालांकि यहाँ के जो पूरा वैज्ञानिकों की पूर्ति है वो तो नहीं हो पाती है, मैक्सिमम मेरे ख्याल से 42-43 तक आउट ऑफ 60 लोग यहाँ पर रहे हैं, और अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, शायद ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं। परंतु फिर भी उन चीज़ों के होते हुए भी इतना काम, इतने फसलों में काम हो रहा है, नई नई चीज़ों पर भी अब काम हो रहा है, हींग पर काम, जैसे बताया कि हींग पर काम हो रहा है, ये नहीं होता था मेरे समय तक, और हमारे समय शायद उसके एक आगे साल तक भी नहीं हुआ, परंतु अब हो रहा है हींग पर काम। इसी तरीके से क्यूनोवा पर काम चल रहा है, और कई एक नई चीज़ों पर। और एक बड़ी अच्छी बात आपने बताई, मेरे दिमाग में वो बहुत समय से था, वैल्यू एडिशन ऑफ बाई मिक्सिंग डिफरेंट क्रॉप वराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स, यू कैन से, जैसे 4-5 आपने जिक्र किया कि हम ये और ये मिला दें, तो उसके क्या मल्टीग्रेन वाला जो चल रहा है आजकल कंसेप्ट, वो वैल्यू एडिशन एक प्रकार से है, और वो इनकम जनरेशन का साधन भी, लोग उसको अगर करेंगे। मार्केट में देखिए पॉपकॉर्न क्या है, एक मुट्ठी आप पॉपकॉर्न से 100 रुपये कमा सकते हैं, अगर पॉपकॉर्न ऐसा बेचेंगे तो नहीं कमा पाएंगे।
1: आप हैं गोविंद बल्लभ पंत, राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, कोसी कटारमल।

0: अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर आईडी भट्ट।
1: पिछले एक साल में जिस प्रकार से प्रगति करी है, कितनी सारी वैरायटी उन्होंने विकसित करी हैं, कितने सारे पब्लिकेशंस उन्होंने दिए हैं, कितने सारे पेटेंट उन्होंने लिए हैं, और सबसे बड़ी बात है जो एक्सेशन है जो जर्म प्लाज्म में करीब 18,000 के आसपास उन्होंने जर्म प्लाज्म किया इकट्ठा किया है, सो वो अपने आप में एक ग्रेट अचीवमेंट। दूसरा जो अचीवमेंट जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए, उत्तराखंड के लिए, जो उन्होंने कहा कि 42-99% कंट्रीब्यूशन जो दिखाता है ये संस्थान, इट मींस कि संस्थान का अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है कि अगर 99% उसका कंट्रीब्यूशन हिल एग्रीकल्चर में है तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी संस्थान के लिए।

0: पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए, उत्तराखंड के लिए, जो उन्होंने कहा कि 42-99% कंट्रीब्यूशन जो दिखाता है ये संस्थान, इट मीन्स कि संस्थान का अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है कि अगर 99% उसका कंट्रीब्यूशन हिल एग्रीकल्चर में है तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी संस्थान के लिए। तीसरा, जो एक्सपेरिमेंट सर लोगों ने किए हैं, किसानों को सुझाव दिए हैं कि किस प्रकार से, जैसे उन्होंने 52 साल एक स्टडी करने के बाद उन्होंने दिखाया था कि केवल NPK ही सुटेबल नहीं है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए या सॉइल फर्टिलिटी बनाने के लिए, तो मैं तो कहूँगा रेस्टोरेशन के लिए बेसिकली। सो उनका एनालिसिस था, उनके जो ऑब्जर्वेशन थे, रिकॉर्ड थे, तो उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि NPK अलॉन्ग विद द फार्म यार्ड मैनुअर जो FIM है, अगर हम उसको डालें तो हमारा जो गुणवत्ता है, सॉइल की गुणवत्ता हो गई या हमारा प्रोडक्शन हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट है हमारे किसानों के लिए, हमारे हिल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तीसरा अचीवमेंट जो उन्होंने किया था कि उन्होंने हींग, जैसे हींग संजय कुमार सर बैठे हैं तो संजय कुमार सर ने IHBT से लागू किया था, उन्होंने वहाँ पे इनिशिएट किया था हींग का कल्टिवेशन। अब उसके बाद से मुझे लगता है कि विवेकानंद इस संस्थान में ही हींग पे काम शुरू हुआ है, तो ये अपने आप में एक नया इनिशिएटिव है जो हो रहा है, सर के निर्देशन में ही हो रहा है। मुझे, मैंने सर का सुना था कि हींग पे सर ने काफ़ी शुरुआत, इंडिया में मतलब शुरुआत सर ने ही की थी हींग की। वैली चेन जो मेडिसिन प्लांट्स का कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है सर, जो इंटीग्रेट कर रहे हैं आप एग्रीकल्चर एंड मेडिसिनल प्लांट्स। तो मेडिसिन, क्योंकि अगर हमें कल्टीवेशन में लाना है मेडिसिन प्लांट्स, तो उसके लिए एग्रीकल्चर सिस्टम हमें एक चाहिए, तो दोनों का इंटीग्रेशन अपने आप में एक बहुत अच्छा एक प्रयास है और एक अच्छा अचीवमेंट है जिस प्रकार से वैली चेन हम लोगों ने बनाया है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो आज की डेट में एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल फूड की बात कर रहे हैं, तो उसके जो हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, ट्रेडिशनल क्रॉप्स को उन्होंने इकट्ठा करके, ट्रेडिशनल क्रॉप्स को मिक्स करके, और कुछ नए जो चॉकलेट्स अभी उन्होंने खिलाई या डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं, वो अपने आप में हमारे जो हिल एग्रीकल्चर है उसके लिए बहुत बढ़िया एक प्रयास है। जो TSP प्रोग्राम के तहत जो हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके साथ में अगर जुड़े हैं विभिन्न गांवों में कैपेसिटी बिल्डिंग, सेंसिटाइजेशन और उसके कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं उनके ट्रेडिशनल क्रॉप्स की, तो वो अपने आप में, क्योंकि जो हमारे जो एक्सेशन है, जो हमारा ट्रेडिशनल क्रॉप है, कल के दिन में वही हमारी धरोहर है, क्योंकि वो जो हमारी क्रॉप्स है वो पहाड़ों में अडेप्ट हैं, वो टोरिकली बेसिकली हम लोग उनको यूज कर रहे हैं, तो जो क्लाइमेट चेंज हो या किसी भी प्रकार की इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो, दे आर मोर रेजिलियंट देन द हाइब्रिड अगर हम लोग वहाँ पे लगा रहे हैं, तो उनको बचाने का एक बहुत अच्छा प्रयास है कि उनको हमें बचाया जाए। इसके अलावा जो रोड मैप सर ने दिखाया कि किस प्रकार से हम आगे को काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, विभिन्न संस्थानों के साथ में कोलैबोरेट करके विभिन्न जो नए एरिया हैं उनमें काम करने के लिए, तो सर वो अपने आप में अच्छा एक प्रयास है। और मुझे लग रहा है कि संस्थान अगर इसी प्रकार से कार्य करता रहेगा तो जो हमारा हिमालयी क्षेत्र में जो आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा वो करीब 25% जो आपने बताया था उससे बढ़ करके वो 99% जो उत्तराखंड के लिए है वो जा सकता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को एक बार पुनः बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से इस प्रकार से यहां की प्रगति है, संस्थान की प्रगति है, उसको दिखाया, और जो प्रयास हैं बेसिकली हिमालय को, अगर हिमालयन एग्रीकल्चर को बचाने के लिए, वो आने वाले भविष्य में ज़रूर सार्थक सिद्ध होंगे। इसी के साथ बहुत बहुत बधाई है एक बार फिर से, धन्यवाद।
1: वर्चुअली माध्यम से संबोधित करते हुए आप हैं मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय कुमार, अध्यक्ष कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल नई।
2: आज इस मंच पर स्थानीय पूर्व निदेशक गण हैं और जो पूर्व वैज्ञानिक गण भी हैं वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं, और इसे मैं विकास की बहुत सुंदर परंपरा मानता हूँ कि ये अपने वर्तमान का उत्सव मनाते हुए अपने अतीत को नहीं भूल, और वास्तव में कोई भी संस्था तभी महान होती है जब वो अपनी विरासत को और अपने निर्माताओं को अपना संपूर्ण सम्मान देते हैं, और इसीलिए आज मैं सभी पूर्व निदेशकों को, सभी पूर्व वैज्ञानिकों को तथा किसानों को, सभी को नमन भी करता हूँ, क्योंकि उनके अथक परिश्रम का कमाल है कि आज हम विकास को जिस अवस्था में देख रहे हैं। और खासकर अल्मोड़ा की जब हम बात करते हैं तो ये तो विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ है,

0: मान सकते हैं कि इसमें जितनी ऊर्जा और जो नई दृष्टि है उसमें स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे याद पड़ता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि ये जितने भी पर्वत हैं ये हमारी सभ्यता की सर्वोत्तम स्मृतियों से जुड़े हुए हैं। तो ये भी बहुत उन्होंने एक बढ़िया बात लिखी थी। और जब भी मैं स्वामी विवेकानंद जी को याद करता हूँ तो एक बात मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगती है और वो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा, शायद आप सब जानते भी होंगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की बातें ऐसी हैं जो जितनी बार सुनी जाए उतनी ही कम है। उन्होंने एक बार कहा था कि समस्त शक्तियाँ तुम्हारे भीतर निहित हैं। मैं उसको हिंदी में बता रहा हूँ, उन्होंने अंग्रेजी में बोला था, लेकिन जो बात है वो ये थी कि जितनी भी शक्तियाँ हैं वो तुम्हारे भीतर है और तुम कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। इस सत्य पर विश्वास करो और स्वयं को कभी दुर्बल मत समझो। और हमेशा वो कहते थे कि उठो और अपने भीतर इस निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करो। मैं जब आपका संबोधन सुन रहा था तो मुझे कुछ चीजें बड़ी अलग से उभर के लगी जो मुझे लगा कि शायद मुझे शेयर करनी चाहिए सबके साथ। सबसे बड़ी किसी संस्थान की खासियत ये होती है कि वो किसी भी राष्ट्र को प्रथम क्या देता है। देखिए, रेगुलर चीज हर आदमी देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि किसी राष्ट्र को कोई भी संस्थान प्रथम क्या देता है। और जब मैं आपकी बात सुन रहा था तो फसल सुधार के बारे में आपके संस्थान की राष्ट्र के लिए अनेक उपलब्धियां थी, चाहे आपकी मेज हो जिसको आपने VL मक्का 54 का नाम दिया है, चाहे पहली प्याज की वैरायटी हो, चाहे आपका जल्दी पकने वाला बेबी कॉर्न हो, चाहे आपके पास ड्यूल पर्पस हीट हो, चाहे आपका चेरी टोमेटो हो, चाहे आपका पॉट पीस जिनको आपने कहा कि आप बट के दाने के साथ खा सकते हैं, चाहे आपकी वाइट ग्रेन फिंगर मिलेट वैरायटी हो, तो ऐसी आप हम जो भी चीज़ देखते हैं ये राष्ट्र की प्रथम उपलब्धियाँ हैं और इसका हमें बहुत गौरव होना चाहिए। आपकी फिर मैंने और दूसरी जो प्रथम उपलब्धियाँ देखी वो आपकी थी पोषण सुरक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि आपके पास जिसकी आजकल बहुत कमी है हमारे देश में, जिसमें आपने जैसे QPM मेज की बात करी थी, आपने फिर उसी तरीके से ऐसे मेज की बात करी थी जिसके अंदर फाइटेड कंटेंट कम था, आपने उसी तरीके से ऐसे मेज की बात करी थी जिसके अंदर प्रो विटामिन ए था, आपने ऐसे मेज की बात करी थी जिसके अंदर तीन किस्म के अलग अलग चीजें थी, चाहे वो नाइसिन हो, ट्रिप्टोफैन हो, या फिर आपका प्रो विटामिन ए हो, चाहे आपकी बिस्किट पारेगी वाली चीजें। तो मुझे लगता है कि पूरे जितने भी हमारे कर्मचारीगण हैं, पूरा स्टाफ जो है विकास का, उसको इस बात के ऊपर बड़ा गर्व होना चाहिए। मैंने एक बात और नोट करी, आप खाली साइंस के साथ साथ आपने इन फसल सुधार के साथ साथ आपने कई प्रौद्योगिकी भी दी जिन्होंने पूरे जीवन को बदल दिया। जैसे आपने विवेक थ्रेशर का आपने जिक्र किया है जो हमारे विवेक को कठिन परिश्रम थोड़ा उनका कम कर देती है, आपने धातु के हल का जिक्र किया, पॉली हाउस प्रौद्योगिकी का जिक्र किया, इस तरीके की कई सारी आपकी टेक्नोलॉजीज हैं, ये भी फर्स्ट थी। और फिर सबसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो क्लाइमेट चेंज के बारे में है, जो कुछ ज़्यादा जरूरत है वो चाहिए हमें यहाँ का जर्मप्लाज्म। और आपके तक बड़े जान के मुझे खुशी हुई, करीब 18,000 के आसपास जर्मप्लाज्म एक्सेशन है जो कंजर्व है। और दूसरा, आपने कई सारी वैरायटीज दी, कई सारे आपने ब्रीडर सीड दिए, मैं उनके नंबर तो नहीं बताना चाह रहा, वो आप सब लोगों को पता है, लेकिन मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा क्योंकि लोगों को इसके ऊपर बड़ा गर्व और गौरव होना चाहिए।
1: आप हैं मुख्य अतिथि स्वामी द्विवेशानंद जी महाराज।
2: तो ये जो संस्था है, ये संस्था भी आज यही अंत नहीं है, 103 है, ये 14,000 तक चलेगा, हम तो यही सोचते हैं। ये संस्था केवल पार्वतीय क्षेत्र के लिए ही नहीं है, सारा भारत के लिए, विश्व के लिए एक दिन आगे बढ़ के प्रमुख स्थान पर स्थान लेंगे, ये मेरी शुभकामना है। आज के एक अतिथि डॉक्टर अवलोकितेश्वर सेन जी, जो हमारे परम भक्त और इस संस्था के संस्थापक वशिष्ठ सेन जी के परिवार के है, उनके ग्रैंडसन है, उनको मैं हमारा नमस्कार जान देता हूँ। उन्होंने इतना दूर से आए हैं पुणे।

0: से और रामकृष्ण कुटीर के साथ उनके अच्छे संबंध है। अभी जो राम महाराज के एक स्मृति ग्रंथ निकला उसमें उन्होंने वशिष्ठ सेन और राम महाराज के जो संवाद हैं उनकी भी उन्होंने बहुत महत्व प्रदान किया। इनके प्रयत्न से स्थापित हुए है और वो भी ये आश्रम ये संस्था के साथ जुड़े हैं, उनको मेरा नमस्कार। मेरा दुर्भाग्य है 1970 में पहली बार जब मैं अल्मोड़ा आए तो मेरी इच्छा थी वशिष्ठ सेन जी से मिलने के लिए, हम आए भी थे लेकिन उनकी अस्वस्थता के कारण वो मिल नहीं पाए। तो उनका ये मेरे को एक स्मृति है। उस समय गुटरू सेन, मिसेस गुटरू सेन वो भी यही थे, वो भी नहीं मिल पाए। ये संस्था विवेकानंद पार्वती कृषि अनुसरण संस्था किसके हाथ से कब से शुरू हुआ? स्वामी विवेकानंद जी के मानस कन्या थे निवेदिता, लंदन से स्वामी जी उनको आमंत्रित किया भारत के महिलाओं को शिक्षा देने के लिए। आज आप कल्पना कर सकते हैं जब स्वामी विवेकानंद 1898 में निवेदिता को लेकर के यहाँ अल्मोड़ा आए हुए थे और उनको आशीर्वाद किए थे कि तुम भारतीय बन जाओ, तुम आयरिश और लंदन को ब्रिटिश को भूल जाओ। तो निवेदिता ने अक्षर अक्षर उसको पालन किया और अपना खून एक एक बूंद भारत के लिए परिणत किया। ये निवेदिता जी ने वशिष्ठ सेन को अपने साथ में लेकर के पहली उनके पास लेके गए थे और इसके बाद हम देखते हैं सिस्टर क्रिश्चियन ये भी वशिष्ठ सेन के साथ में थे। वशिष्ठ सेन उनके बहुत सेवा भी किए, उन जो बीमार थे आखिरी समय में वशिष्ठ सेन बहुत सेवा किया। तो उनके हाथ ले धर पकड़ के ये संस्था शुरू हुई है और हम ये देखते हैं सिस्टर निवेदिता और क्रिश्चियन इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और वशिष्ठ सेन दीक्षा लिए थे स्वामी विवेकानंद जी के एक शिष्य, प्रमुख शिष्य, प्रथम शिष्य जिन्होंने ये हाथरस रेलवे के असिस्टेंट रेलवे स्टेशन मास्टर थे। उनके स्टेशन में स्वामी जी बैठे हुए थे, स्टेशन मास्टर आकर के उनको मिले और अपना घर लेके गया। फिर उन्होंने निश्चय किया ये नौकरी छोड़ करके स्वामी जी के शिष्य बन करके साधु बन जाएंगे और आखिर में बेलूर मठ पे पहुँच गए। स्वामी जी के साथ में ही रामकृष्ण मिशन में इतना पैसा नहीं था जो सब स्वामी जी लोगों का जो बीमार पड़े उनका ट्रीटमेंट करे, दवा का पैसा या आहार का ले जो पथ जुए ये भी मिला दिला नहीं सकते थे। वशिष्ठ सेन अपने पास रख करके उनका सेवा किया और ये संस्था स्वामी जी के जब तक ये पथ पर चलेंगे तो ये भी देश के अवदान के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान में रहेंगे।
1: सस्तम पद्म भूषण प्रोफेसर विशी सेन स्मृति व्याख्यान देते हुए आप हैं डॉक्टर अवलोकितेश्वर सेन, भूतपूर्व मुख्य वैज्ञानिक CSIR NCL पुणे।
2: My first recollection is it goes back to 1965 when they visited us in when we were staying in NPL quarters. My father had just returned from UK and he was in the process of buying pots and plants when they suddenly dropped over it at our place. We were delighted to see him. But then, in the end, he would write us letters. I would also correspond with him quite often. In Nandadu's life, let's go through the signposts, the important positions, and I had talked about Prarabdha, or Divine Grace. Now, this will give you a list of his important turning points in his life. 1899, his father passed away, Rameshwar Sen. He was a 12-year-old kid. He ran to his sister's place in Bakura, and from there that sister sent him to Ranchi for studies. Rameshwar Sen was a scholar, and Boshi Sen was very much inspired by him. He did not want his image of his father to be put down. He wanted to study. So he did his schooling in Ranchi, and further later on he did his he was enrolled in Xavier's College in Calcutta. 1909, he met Swami Sadananda for the first time, and that was an interesting meet. A friend of his, Bibhuti Ghosh, childhood friend, told him, there's an old Swami, would you like to meet him?

0: नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर अपने को-होस्ट शक्ति सिंह के साथ मैं नवीन सक्सेना। नमस्कार शक्ति।
1: नमस्कार नवीन।
0: शक्ति, खेल प्रेमियों और विशेषकर क्रिकेट प्रेमियों की नजरें आज उस शख्स पर थी जो इतिहास रचने जा रहा था, और उसने आज कर भी दिखाया जब 145-46 की स्पीड से आ रही उस तेज तर्रार गेंद को उसने बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और इंग्लैंड के जॉफ्री आर्चर को बता दिया कि ये बल्ला रुकने वाला नहीं है। वैभव सूर्यवंशी।
1: बिल्कुल नवीन, आज की पहली खबर है वैभव सूर्यवंशी। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए हैं। आज उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया दूसरे T20 मुकाबले में।
0: और वही महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में कल लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होंगी। और शक्ति, क्रिकेट में ही अब एक और इतिहास लिखा जाएगा जब भारतीय बधिर महिला क्रिकेट टीम आने वाले दिनों में श्रीलंका का दौरा करेगी।
1: बिल्कुल, क्रिकेट के बाद नवीन बात करते हैं फुटबॉल की, जहां फीफा फुटबॉल विश्व कप के मुकाबले अब प्री क्वार्टर फाइनल की स्टेज में पहुंच गए हैं और आज कनाडा का सामना मोराको से और पराग्वे का सामना फ्रांस से होगा। इस पर भी हमारी नजर रहेगी।

0: 50 फुटबॉल के बाद बात स्क्वैश की करेंगे, जहां बहुत अच्छी खबर हमारे पास आ रही है। भारत की तन्वी खन्ना ने PSA चैलेंजर्स टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है।
1: जी नवीन, आपने कोर्ट की बात की तो बात होगी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के कोर्ट की भी, जहां आज कई मुकाबले खेले जा रहे हैं जिसपे हमारी नजर रहेगी।
0: स्पोर्ट्स स्कैन की शुरुआत क्रिकेट से। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मैनचेस्टर में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।
1: जी नवीन, और भारत ने इस समय ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 5 विकेट खोकर 160 रन बना लिए थे। भारतीय टीम में आज कुछ बदलाव किए गए और संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।
0: सुनते हैं मुकेश की ये खास रिपोर्ट।
2: लगातार अपनी करिश्माई बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर उतरते ही 15 वर्षीय वंडर बॉय ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इसमें सबसे खास है महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का 37 वर्ष पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड का टूटना। सचिन ने नवम्बर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची में जब अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, तब उनकी उम्र केवल 16 वर्ष 205 दिन थी। वे तब से भारत के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने रहे हैं। लेकिन वैभव ने आज केवल 15 वर्ष और 99 दिन की आयु में ये कीर्तिमान स्थापित कर लिया। वैभव IPL और घरेलू क्रिकेट में पहले ही सबसे कम उम्र में खेलने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। IPL के हालिया सीजन में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए वैभव ने 237 के स्ट्राइक रेट के साथ 776 रन बनाए हैं। इसके साथ ही वैभव IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने केवल 35 गेंद में शतक जड़ा है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: शक्ति, आज क्रिकेट प्रेमियों का वो इंतजार खत्म हो गया जो हमें आयरलैंड से लगातार क्रिकेट प्रेमियों की एक जिज्ञासा थी कि कब सूर्यवंशी मैदान में उतरेंगे, कब कोर्ट में उतरेंगे और कब पहला छक्का उनके बल्ले से हमें दिखाई देगा, और ऐसा उन्होंने कर भी दिखाया।
1: जी बिल्कुल, आज जब तिलक वर्मा ने उनको अपनी डेब्यू कैप सौंपी तो वो जो उनके चेहरे पे इमोशंस थे वो साफ बता रहे थे कि ये इंतजार सिर्फ हमारे जहन में नहीं था, हमारे मन में नहीं था, इंतजार शायद वैभव को था, उनके बल्ले को था। और गेंद जब जोफ्रा आर्चर की बाउंड्री पार गई है तो शायद सारे जवाब मिल गए।
0: 140 की स्ट्राइक रेट से वो खेले, हालांकि केवल 10 बॉल ही खेल पाए हैं, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी उसमें एक 15 साल का लड़का 146 की स्पीड से खेलता है, 10 बॉले खेलता है, 14 रन बनाता है और छक्के से शुरुआत करता है।
1: जी बिल्कुल, और शायद दर्शक यही देखने आए थे, 2 छक्के लगे, लेकिन कह सकते हैं नवीन ये अभी ट्रेलर है और एक बहुत बड़ी फिल्म बाकी है।
0: 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों में शामिल हुए थे वैभव सूर्यवंशी।
1: और बिल्कुल, और इसके एक साल बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में डेब्यू किया था मात्र 13 साल की उम्र में नवीन।
0: और अगर IPL की बात करें तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाकर IPL का इतिहास भी रचा था और सबसे तेज भारतीय शतक भी उन्होंने बनाया था।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर।
0: बिल्कुल, और ऐसे ही घाव करने के लिए उन्हें भारतीय टीम में शामिल भी किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि और तमाम खेल प्रेमियों की तरफ से उम्मीद करते हैं कि भारत आज का मैच शायद जीतेगा और अगले मैच में वैभव और तेज तर्रार खिलाड़ी की तरह सामने आएंगे।
1: जी बिल्कुल,
0: बात महिला क्रिकेट की करते हैं। शक्ति, क्रिकेट की दुनिया में अब एक और इतिहास लिखा जाएगा जब भारतीय बधिर यानी डेफ महिला क्रिकेट टीम इस सप्ताह श्रीलंका का दौरा करेगी और अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलेगी। ये दौरा बधिर महिला टीम का अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में पदार्पण होगा।
1: जी नवीन, 5 मैचों की इस ऐतिहासिक T20 अंतर्राष्ट्रीय बधिर टीम की कप्तानी काजल धवन करेंगी, जबकि निदा जबी शेख उप कप्तान होंगी। और भारतीय महिला डेफ क्रिकेट टीम 7 जुलाई से 13 जुलाई तक श्रीलंका के मोरातुवा में डी सेसवा पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच खेलेगी।
0: अब आपको सीधा लिए चलते हैं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की ओर। इस विश्व कप का फाइनल मैच कल खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स में होगा जहां ऑस्ट्रेलिया 6 बार की चैंपियन है और इंग्लैंड अपनी धरती पर कभी नहीं आ रही। और शक्ति, ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने की उम्मीद है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 7वीं बार चैंपियन बनने का इतिहास रचने की कोशिश करेगा और इंग्लैंड अपनी जमीन पर अजय रहने की भी कोशिश करेगा।
1: बिल्कुल, 2009 से लेकर 2026 T20 विश्व कप फाइनल इंग्लैंड आज तक अपनी जमीन पर कोई मुकाबला नहीं हारा है और ऐसा ही रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहेगा। मेजबान इंग्लैंड ने अपनी घरेलू सरजमी पर 11 मुकाबले खेले हैं और सभी 11 के 11 में उसको जीत मिली है। तो यानी एक तरफ फाइनल में 8 बार अपना फाइनल खेलने उतरेगी ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ होगी 5वां फाइनल खेलने वाली ये इंग्लिश टीम। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: टी20 विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने अब तक एक भी मैच नहीं गंवाया है और 6 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई है। यही कहानी इंग्लैंड की भी रही है। नेट साइवर ब्रंट की कप्तानी में मेजबान टीम अजय रहते हुए खिताबी मुकाबले तक पहुंची है। हालांकि कल इन दोनों में से किसी एक टीम के विजय रथ पर विराम लगना तय है। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 45 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 22 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है। वहीं 20 मुकाबलों में इंग्लैंड ने बाजी मारी है, 2 मुकाबले टाई रहे हैं, जबकि 1 मैच का नतीजा नहीं निकल सका है। आंकड़ों के अनुसार दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबले में भी कड़ी टक्कर होने की पूरी उम्मीद है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: शक्ति क्रिकेट के मैदान से अब हम सीधा फुटबॉल के उस महाकुंभ की तरफ चलते हैं, जहां पे राउंड ऑफ 16 यानी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रखे हैं। लगभग अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर ये फीफा महाकुंभ यानी विश्व कप अपना पहुंच रहा है। हालांकि कल अर्जेंटीना और काबो वर्डे ने कड़ी टक्कर हुई, बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अर्जेंटीना मैच 3-2 से अपने नाम कर जीत का सिलसिला उसने बरकरार रखा है।
1: नवीन, मिस्र ने भी इतिहास रचा है और अपना पहला नॉकआउट मुकाबला जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, जहां मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट में शानदार डिफेंस और अटैकिंग का एक कॉम्बिनेशन दिखाया और प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का किया। सुनते हैं कल खेले गए मैचों का हाल।
4: फीफा विश्व कप में अब राउंड ऑफ 16 की रेस के सभी स्लॉट फिक्स हो गए हैं। राउंड ऑफ 32 के अंतिम मुकाबले में कोलंबिया ने कैनसस सिटी स्टेडियम में घाना को 1-0 से हरा दिया और मैच के 14वें मिनट में ही जॉन एरियास ने कोलंबिया की ओर से पहला गोल दाग दिया। दूसरे हाफ में कोलंबिया ने अपनी बढ़त को सुरक्षित रखने पर ध्यान दिया और कोई गोल नहीं होने दिया। एक अन्य मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना काबो वर्डे के खिलाफ एक उलटफेर से बाल बाल बच गया। म्यामा स्टेडियम में रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। मैच के 29वें मिनट में लियोनेल मेस्सी ने अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिलाई थी। इसके बाद काबो वर्डे के डेराय डुआर्टे ने 59वें मिनट में गोल करते हुए हर किसी को चौंका दिया। अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना की ओर से 92वें मिनट में लिसांड्रो मार्टिनेज ने दूसरा गोल दागा और टीम को 2-0 की बढ़त दिलाई। काबो वर्डे के लिए 103वें मिनट में सिडनी लोप्स कारबेल ने शानदार गोल दागा और स्कोर को 2-2 से बराबर किया। इसके बाद अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया गया। मैच के 111वें मिनट में काबो वर्डे के डिने बोर्गस बचाव करने की कोशिश में अपना ही गोल कर बैठे। इससे पहले कल मिस्र ने इतिहास रचते हुए विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले में अपनी पहली जीत दर्ज की और ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त दी। मुकाबले में 90 मिनट तक दोनों टीमों की तरफ से 1-1 गोल किया गया। शूटआउट में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया के 2 प्रयास विफल किए, जबकि मिस्र ने 4 बार गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाते हुए पहली बार अंतिम 16 का टिकट पक्का किया। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: शक्ति, अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन, लेकिन कल एक बहुत बड़ा उलट फेर होते होते बच गया। लेकिन चाहे कुछ भी हो, भले ही अर्जेंटीना जीत गया हो, लेकिन दिल जीता काबो वर्डे ने।
1: जी बिल्कुल, और एक वो गलती जो हुई मैच के 111वें मिनट में काबो वर्डे के डिने बोर्गस से, जब अपने ही गोल्फ कोर्ट में उनकी गेंद चली गई लियोनेल मेसी का एक गोल बचाते बचाते। लेकिन जो अभियान शुरुआत से पहला मैच स्पेन के साथ ड्रॉ खेलना हो या उसके बाद जिस तरह से टीम खेली, शायद कोई फुटबॉल प्रेमी नहीं कहेगा नवीन कि ये टीम अपना पहला विश्व कप खेल रही है।
0: शक्ति, ये इतिहास रहा है फीफा विश्व कप का कि कभी ना कभी कोई ना कोई एक छोटी टीम ऐसे बाहर निकल कर आती है जो सबको चौंका देती है, और शायद ये कल जो मैच हुआ था वो सबको चौंका देने वाला मैच होता कि मेसी के रहते अर्जेंटीना हार जाती। लेकिन बात यह है कि पूरा का पूरा मैच खेला गया और मैच अंतिम समय तक गया, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला, उसमें आपको मैच खेलना पड़ा। अगर यही परफॉर्मेंस अर्जेंटीना की राउंड ऑफ 16 के मुकाबलों में रही तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, अर्जेंटीना को वापस एक बार अपने परफॉर्मेंस की तरफ देखना होगा और मोर्चों पर काम करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो इस टूर्नामेंट से निकल के आई, इस मैच से निकल के आई, कि इस पूरे सीजन का जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो है काबो वर्डे।
0: जी, फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले आज रात से शुरू हो रखे हैं और आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला ह्यूटन स्टेडियम में होगा कनाडा और मोरक्को के बीच, और दूसरा होगा फ्रांस की टीम का, और फ्रांस जो है इस बार खेलेगी पराग्वे से।
1: जी बिल्कुल, और जब फ्रांस की बात होती है तो बात होती है एम्बापे की। किलियन एम्बापे सबसे आगे हैं गोल्डन बूट की रेस में, और टीम को सबसे अधिक उम्मीदें टीम के स्टार खिलाड़ी से होने वाली हैं।

0: शक्ति पैराग्वे और फ्रांस के बीच अब तक कुल मिलाकर 5 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं और इसमें फ्रांस का जो पलड़ा है वो लगातार भारी रहा है। फ्रांस ने 3 मैच जीते हैं जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रखे हैं और फ्रांस को पैराग्वे के खिलाफ अपनी पहली जीत का इंतजार है। अगर आपको ये जीत देखनी है, ये मैच देखना है, तो आज इंतजार करना होगा।
1: जी बिल्कुल, इंतजार करना होगा। लेकिन उसके पहले एक और बहुत शानदार मुकाबला होना है जो कि कनाडा और मोराको के बीच खेला जाना है। दोनों टीम की अगर आपस के स्कोर की बात की जाए, 2 मुकाबले खेले गए हैं और मोराको का दबदबा थोड़ा सा भारी है, 1 मैच जीता है और 1 ड्रॉ किया है। नवीन
0: जी, फीफा विश्व कप के इतिहास में दोनों की ये दूसरी भिड़ंत होगी। इससे पहले 2022 में वर्ल्ड ग्रुप स्टेज में मोरक्को ने कनाडा को 2-1 से हरा दिया था। अगर आप इन दोनों मैचों को देखना चाहते हैं तो सुबह 2:30 यानी 2:30 पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे और आज रात 10:30 टेक्सास में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। फुटबॉल के बाद अब आपको लिए चलते हैं हम उस ग्रास कोर्ट पे जिसका इंतजार टेनिस प्रेमियों को शुरू से ही रहता है। जून का महीना हो, जुलाई का महीने की शुरुआत हो, जून का आखिर हो, तो सब रुक करते हैं विंबलडन की ओर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जहां पुरुष सिंगल्स में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का सामना अमेरिका के मार्कस गिरा से होगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया के एडी मिनार ने अमेरिका के जेट्री स्वाजदा को 6-2, 5-7, 6-2, 6-4 से हरा दिया।
1: जी, और महिला सिंगल्स की बात की जाए तो पोलैंड की ईगा स्वीटेक का मुकाबला फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा इला से जारी है और एक अन्य मुकाबले में कजाकिस्तान की एलिना रॉय बकीना ने बेल्जियम की एलिस मार्टिस से उनको हार का सामना करना पड़ा 7-6, 6-1 से।
0: शक्ति, कल इस टूर्नामेंट में एक शानदार मुकाबला खेला गया जिसमें नोवाक जोकोविच ने आर्थर रिंडरकनेक को 3 घंटे चले मुकाबले में 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 से हरा दिया।
2: And take the claim of the crowd one more time.
1: और इस जीत के साथ ही जोकोविच विंबलडन के पुरुष सिंगल्स में सबसे अधिक जीत के मामलों में दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर के बराबरी पर आ गए हैं। अब उनसे आगे सिर्फ मार्टिना नवारितोवा हैं जिनके नाम पर 120 जीत दर्ज हैं।
0: और अब बात स्क्वैश की। स्क्वैश में तन्वी खन्ना ने पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के महिला वर्ग का खिताब जीत लिया और मुंबई में खेले गए फाइनल में तन्वी ने मिस्र की फरीदा वालिद को हरा कर यह खिताब अपने नाम किया। वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन चलते चलते अब तक का स्कोर सुन लेते हैं शक्ति से।
1: जी बिल्कुल, और 19 ओवर 4 गेंद का खेल हो चुका है। भारतीय टीम 6 विकेट खोकर 188 रन स्कोर बोर्ड पर चढ़ा चुकी है।
0: तो आज के इस अंक में लिस्टर बस इतना ही। उम्मीद है आज का अंक आपको बहुत पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए मुझे नवीन और मेरे साथ शक्ति को। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण दो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान

0: राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
1: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे।

0: वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says, India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat.

फिल्म संगीत के कार्यक्रम इंद्रधनुष का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं दीवाना फिल्म से कुमार सानू की आवाज़ में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में, मौवी फिल्म से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं मेरे जीवन साथी फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

किशोर कुमार के गाए मेरे जीवन साथी फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार। सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर साया सी याद आ रहा है, जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।

0: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानु वप्र क्रीड़ा परिणत गज वृक्ष नियम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
1: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई।
0: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
1: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
0: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख ना जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती। वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
1: और वो प्रश्न मैं हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मलिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है। यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
1: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे, और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
0: कालिदास उज्जैनी पहुंचते हैं। वहां उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है। यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
1: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है। वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
2: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मलिका। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दता यक्षिणी तुम हो।
3: मेघ, मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है। सब कुछ न सही पर बहुत

0: कुछ जरूर पढ़ा है, कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
1: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है, हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
2: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं, समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
2: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं, वो बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थीं जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था, और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट के आया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं, पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं। तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी, आप जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें भी आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज खिलाड़ी नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है जिसमें बाल मनोविज्ञान की ही अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही, अच्छा शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हू हू करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उन पर बुंदिया चिपकाना और रज पीस करके लगाना

0: उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का और सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे, और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है, तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है, और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में हैं और बड़े कड़क आदमी हैं, तो इससे भी वो मांगती हैं कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इससे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के अशर्फी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो है वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है, तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें, कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशर्फी देने को तैयार थे, लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए, और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहाँ तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा ये केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहुपठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, उस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है, और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं विवश उड़ने के पंख नहीं होने से और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है कितने लोग समझते हैं आशा उदास आंखों की।
3: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी चार लाइनें सुना सकता हूं और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी इधर निरीहों की थी आह उधर मिटा देने की धुन थी इधर प्रबल मिटने की चाह इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई ठोक ताल दुंद भी बजा शासन की हस्त हिलाई है वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे शहीद थे उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्यकृति लिखी और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी जवा कुसुम के हारों वाली शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभनी सुरसरी स्नाता राजनीति की अचल स्वामिनी साम्य धर्म ध्वज धर की माता भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत अधिक प्रभावित थे उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूँ इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है वही रंग केसरिया रंग वो रंग उन्होंने कहा और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मि रथीपुरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50-60-70-80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण दे करके जिस तरीके से अपनी बात को यहाँ पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, ये वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्म गौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक हिमालय से आसे तु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्नमत यूनान जानता था न मगत के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने, वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
2: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवा की।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थामकर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय अपनी ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
1: Tonight in the National Program of Music, we present Khayal Recital by Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan, the doyens of Kira.

0: ख्याल गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal followed by Drut Ek Tal.

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। खयाल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज खयाल रिसाइटल विद राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाहा। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, ऑन द हारमोनियम बाय कमलाक्ष मुखोपाध्याय एंड ऑन द तानपुरा बाय कोयल साहा। And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड

0: फेनरी तेल गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Home Minister Amit Shah called the inauguration of the new CG Semi OSAT facility and India's new leap towards self-reliance in technology. In a social media post, Mr. Shah said the new facility will further invigorate Gujarat as the country's growth engine and open vast employment opportunities for youth. Prime Minister Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto, Prime Minister Modi will undertake a state visit to Indonesia from the 6th to 8th of this month. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since India-Indonesia relations were elevated to a comprehensive strategic partnership in May 2018. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from tomorrow till 10th of this month.